मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 36 सेकंड हुए हैं। अब आरंभ हो रही है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। सुबह की सुनहरी किरणों के साथ हम लेकर आए हैं एक नई ऊर्जा, नई उमंग और ढेर सारा मनोरंजन। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा। नमस्ते लखनऊ की इस खुशनुमा सुबह में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। श्रोताओं सुबह का ये समय केवल एक नए दिन की शुरुआत नहीं होता, बल्कि ये अपने सपनों को फिर से जगाने और उन्हें जीवन में नई उमंग भरने का संदेश भी देता है। तो आइए दिन की शुरुआत करते हैं ताजगी और हर जरूरी जानकारी के साथ। सुबह के 6 बजने को हैं और अब समय है रुख करने का देश और दुनिया की खबरों की ओर। समाचारों के लिए आइए आपको लिए चलते हैं अपने दिल्ली केंद्र।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के

0: राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए, जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। नमस्ते लखनऊ में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। श्रोताओं, अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने किसान भाइयों को कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हर रोज देते हैं, जिससे उन्हें अधिकतम लाभ हो सके। इसी क्रम में आज सुनिए ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई। इस विषय पर डॉक्टर सचिन प्रताप तोमर से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां खरीफ में धान उत्पादन करना चाहते हैं तो कई नई तकनीक आ गई है और उन्हीं में ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई भी है। ये ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं

0: कृषि विज्ञान केंद्र सेकेंड कटिया सीतापुर से वैज्ञानिक सचिन प्रताप तोमर साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। तोमर साहब, ये बताएं कि ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई तकनीक के बारे में किसान भाइयों बहनों से क्या कहना चाहेंगे?
1: नमस्कार किसान भाइयों, सभी अन्नदाताओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज का जो हमारा विषय है ड्रम सीडर द्वारा धान की सीधी बुवाई। ड्रम सीडर क्या है? ड्रम सीडर एक छोटा सा यंत्र है जो मानव चलित यंत्र होता है। उसमें 3 से 4 तक ड्रम लग रहते हैं, जैसे डमरू के आकार के बॉक्स बने होते हैं। उसमें हमारे किसान भाई सीधा डायरेक्ट बुवाई करके बीज भर के सीधा बुवाई कर सकते हैं। जिन किसान भाई जो नर्सरी में थोड़ा लेट हो जाते हैं, और उनके लिए ड्रम सीडर बहुत अच्छी विधि है।
0: इसका बुवाई का सबसे उपयुक्त समय क्या है?
1: यदि हम ड्रम सीडर की बुवाई की समय की बात करें, जैसे अभी मानसून में हमारी थोड़ा देरी भी है, मानसून से 10 से 15 दिन पहले तक हम इसकी बुवाई डायरेक्ट ड्रम सीडर द्वारा कर सकते हैं। और जो हमारा सही समय चल रहा है जून के लास्ट में, इस समय हम ड्रम सीडर द्वारा धान की सीधी बुवाई कर सकते हैं।
0: तो इसके लिए बीज का चुनाव और उसकी तैयारी भी महत्वपूर्ण है
1: जी। जो किसान भाई जैसे अभी बीज किसानों का चयन अपने क्षेत्र के अनुसार चयन कर सकते हैं। मेन बात इसमें ध्यान रखना होता है डॉक्टर साहब कि जो हमारे किसान भाई हैं, जैसे बीज अपने पास है, पहले बीज को 10 से 12 घंटे तक जैसे सिंचाई शाम को पानी में डाल दिया,
0: हाँ,
1: सुबह उसको पानी से निकालते हैं,
0: यानी भिगोना है।
1: भिगोने हैं पानी में जो डालते हैं, मतलब इसमें जो जर्मिनेशन जो जमा किसान भाई नर्सरी डालने के बीज तैयार करते हैं, इसमें हल्का सा अंकुरण होना चाहिए खाली,
0: यानी अखुआ निकले।
1: और अखुआ निकलने के बाद हमको थोड़ा बुवाई करने से पहले 1 से 2 घंटे पहले उसको थोड़ा छांव में सुखाना रहता है। उसकी में जो नमी होती है थोड़ी सी, वो नमी हमको उसमें खत्म करना है। जब हम ड्रम सीडर में उसको भरते हैं,
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: तो जिससे कि वो ड्रम में जो बॉक्स हमारे ड्रम बने हुए उसमें बीज चिपके ना, नमी
0: यानी भरका लेना है
1: जी,
0: छाए में। तो डॉक्टर साहब, बीज की मात्रा जितनी धान की नर्सरी पड़ती उतनी ही या कम अधिक?
1: सर, उससे थोड़ा कम रहता है डॉक्टर साहब। जैसे कि डायरेक्ट किसान जब रोपाई करता है तो उसमें 40 किलो तक बीज डालता है, इसमें 30 से 35 किलो में आपका 1 एकड़ खेत हो जाता है।
0: और 25 से 30 किलो में
1: जी, तो इसमें बीज भी किसान 4 से 5 किलो कम कर लेता है। और हाइब्रिड की बात करें तो 6 से 7 किलो बीज में भी किसान भाई कर सकते हैं
0: प्रति एकड़।
1: एकड़ में सर,
0: तो इसमें बारीकी क्या है डॉक्टर साहब?
1: इसमें जो हमारा जो ड्रम सीडर से जब डॉक्टर साहब बुवाई करते हैं हमारे किसान भाई, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि किसानों के पास समय बचता है सर। समय की बात बचत होगी, पानी की बचत होगी, और जैसे कि हमारे जो खेती में लागत की आज हम बात करते हैं, तो उसमें भी हमारे श्रम जो श्रमिक रोपाई के समय लगते हैं, उसमें भी हम अपनी लागत को कम कर सकते हैं।
0: ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई करते समय कुछ खास सावधानियां भी रखनी होगी?
1: जी जी,
0: अंतरण क्या होगा?
1: जो आपकी आइसोलेशन डिस्टेंस जो हमारे धान की दूरी बताई गई है 15-20 सेंटीमीटर, वो ड्रम सीडर में जो ड्रम के डमरू बने हुए हैं उसमें छेद बने हुए हैं बराबर दूरी पे, वो दूरी लाइन से लाइन की दूरी, पौधे से दूरी बराबर होती है। सावधानी किसान जो खेत तैयार करता है उसके सामने ड्रम को रखना है।
0: क्या?
1: जैसे खेत जब रोपाई करता है किसान, तो खेत में पानी ज्यादा होता है,
0: मतलब कंदेल करता है
1: जो पटलिंग करता है, लेप
0: करता है
1: जी जी जी, जो रोपाई से पहले करता है। और जब हम ड्रम सीडर से बुवाई किसान हमारे करें, तो उसमें सावधानी रखें 2 से 2.5 इंच तक पानी रहे, उससे ज्यादा पानी ना हो।
0: अच्छा,
1: क्योंकि ड्रम सीडर के जो ड्रम है, यदि वो पानी के संपर्क में आएंगे तो जब ड्रम में पानी चला जाएगा तो बीज उसका बाहर नहीं आता
0: जी।
1: दूसरा सावधानी इसमें रखनी है, जो ड्रम हमारा है उसको 2/3 तक उसमें सीड भरना है
0: बीज।
1: हाँ, पूरा भरेंगे तो बीज बराबर दूरी पर नहीं गिरता। और जब बुवाई करते हैं तो 2 लेबर इसमें होना चाहिए, जो श्रमिक की हम बात करते हैं, एक ड्रम उसको खींचता है मशीन से, दूसरा उसमें देखिए कि कोई छेद ब्लॉक तो नहीं हो गया बीज,
0: उसको भी खोलना होगा। तोमर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र आना चाहें, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें
1: जी। बिल्कुल, मैं मृदा वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर में स्थित है, और मेरा जो नंबर है 75-990-59-6-0-6। समय से बुवाई करें, खरपतवार का प्रबंधन बहुत जरूरी है, समय से निकाई गुड़ाई करें, और जो उर्वरक का प्रयोग करें उसका सही समय पर करें, सही मात्रा में करें।
0: सचिन प्रताप तोमर साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कृषि चर्चा में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सचिन प्रताप तोमर से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता। बातचीत का विषय था ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई। कृषि चर्चा कार्यक्रम अब संपन्न।

0: होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। समय है सुविचार का। आज का विषय है राम की महिमा।
1: राम पूर्वतापिन्युपनिषद, यह उपनिषद अथर्ववेदीय परंपरा से संबद्ध है। भगवान राम का तात्विक स्वरूप व्यक्त करने वाली है।

0: दशरथे हरौ रघोकुले अखिलं राति राजते यो मही स्थितः सराम इति लोकेषु विद्वद्भिः प्रकटीकृतः राक्षसायेन मरणं यान्ति स्वोद्रेकतोऽथवा रामनाम भुवि ख्यातभ रामेण वा पुनः राक्षसान्मर्त्यरूपेण राहुर्मनसिजं यथा प्रभाहीनास्तथां कृत्वा राज्यार्हाणां महीभृतां धर्ममार्गं चरित्रेण ज्ञानमार्गं च नामतः तथा ध्यानेन वैराग्यं ऐश्वर्यं स्वस्य पूजनात् तथा रात्यस्य रामाख्या भुवि स्यादथ तत्त्वतः रमन्ते योगिनो अनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनिः इति रामपदेनासौ परब्रह्माभिधीयते। महाराज दशरथ के यहाँ सच्चिदानंद महाविष्णु श्री हरि ने धरती पर अति प्रसिद्ध रघुवंश में जन्म लिया। विद्वानों द्वारा उनका नाम राम रखा गया, जिनके द्वारा राक्षस अपने पाप कृत्यों से मरण को प्राप्त होते हैं वे राम हैं, अथवा अपनी ही उन्नति से इस भूमंडल पर वे राम राम से प्रसिद्ध हुए, तथा कुछ ने अभिराम होने से उन्हें राम स्वीकार किया। राहु के द्वारा चंद्रमा को कांतिहीन कर देने के समान ही राक्षसों को मानव रूप द्वारा कांतिहीन करने से वे राम हैं। कुछ के मतानुसार शासन प्राप्ति के पात्र राजाओं को अपने आदर्श चरित्र का प्रस्तुतीकरण करके वे धर्ममय पथ दर्शाते हैं, नाम का उच्चारण करने वालों को ज्ञान पथ की प्राप्ति कराते हैं, ध्यान से वैराग्य प्राप्ति तथा अपनी मूर्ति के पूजन से वैभव संपदा प्रदान करते हैं। इसी से इस भूमंडल पर राम नाम से इनकी ख्याति रही होगी। वस्तुतः यथार्थ वही है कि जिस अनंत नित्यानंद रूप चिद्रूप परमात्मा में योगी जन रमण करते हैं वे परब्रह्म परमेश्वर ही राम पद से जाने जाते हैं।
1: राम की महिमा। अभी आप सुन रहे थे आज का सुविचार, वाचन स्वर था बजरंगी तिवारी का। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है

श्रोताओं सुप्रभात। जब जब जीवन में कोई संकट आता है तो हृदय पर सबसे पहला नाम संकट मोचन का ही आता है। तो आइए सुबह सवेरे हम भी कार्यक्रम आराधना का आरंभ करें, अपने हृदय में अटूट विश्वास और भक्ति जगाकर। सुनते हैं पवन पुत्र हनुमान जी का ये दिव्य पावन भजन, जो हमारे मन को शक्ति और असीम शांति से भर देगा।

संकट मोचन भगवान हनुमान को हम सबका शत शत नमन है। श्रोताओं, जहाँ हनुमान जी हैं वहाँ राम है, और जहाँ राम है वहाँ हनुमान तो है ही। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का नाम केवल एक नाम नहीं, बल्कि जीवन जीने का सही मार्ग है, जिनके नाम मात्र से ही मन के सारे संताप मिट जाते हैं। आइए उन्हीं रघुकुल नंदन के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं। आनंद उठाइए प्रभु श्री राम के इस परम सुखदाई और मधुर भजन का।

राम भजन कर मन। जी हाँ श्रोताओं, राम का नाम छोटा जरूर है लेकिन इसमें शक्ति अपार है। श्रोताओं, कैलाश के वासी, गले में सर्प की माला धारण करने वाले और भक्तों के दुखों को पल भर में हरने वाले देवों के देव महादेव का नाम भी कल्याणकारी है। तो आइए आराधना में आगे बढ़ते हुए पूरी श्रद्धा के साथ खुद को शिव जी की भक्ति में विलीन करते हैं और सुनते हैं भगवान भोलेनाथ का ये अलौकिक भजन और मन को शांत और पवित्र करते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, भागदौड़ भरी इस जिंदगी में हम अक्सर खुद को और उस परम पिता परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन सच तो यही है कि इस दुनिया में केवल भगवान का नाम ही शाश्वत है, इसीलिए हरि नाम का जाप तो करते ही रहना चाहिए। इस संसार का एक और शाश्वत नियम है कि यहाँ जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। यहाँ का धन दौलत, रिश्ते नाते सब यहीं रह जाने हैं। इस परम सत्य को बताता आइए सुने ये पावन भजन।

जीवन का यही सत्य है श्रोताओं। कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, उनका नाम उनकी भक्ति किसी सीमा में नहीं बंधती। उनकी भक्ति और कृपा के बिना जीवन का एक पल भी काटना असंभव है, ये भी परम सत्य है।

हम सभी प्राणियों पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ अब आज की आराधना यहीं संपन्न होती है।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, भक्तिमय इस पावन बेला में नमस्ते लखनऊ में आइए, अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनिए भाग 204। आज का प्रसंग है भारद्वाज ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त कर भरत का अयोध्या वासियों के साथ चित्रकूट प्रस्थान का वर्णन।

भरद्वाज ऋषि से आशीर्वाद और आज्ञा प्राप्त कर भरत जी दल बल समेत चित्रकूट की दिशा में चल पड़े हैं। राह में असंख्य जड़ चेतन जीव जिन्हें पहले श्री राम के दर्शन हुए थे अब भरत का साक्षात्कार पाकर मानो परम पद प्राप्त कर रहे हैं। किंतु भरत का प्रभाव देख देवराज इंद्र ये सोचने लगते हैं कि कहीं भ्रातृप्रेम के वशीभूत श्री राम अयोध्या न लौट जाएं और इस तरह पनी बनाई बात बिगड़ न जाए। उनकी चिंता देख देवगुरु बृहस्पति उन्हें सीख देते हैं कि श्री राम की भक्त वत्सलता और उदारता की महिमा को ध्यान में रखकर मन से इस प्रकार की कुटिलता निकाल देनी चाहिए। जो भी श्री राम के भक्तों का अपराध करता है वो उनकी क्रोधाग्नि में भस्म हो जाता है और इस बात को दुर्वासा से अधिक और कौन जान सकता है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे ए हरिहरन और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अपने श्रोताओं को हम बता दें, NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारत स्लोवाकिया देशयोः सम्बन्धः समग्र सहभागित्वेन संवर्धितः अस्ति। ब्रातिस्लावा नगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तस्य स्लोवाकिया समकक्षीयेण रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह वार्तालापस्य अनन्तरं श्रम प्रवास डिजिटल तन्त्रज्ञान रक्षादिषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं उभौ पक्षौ समग्र एकादश सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। पश्चात् संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् सम्बन्धानां उन्नतिः सह विश्वासानां प्राथमिकतानां भविष्यस्य च प्रतीकः अस्ति। कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः यूरोपीय राष्ट्रस्य प्रथमायां यात्रायां श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ देशौ रक्षाक्षेत्रे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ।
1: AI का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपतिना पीटर पेलेग्रेनी इत्यनेन

0: स्लोवाकियादेशस्य सर्वोच्चं प्रशासकीयसम्मानं द आर्डर् आफ् द वैट् डबल् क्रास् फस्ट् क्लास् इति प्रधानमन्त्रिणं श्रीमोदिनं प्रदत्तम्। श्रीमोदी स्लोवाकियादेशस्य राष्ट्रपत्ये सर्वकाराय नागरिकेभ्यश्च विशिष्टसम्मानाय कृतज्ञतां प्रकटितवान्। द्वयोः राष्ट्रयोः यात्रायाः तृतीये चरणे G7 शिखरसम्मेलने भागग्रहणाय प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अद्य फ्रांसदेशस्य एवियन् नगरं सम्प्राप्स्यति। तस्य आगमनावधौ फ्रांसदेशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन औपचारिकरूपेण तस्य स्वागतं क्रियते। द्विपञ्चाशत्तमं G7 शिखरसम्मेलनं ह्यः एवियन् नगरे समारब्धम्, यत्र विश्वस्य प्रमुखानां अर्थव्यवस्थानां नेतारः प्रमुखेषु वैश्विकसमाह्वानेषु विचारविनिमयं कुर्वन्ति। राष्ट्रपतिः मैक्रों वर्यः प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय समाह्वानान् निवारणाय संयुक्तरूपेण कार्याचरणस्य विषये कार्यरात्रिभोजस्य आयोजनम् अकरोत्। ततः पूर्वं सः अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प्, यूके देशस्य प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मर इत्यादिभिः नेतृभिः सह G7 देशानां नेतॄणाम् औपचारिकरूपेण स्वागतं विहितवान्। यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला फोन डेर लेयेन, यूरोपीय परिषदः अध्यक्षः एंटोनियो कोस्टा च शिखरसम्मेलने भागं भजन्ति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः ह्यः फ्रांसदेशे मोनाको देशस्य राज्यमन्त्रिणा क्रिस्टोफ मिरमेंड, विदेश कार्य सहकार मन्त्रिणा इजाबेल बेरो आमादेई, वित्त अर्थव्यवस्थामन्त्रिणा फेडरिक कोटालोर्डा इत्येतैः सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीगोयलः अवदत् यत् द्वैपाक्षिकव्यापारं सुदृढं कर्तुं नूतनान् निवेशावसरान् अन्वेष्टुं भारत मोनाको देशयोः मध्ये उपवेशनम् आर्थिकसहकारं सुदृढं कर्तुं च केन्द्रितम् आसीत्। संघलोकसेवा आयोगेन UPSC इत्यनेन अस्य वर्षस्य लोकसेवा प्राथमिक परीक्षायाः परिणामाः घोषिताः। UPSC ह्यः सूचितवान् यत् अस्मिन् वर्षे 1,000+ रिक्तस्थानेषु लोकसेवा मुख्यपरीक्षायाः कृते आहत्य 13,000+ अभ्यर्थिनः चिताः सन्ति। परीक्षार्थिनः UPSC इत्यस्य आधिकारिक वेब फलके upsc.gov.in इत्यत्र प्राथमिक परीक्षा फलं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे कार्यक्रम नमस्ते लखनऊ में। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज नीना सोनकर जानकारी दे रही हैं अनारदाना के विषय में। सुनिए, अनारदाना स्वाद भी औषधि भी।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो न तो कोई नई खोज है, न ही कोई विदेशी खाद्य पदार्थ, बल्कि वो एक ऐसा देसी खजाना है जो हमारे मसालों के डिब्बे में अक्सर चुपचाप रखा रहता है, लेकिन उसके गुण बहुमूल्य होते हैं। आज हम बात करेंगे अनारदाने की, एक ऐसा तत्व जो स्वाद में खट्टा मीठा है लेकिन सेहत में बेहद उपयोगी। अनारदाना दरअसल अनार के सूखे बीज होते हैं। जब अनार के दानों को सुखा दिया जाता है तो उनमें एक खास तरह की तीव्रता और खट्टापन रह जाता है जो भारतीय व्यंजनों को एक अलग ही तरह का स्वाद देता है। लेकिन ये केवल स्वाद तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे पाचन, त्वचा, रक्त और कई आंतरिक क्रियाओं में सुधार लाने वाला एक प्राकृतिक उपाय भी है। आयुर्वेद में इसे एक रक्त शुद्धि देने वाला तत्व माना गया है और ये शरीर की पाचन अग्नि को जागृत करने वाला माना जाता है। पाचन की बात करें तो अनारदाना पेट की कई समस्याओं में मददगार होता है। जिन लोगों को बार बार गैस, अपच, पेट में भारीपन

0: या भूख न लगने की शिकायत होती है, उनके लिए अनारदाना रामबाण उपाय साबित हो सकता है। इसे भूनकर, पीसकर चूर्ण के रूप में लिया जाए या चटनी में मिलाकर खाया जाए तो ये तुरंत आराम देने वाला असर करता है। बहुत बार हमने देखा है कि देसी घरों में खट्टी मीठी चटनी में इसका उपयोग होता है। ये न केवल स्वाद बढ़ाता है बल्कि भोजन को पचाने में भी सहायक होता है। इसके अलावा अनारदाना में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है। ये दोनों तत्व शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। जब मौसम बदल रहा हो या संक्रमण का खतरा अधिक हो तब अनारदाना जैसे मसाले शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं और रोगों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ाते हैं। ये विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है जिसका पाचन तंत्र अपेक्षाकृत कमजोर होता है। एक और रोचक पहलू ये है कि अनारदाना महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना गया है। खास तौर पर मासिक धर्म की अनियमितता या कमजोरी जैसी स्थितियों में ये शरीर को मजबूती प्रदान करता है और खून की कमी को दूर करता है। आयरन की उपस्थिति इसे एक अच्छा रक्तवर्धक भी बनाती है। जिन लोगों को बार बार चक्कर आते हैं या थकावट महसूस होती है उनके लिए अनारदाना और गुड़ का मिश्रण एक पुराना लेकिन असरदार घरेलू उपाय है। अगर स्वाद की बात करें तो भारतीय रसोई में अनारदाना का उपयोग कई तरीकों से किया जाता है, चाहे आलू टिक्की हो, चाट हो, पुलाव हो या दाल। इसकी थोड़ी सी मात्रा किसी भी व्यंजन को विशेष बना देती है। यहाँ तक कि कई पंजाबी व्यंजनों में इसे कसूरी मेथी या सूखे मसालों के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है जिससे खाने का स्वाद गाढ़ा और यादगार हो जाता है। गर्मी के मौसम में जब भूख कम लगती है तब अनारदाने की चटनी या पाउडर भोजन में स्वाद लाकर इसे रुचिकर बना देता है। शरीर की गर्मी को नियंत्रित करने के लिए भी ये एक अच्छा विकल्प है। जब गर्मियों में लू का प्रकोप बढ़ जाता है और प्यास बुझने का नाम नहीं लेती तब अनार से बने पेय और अनारदाने की चटनी शरीर को राहत प्रदान करती है। ये पेट को ठंडा रखती है और साथ ही शरीर को तरोताजा बनाए रखती है। बच्चे कई बार बाजार की खट्टी मीठी टॉफियों की ओर भागते हैं, लेकिन यदि उन्हें अनारदाने की गोलियां या घर में बनी अनारदाने की चटनी दी जाए तो ये न केवल स्वादपूर्ण विकल्प होगा बल्कि सेहतमंद भी। एक महत्वपूर्ण बात ये है कि अनारदाना हानि रहित होता है, यानी इसके कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे हर चीज में संतुलन जरूरी होता है वैसे ही अनारदाने का सेवन भी सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। विशेषकर पेट में अल्सर या अत्यधिक अम्लता की समस्या हो तो इसकी मात्रा पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। श्रोताओं, हमें ये समझना जरूरी है कि हमारी देसी रसोई में छुपे हुए हैं मसाले, बीज और फल महज स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि शरीर को पोषण देने और बीमारियों से बचाने की छुपी हुई शक्तियां भी रखते हैं। अनारदाना उन्हीं में से एक है जो खाने का स्वाद बढ़ाए, पाचन सुधारे, शरीर को ठंडक दे और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाए। तो अगली बार जब आप रसोई में कोई चटपटा या स्वादिष्ट व्यंजन बनाएं या जब आपको लगे कि भूख कम हो रही है, पेट भारी सा लग रहा है तो अनारदाने को एक बार जरूर आजमाएं। ये छोटा सा मसाला आपके स्वाद के साथ साथ आपकी सेहत की देखभाल भी बड़ी खूबसूरती से करेगा। आज की स्वास्थ्य चर्चा में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और देसी औषधि या मसाले के साथ जो आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने में आपकी मदद कर सके। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: अनारदाना स्वाद भी औषधि भी। आज की स्वास्थ्य चर्चा में नीना सोनकर से सुन रहे थे आप ये महत्वपूर्ण जानकारी। हमें उम्मीद है हमारे श्रोताओं को ये जानकारी पसंद आई होगी। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज दिन भर हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोताओं, आज रात्रि 11:10 से आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला। आज का विषय होगा आतंकवाद। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

प्रातः 9:15 पर जिले की हलचल में आज सुनिएगा मेरठ और शामली जिलों की खबरें। 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम के तहत समात फरमाइएगा गुफ्तगू, मौजू होगा हजरत इमाम हुसैन और पैगामे इंसानियत। शरीके गुफ्तगू होंगे मोबिन हसन, सरबत हुसैन जैदी और मोहतरमा उम्मे आभीर। मनोरंजन और जानकारियों का खजाना लेकर आएगा कार्यक्रम आज सुबह प्रातः 7:31 पर। अब से थोड़ी देर में यानी प्रातः 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम विविधा। आज का विषय होगा स्वाध्याय, विवेकशील जीवन का पर्याय। लोक रंग और लोक माधुरी कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे विंध्यवासिनी त्रिपाठी के गाए अवधी लोकगीत। लोक रंग कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 9:50 पर और लोक माधुरी कार्यक्रम का आनंद उठाइएगा दिन में 2:45 पर। बहनें सुनेंगी अपना मनपसंद कार्यक्रम अपराजिता दिन में 1:15 से। 2:30 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा भेंट वार्ता जल कृषि और समन्वित मत्स्य पालन। वार्ताकार होंगे डॉक्टर अखिलेश कुमार यादव, भेंटकर्ता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। हमारी सायकालीन सभा आरंभ होगी 5:00 से। युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा तरंग 5:10 से। 5:45 पर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा नई उड़ान। 6:30 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम लोकायतन। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा राकेश कुमार सिंह की वार्ता, विषय होगा सशक्त श्रमिक समर्थ भारत। 6:50 पर कार्यक्रम होगा खेती किसानी। कार्यक्रम में आज डॉक्टर विष्णु प्रताप सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता सुनिएगा। बातचीत का विषय रहेगा खरीफ में मोटा अनाज उत्पादन। रात्रि 8:00 हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत आज खाड़ी युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इस विषय पर सुनिएगा डॉक्टर अशोक कुमार कैथल की वार्ता। रात्रि 8:10 पर आनंद लीजिएगा सुगम संगीत का। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे किशोर चतुर्वेदी के स्वर में भजन। रात्रि 10:00 से राज्य स्तरीय प्रसारण में आकाशवाणी लखनऊ की प्रस्तुति में सुनिएगा कार्यक्रम खेल दर्पण। और रात्रि 10:30 से शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आनंद लीजिएगा उस्ताद विलायत हुसैन खान के ख्याल गायन का। इसके साथ ही समय समय पर श्रोता फिल्म संगीत और प्रायोजित कार्यक्रम भी सुन सकेंगे। ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं कार्यक्रम विविधा के आज के खूबसूरत और शानदार सफर में। दोस्तों, क्या कभी आकाश में उड़ते पक्षी को देखकर आपके मन में ये प्रश्न उठा है कि आखिर उसे दिशा कौन देता है, और जीवन में उतार चढ़ाव, दुविधाओं और अनगिनत विकल्पों के बीच हम मनुष्यों को सही मार्ग चुनने की प्रेरणा आखिर कहां से मिलती है? क्या केवल शिक्षा हमें सही निर्णय लेना सिखा देती है? क्या बहुत सारी जानकारी होना ही बुद्धिमानी की निशानी है, या फिर कोई ऐसी शक्ति भी है जो ज्ञान को समझ में और समझ को विवेक में बदल देती है? श्रोताओं, ये शक्ति है

स्वाध्याय की। स्वाध्याय यानी स्वयं का अध्ययन, स्वयं से संवाद और ज्ञान के प्रकाश में अपने जीवन को परखने की प्रक्रिया। स्वाध्याय केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अपने विचारों, व्यवहार और अनुभवों को समझने की एक सतत यात्रा भी है। तो आइए जाने कि किस प्रकार स्वाध्याय हमारे विचारों को गहराई देता है, निर्णयों को संतुलन प्रदान करता है और हमें एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाता है। आज की विविधा में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय की जो व्यक्ति के ज्ञान को गहराई देता है, विचारों को परिष्कृत करता है और जीवन को विवेकपूर्ण बनाता है। आज हम बात करेंगे स्वाध्याय, विवेकशील जीवन का पर्याय विषय की। यूं तो शब्दों के रूप में देखें तो स्वाध्याय का सामान्य अर्थ है स्वयं अध्ययन करना, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक है। स्वाध्याय केवल पुस्तकों के पन्ने पलटना नहीं है, बल्कि ज्ञान को आत्मसात करना, अपने विचारों को परखना और स्वयं को बेहतर बनाने का सतत प्रयास करना भी है। दोस्तों, ये एक ऐसी साधना है जो व्यक्ति को बाहरी संसार के साथ साथ अपने भीतर की दुनिया से भी परिचित कराती है। आज का युग सूचना का युग है, ज्ञान हमारी उंगलियों पर उपलब्ध है। जी हाँ, मोबाइल, इंटरनेट, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं सभी तो हमारे सामने हैं, लेकिन जानकारी का भंडार होना और विवेकशील होना दोनों अलग अलग बातें हैं। याद रखिए, जानकारी हमें तथ्य देती है, जबकि स्वाध्याय उन तथ्यों को समझने और जीवन में उतारने की क्षमता प्रदान करता है, और यही क्षमता आगे चलकर विवेक का रूप ले लेती है। दोस्तों, स्वाध्याय व्यक्ति को सोचने की आदत देता है। जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं या किसी विचार पर मनन करते हैं, तब हमारे भीतर प्रश्न भी जन्म लेते हैं। यही प्रश्न जिज्ञासा को जन्म देते हैं और जिज्ञासा ज्ञान की नई राहें खोलती है। आप जानते ही हैं कि जिस व्यक्ति के भीतर प्रश्न करने की क्षमता जीवित रहती है, उसका मानसिक विकास कभी नहीं रुकता। स्वाध्याय एक महत्वपूर्ण पक्ष आत्मचिंतन भी है। दिन भर के कार्यों पर विचार करना, अपनी गलतियों को पहचानना और उन्हें सुधारने का प्रयास करना भी स्वाध्याय का ही स्वरूप है। जब हम स्वयं का अध्ययन करने लगते हैं, तब हमें अपनी शक्तियों और सीमाओं दोनों का ही ज्ञान हो जाता है। दोस्तों, विवेकशील व्यक्ति परिस्थितियों को केवल ऊपर ऊपर से नहीं देखता, बल्कि वो हर विषय के सभी पहलुओं को समझने का प्रयास भी करता है। और जानते हैं, ये दृष्टि उसे स्वाध्याय से ही प्राप्त होती है। आज समाज में कई प्रकार की सूचनाएं और विचार हमारे सामने आते हैं। कई बार सही और गलत में अंतर करना तक कठिन हो जाता है। ऐसे समय में स्वाध्याय हमें तथ्यों की जांच करना, विचारों का मूल्यांकन करना और तर्कपूर्ण निष्कर्ष तक पहुंचना सिखाता है। यही विवेकशील जीवन की पहचान है। याद रखिए, स्वाध्याय केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं है, बल्कि ये हम सभी के जीवन में प्रत्येक चरण पर आवश्यक है। स्वाध्याय का सबसे बड़ा लाभ ये भी है कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है। ये वो हर छोटी बड़ी बात सीखता है, समझता है और उसका आत्मविश्वास भी इस तरह से मजबूत होता है। दोस्तों, अगर हम हर दिन कुछ समय स्वाध्याय के लिए निकालें, चाहे वो किसी पुस्तक का अध्ययन हो, किसी प्रेरणादायक विचार पर चिंतन हो या फिर स्वयं के व्यवहार का विश्लेषण ही हो, तो धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यही परिवर्तन हमें ज्यादा सजग और कहीं ज्यादा समझदार, साथ ही विवेकशील भी बनाते हैं। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि स्वाध्याय केवल ज्ञान अर्जित करने का माध्यम नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने और जीवन को सही दिशा देने का मार्ग भी है। जिस व्यक्ति के जीवन

में स्वाध्याय है, उसके निर्णयों में संतुलन, विचारों में गहराई और व्यवहार में परिपक्वता दिखाई देती है। याद रखिए, स्वाध्याय से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से समझ और समझ से विवेक। इसलिए जो व्यक्ति सीखना नहीं छोड़ता, वो आगे बढ़ना भी नहीं छोड़ता। अब इन्हीं शब्दों के साथ मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा को दीजिए अनुमति, फिर मिलने का है वादा। तब तक स्वस्थ रहिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई वाणिज्यिक उड़ान। नागर विमानन मंत्री किंजारपु राममोहन नायडू ने कहा, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से किया संवाद, कहा अन्नदाताओं को हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का किया शुभारंभ। 21 जून तक चलने वाले योग सप्ताह के तहत प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी विविध कार्यक्रमों की हुई शुरुआत। और अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान और कीमती सामान के कथित गबन के आरोपों की जाँच के लिए गठित विशेष जाँच दल SIT पहुँची अयोध्या, जाँच शुरू। अब समाचार विस्तार से। गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें कल से शुरू हो गईं। नागर विमानन मंत्री किंजारपु राममोहन नायडू ने उद्घाटन समारोह में कहा कि ये एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के विजन का नतीजा है। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरपोर्ट घरेलू संचालन का हब बनेगा। उन्होंने बताया कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी।
1: ये डोमेस्टिक इंटरनेशनल ऑपरेशन के लिए हब बनेगा और खास तौर पे यहाँ एरोट्रॉपलिस का मॉडल हमने

0: आप देखेंगे तो एशिया का ही सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक हमारे ये जेवर एयरपोर्ट होने वाला है। तो आगे जाते हुए बहुत ही संभावना यहाँ पे है, नेटवर्क बढ़ेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग हो, हॉस्पिटैलिटी हो, एग्रीकल्चर हो, कार्गो हो, ऐसे मल्टीपल सेक्टर्स हैं जो डिपेंडेंट रहेंगे ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
1: नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू हुई पहली उड़ान से हवाई अड्डे के लिए जमीन देने वाले 170 किसान स्थानीय विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ कल लखनऊ पहुंचे और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि सरकार अन्नदाताओं को समुचित हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: हम आपको आपका हक देंगे, लेकिन वह बीच में किसी व्यक्ति को नहीं रखना है। आप रहेंगे, मैं रहूंगा, और आप जो सोचते होंगे उससे अच्छा दाम आपको मिल जाएगा। और हम लोगों ने वही वहां पर करने का कार्य किया है, और मुझे प्रसन्नता है आज आपके कारण वह क्षेत्र बदल रहा है, आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनने जा रहा है, बदलने जा रहा है। आपने सचमुच इतिहास रचा है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ में आयोजित डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग त्रिवेणी में शामिल हुए। इस अवसर पर सोशल मीडिया क्रिएटर्स से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना एक विजन है, देश के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे समाज के सभी पक्षों को जोड़ते हुए एक जन आंदोलन बनाकर ही सफल बनाया जा सकता है। सम्मेलन में 10 से अधिक राज्यों के 100 से अधिक डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस सिलसिले में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
4: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे यह पूरे देश में ट्रेन चले।
3: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। आयुष मंत्रालय ने कल नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस साल योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा।

0: जाएगा। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 21 जून तक चलने वाले योग सप्ताह के तहत प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश की राजधानी लखनऊ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, अमरोहा, मिर्जापुर और बिजनौर सहित विभिन्न जिलों में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों सहित समाज सेवियों द्वारा प्रोटोकॉल के तहत योग कर योग सप्ताह की शुरुआत की गयी। वाराणसी में इस अवसर पर आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य में योग, आयुष और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की जा रही हैं। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और

0: प्रतिनिधियों, प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों सहित समाज सेवियों द्वारा प्रोटोकॉल के तहत योग कर योग सप्ताह की शुरुआत की गई। वाराणसी में इस अवसर पर आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य में योग, आयुष और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की जा रही है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान और कीमती सामान के कथित गबन के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने कल से अपनी जांच शुरू कर दी। एसआईटी की अध्यक्षता लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत कर रहे हैं। पुलिस महानिरीक्षक किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन इसमें सदस्य हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि एसआईटी के सभी सदस्य कल अयोध्या पहुंचे और अपनी जांच शुरू की। उन्होंने आयुक्त और अयोध्या के डीएम के साथ मंदिर परिसर का दौरा किया। एसआईटी को 7 दिनों में प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर परिसर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कल वहां मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मंदिर निर्माण में लगी सभी एजेंसियां 15 जुलाई तक काम पूरा कर लेंगी।
2: मुख्य रूप से निर्माण का जो कार्य अब अंतिम चरण में है, क्योंकि सभी एजेंसी जुलाई 15 तक वापस हो जाएंगी। हम आश्वस्त हैं कि यदि यह प्रगति रही तो दिसंबर 2026 तक श्रद्धालुओं को म्यूजियम भी देखने का पूरा पूरा अवसर मिलेगा।
1: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2023 के तहत उत्तर प्रदेश नवीन अनुपूरक पुष्टाहार योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बीते 14 जून को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से इसका शुभारंभ किया। गोरखपुर के जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिनव मिश्र ने बताया कि इस योजना के तहत 7 श्रेणी के लाभार्थियों को 10 प्रकार की रेसिपी उपलब्ध कराई जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई वाणिज्यिक उड़ान। नागर विमानन मंत्री किंजारपु राममोहन नायडू ने कहा, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से किया संवाद। कहा, अन्नदाताओं को हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का किया शुभारंभ। 21 जून तक चलने वाले योग सप्ताह के तहत प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी विविध कार्यक्रमों की हुई शुरुआत। और अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान और कीमती सामान के कथित गबन के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल एसआईटी पहुंची अयोध्या। जांच शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
5: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। नमस्ते लखनऊ में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह

0: सुबह का ये खुशनुमा वक्त लेकर आया है एक नई शुरुआत, एक नए विचार और नई संभावनाओं के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सुबह और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा। आज के इस शानदार और खूबसूरत सफर में कौन है मेरे साथ? जी हाँ, वही जो हर सफर में देती है मेरा साथ। आज मेरे साथ है
1: आपकी रेडियो दोस्त श्रद्धा। कीजिए स्वीकार हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, 16 जून की इस प्यारी सुबह में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कहते हैं कि हर सुबह अपने साथ एक नया संदेश लेकर आती है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उसे सुन लेता है और कोई व्यवस्थाओं के शोर में अनसुना कर देता है।
0: लेकिन श्रद्धा एक बात बताऊं
1: क्या?
0: चाहे जितनी व्यस्तताएं हो, हम चाहे जितना बिजी हो, लेकिन अपने श्रोताओं से, अपने दोस्तों से मिलना हमें नहीं छोड़ना चाहिए।
1: बिल्कुल, जब हम उनसे मिलते हैं ना तो दिन बहुत खूबसूरत हो जाता है।
0: जी हाँ, और देखिए आकाशवाणी लखनऊ हमेशा हर पल हर कदम पर आपके साथ होती है, तो बस सुनना ना भूलिए हर रोज आकाशवाणी लखनऊ, क्योंकि यहाँ पर हम लाते हैं आपके लिए ढेर सारी जानकारियाँ और मनोरंजन का खूब सारा खजाना।
1: जी हाँ, और भाई खजाना किसे पसंद नहीं आता?
0: जी बिल्कुल सही बात कही आपने, आप तो बिल्कुल एकदम दूसरी तरफ ही मुड़ गए। खजाना किसे
1: जी
0: पसंद
1: भाई?
0: नहीं
1: हाँ,
0: आता।
1: जो को हमें चीज लाभ दे, हमें आनंद दे, तो भाई वो सारी ही चीजें हमारे लिए अच्छी है।
0: हमारे दोस्तों की जो दोस्ती है, उनके प्यार है, उनका जो अपनापन है, ये भी किसी खजाने से कम नहीं है ना?
1: तभी तो उनके बगैर रह नहीं पाते ना।
0: अच्छा, और देखो ना, जो सुबह की जो ये घड़ी होती है ना, ये थोड़ा ज्यादा स्पीड में नहीं चलती, आपको नहीं लगता?
1: वो जल्दबाजी होती है ना, जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी, इसलिए घड़ी भी भागती हुई नजर आती है।
0: अच्छा, यही मन की एक अवस्था भी होती है।
1: हाँ,
0: जब हवा कुछ कहती हुई सी लगती है, पेड़ों की पत्तियाँ किसी अनसुने गीत की धुन पर थिरकती सी लगती है,
1: और जब मन कल की उलझनों को पीछे छोड़कर आज की ओर देखना चाहता है ना रिंकी,
0: तो बस शायद यही वजह है कि सुबह के कुछ पल पूरे दिन की दिशा तय कर देते हैं।
1: यदि दिन की शुरुआत मुस्कान, सकारात्मक सोच और अच्छे विचारों से हो जाए तो राहें कुछ आसान सी लगने लगती हैं।
0: जी हाँ, और देखिए इस सुंदर सुबह की शुरुआत करते हैं खूबसूरत से गीत के साथ, जो आपके चेहरे पर भी मुस्कान ले आए और आपकी चाय का स्वाद भी कई गुना बढ़ा दे।
1: रिंकी एक बात, इस समय चाय का स्वाद अधिक बढ़ जाता है, पता है क्यों? बच्चों की छुट्टियां चल रही ना, तो आराम से चाय पीते हुए और ये गाना सुनते हुए ना, तो दिन और भी अच्छा हो जाएगा।
0: वाह क्या बात कही आपने।

0: अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाजों में आप सुन रहे थे फिल्म सड़क का ये खूबसूरत सा ट्रैक। और श्रद्धा, हमारे
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं को कैसा लगा होगा ये गीत?
1: बहुत खूबसूरत भाई। इतनी
0: पता
1: सुबह
0: है,
1: सुबह इतना अच्छा सा गीत साथ में बैठ कर जब सुना जाए, चाय के कप के साथ ना, तो गीत और चाय दोनों बहुत अच्छे लगते हैं।
0: देखिए, हम सीधे तो अपने श्रोताओं से नहीं पूछ पा रहे हैं, तो हमने
1: हाँ
0: सोचा आपसे ही पूछ लिया जाए, क्योंकि आप जो है श्रोताओं के दिलों की बातें बहुत अच्छे से जान लेती है,
1: भाई,
0: वाया
1: हम
0: कर
1: लोग
0: लेती
1: भी
0: है
1: श्रोता होते हैं ना।
0: जी, और इसीलिए खूबसूरत से नगमे भी आप ढूंढ कर लाती है
1: जी
0: ना।
1: हाँ
0: तो चलो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और बातें तो हम बहुत सारी कर रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि अपने जो आज का सुविचार है वो भी अपने श्रोताओं को बताया जाए।
1: हाँ क्योंकि भाई जब सुविचार अच्छा होता है ना तो दिन और भी अच्छा हो जाता है।
0: जी हाँ, और आज का सुविचार क्या कहता है बता दे।
1: बिल्कुल
0: तो आज का सुविचार कहता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए तेज चलना जरूरी नहीं, बल्कि सही दिशा में चलना जरूरी है।
1: बिल्कुल, बहुत ही सुंदर विचार बताया रिंकी आपने। अक्सर हम अपनी गति को लेकर चिंतित रहते हैं, हमें लगता है कि दूसरे लोग हमसे आगे निकल रहे हैं,
0: जी,
1: है ना।
0: आज की जो प्रतिस्पर्धात्मक जिंदगी है ना,
1: हाँ
0: कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया, और ऐसे में अगर कोई थोड़ा सा भी हमसे ज्यादा सक्सेस हो जाता है तो हमें लगता है हम कहीं बहुत पीछे रह
1: पीछे
0: गए
1: रह रहा
0: हैं।
1: जाए, हम परेशान हो जाते हैं,
0: लेकिन
1: लेकिन
0: वास्तविक सफलता की कसौटी जो है वो गति नहीं है बल्कि दिशा होती है। अगर आप सही दिशा में चलेंगे तो निश्चित ही आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे।
1: बिल्कुल, और ये बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। पढ़ाई हो, नौकरी हो, रिश्ते हो या सपने, सही दिशा का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है ना रिंकी।
0: बिल्कुल सही। तो आइए आज इस विचार को अपने साथ लेकर आगे बढ़ें कि तुलना नहीं लक्ष्य महत्वपूर्ण है, और जल्दबाजी नहीं निरंतरता महत्वपूर्ण है। क्यों?
1: बिल्कुल, जैसे कहते ना, अब गीत भी सुनवा दिया जाए।
0: अच्छा, निरंतरता की बात हुई तो एक लय बनी हुई है आपकी, तो
1: जी
0: अपने
1: हाँ
0: श्रोताओं को आप मनोरंजन की तरफ ले जाना चाहती
1: जी हाँ
0: हैं।
1: भाई, उनकी मनोरंजन की लय भी ना टूटे।
0: मैं हमेशा कहती हूँ आपकी बात मैं कभी नहीं टालती, तो चलिए अपने श्रोताओं को ले चलते मनोरंजन की ओर।
2: हम आप

0: हम तुम पे मरते हैं। जी हाँ श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण के स्वर में।
1: अच्छा श्रद्धा,
0: हाँ
1: मीठे मीठे नगमे जब आप सुन ले तो आपकी बातें भी मीठी मीठी हो जाती है ना?
0: जी हाँ भाई, चेहरे पे मुस्कान भी आ जाती है।
1: जी, तो बस इसीलिए हम लाते हैं आपके लिए कुछ चुने हुए चुनिंदा से नगमे। और हमारा जो कार्यक्रम है ये इन्फोटेनमेंट है, यानी इंटरटेनमेंट तो आपका ही होगा लेकिन इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। तो आप जानकारियों की तरफ बढ़े।
0: बिल्कुल, हमारे श्रोता भी इंतजार कर रहे होंगे।
1: तो आज पहले बात करते हैं कि आज का कौन कौन से दिवस हम मनाते हैं, है
0: जी
1: ना?
0: हाँ, कौन से दिवस मनाते हैं और किस वजह से आज का ये दिन खास बन जाता है। तो आज मनाया जाता है विश्व समुद्री कछुआ दिवस। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में कछुओं के महत्व और उनके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु ये दिवस मनाया जाता है।
1: और हम अपने श्रोताओं को बता दें, आज अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पोषण दिवस भी मनाया जाता है, जो उन लोगों के योगदान को सम्मान देता है जो अपने परिवारों के लिए दूर रहकर काम करते हैं
0: और आर्थिक मदद भेजते हैं। ये उनके सम्मान और महत्व को रेखांकित करता है।
1: जी हाँ, और आज ब्लूम्स डे भी मनाया जाता है। आयरलैंड के डबलिन में लेखक जेम्स जॉयस की प्रसिद्ध उपन्यास यूलिसिस आपको याद होगी, उसकी याद में साहित्य प्रेमियों द्वारा ये खास दिन मनाया जाता है।
0: और आज ही मनाया जाता है अफ्रीकी बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके शिक्षा पर जोर देने के लिए ये दिवस विशेष रूप से मनाया जाता है।
1: एक और खास दिन है आज श्रद्धा।
0: क्या है भाई, जल्दी बताइए।
1: मैंने सोचा आप हमेशा स्वीट और मिठाई की बात करती है, तो आज कुछ ऐसा मैं भी खोज के ले जाऊं।
0: जी हाँ बिल्कुल।
1: पता है आज राष्ट्रीय फज दिवस भी मनाया जाता है। और
0: अच्छा?
1: फज जो है वो एक प्रकार की मिठाई है
0: जी।
1: और खास तौर पर ये दिन जो है वो अमेरिका में मनाया जाता है। और
0: हाँ?
1: दूध, दही, पनीर, इन सब चीजों को मिला करके ये मिठाई बनती है। और ऐसा सुना है कि ये बड़ा टेस्टी होती है।
0: भाई कोई बात नहीं, अमेरिका मनाया जाता है लेकिन हम लोग तो भाई हर दिन मिठाई दिवस मना लेते हैं ना कुछ मीठा खाकर।
1: जी, तो आप शायद अभी मेरा इशारा समझी नहीं कि ये मिठाई दिवस है आज।
0: जी हाँ भाई, मिठाई
1: चाय से काम चलाएगी।
0: नहीं भाई, आपको मिठाई भी खिलानी पड़ेगी हमको।
1: जी, तो देखिए, मीठा खाइए, मीठा बोलिए और सबके साथ मीठे रिश्तों में रखिए, क्योंकि भाई यही तो जीवन का आनंद है
0: और हमारी जमा पूंजी भी है।
1: जी हाँ, रिश्तों की मिठास बनी रहे ये बहुत जरूरी है और रिश्तों की मिठास

0: मिठास पता है कब बनी रहेगी? जब जबान में मिठास होगी।
1: जी हाँ,
0: तो
1: कहते ना कि अगर हम भले ही कम बोले लेकिन अच्छा बोले।
0: जी हाँ, तो एक इसी प्यारी सी बात के साथ में कुछ और भी जानकारियां अपने श्रोताओं को देते
1: जी
0: हैं।
1: हाँ, आज का इतिहास क्या कहता है रिंकी?
0: आज का इतिहास बहुत खास है और ये बताता है कि 1858 में आज ही के दिन यानी 16 जून से प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जिसे हम 1857 की क्रांति भी कहते हैं, के दौरान मोरार की लड़ाई लड़ी गई थी।
1: जी हाँ, और पता है रिंकी, आज एक इतिहास में बहुत ही अच्छा सा दिन दर्ज है। आज 16 जून यानी 1963 में सोवियत संघ की वेलेंटिना तेरेश्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी।
0: वाह, शत शत नमन है, प्रणाम है, क्योंकि आप जैसी महिलाओं को देखकर ही हमारे लिए एक अचीवमेंट तय होता है कि
1: हाँ,
0: हाँ,
1: हमें
0: आपका
1: प्रेरणा
0: ये
1: मिलती है।
0: अचीवमेंट है और हम भी कुछ आगे कर सकते हैं। महिलाएं किसी चीज में पीछे नहीं है।
1: बिल्कुल
0: अपने श्रोताओं को हम बता दें, 1903 में अमेरिका में पहली बार फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना 16 जून को ही हुई थी और सन था 1903।
1: और आज ही के दिन सन 1911 में न्यूयॉर्क में IBM कंपनी की स्थापना हुई थी। पहले इसका नाम कंप्यूटिंग ट्यूबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी था।
0: जी, IBM के बारे में। जी, कंप्यूटिंग ट्यूबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। और इसके साथ ही अपने श्रोताओं को बता दें कि 2010 में भूटान ने तंबाकू विरोधी कानूनों को और ज्यादा सख्त बनाया था। वहां तंबाकू विरोधी कानून बनाए गए थे कि आप तंबाकू या उससे बने पदार्थों का सेवन नहीं कर सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो इतनी ढेर सारी जानकारियों के बाद अब रुख करते हैं।
1: आज के मौसम का।
0: जी, तो मौसम क्या कहता है ये भी जान लेते हैं और मौसम की जानकारी देने के लिए हर रोज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ते हैं IMD के सीनियर साइंटिस्ट मोहम्मद दानिश जी। आइए उनसे जान लेते हैं मौसम का हाल कैसा रहने वाला है।
2: नमस्ते सर।
3: नमस्ते
2: सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम आज सुबह में। सर, हमारे
3: जी, गुड
2: श्रोताओं
3: मॉर्निंग।
2: को जी गुड मॉर्निंग सर। सर, हमारे श्रोताओं को बताइए कि आज का मौसम कैसा रहेगा।
3: ये मौसम की बात करें तो मौसम साफ रहेगा, हालांकि
2: जी
3: हल्की फुल्की बीच में बादलों की आवाज आई होगा,
2: जी
3: लेकिन तापमान में धीरे धीरे इधर आने वाले अगले 3-4 दिन थोड़ा इजाफा ही रहेगा, थोड़ा गर्मी का सबब बना रहेगा। बाकी उसके बाद फिर से जैसा कि 18 तारीख से पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर से 18-19 तारीख के बाद थोड़ा सा तापमान में गिरावट आएगी और कहीं ना कहीं तो जो गर्मी इधर बढ़ी हुई तापमान, उससे थोड़ी राहत मिलने की संभावना।
2: जी यानी कि अब थोड़े दिनों बाद इस गर्मी से हमें राहत मिलेगी, लेकिन अभी गर्मी का प्रकोप बना रहेगा।
3: जी बिल्कुल
2: जी सर, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्ते सर।
3: ओके, धन्यवाद।
1: वही रिंकी, इतनी सारी जानकारी हमने अपने श्रोताओं को दे दी है। अब समय है खूबसूरत से गीत का।

0: कुमार सानू की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म दीवाना का ये गीत। और श्रद्धा, इस गीत को सुनकर आपको ऐसा नहीं लगा कि हम कहीं थोड़ा सा पीछे पहुंच गए?
1: बिल्कुल भाई, कुछ यादें होती है ना, कितना अच्छा
0: जी,
1: लगता है भाई। खूबसूरत यादें जरूर बनानी चाहिए,
0: खूबसूरत और
1: ताकि
0: मीठी मीठी सी
1: जी
0: यादें।
1: हाँ, ताकि जब भी हम उनके बारे में सोचें तो हम सिर्फ मुस्कुराएं।
0: जी, और 90s के गीतों का तो दौर ही ऐसा था कि चाहे जितना समय मुझे लगता है निकल जाए, अगर वो आपके आसपास कहीं बज रहे तो आप
1: जी हाँ
0: गुनगुनाए बिना नहीं रह सकते,
1: जी
0: आपके
1: हाँ, आप
0: कानों में
1: उनकी
0: उनकी धुन
1: मिठास में
0: जाएगी।
1: खो जाते हैं।
0: जी, एक बार अगर वो धुन आपके कानों में गई तो आप उसमें कहीं खो जाते हैं, फिर चाहे वो सुबह का समय हो या फिर दोपहर या शाम या फिर
1: जी
0: रात
1: हाँ,
0: की
1: वो
0: तन्हाई।
1: गीत संगीत का जो भी जादू है ना, वो हर समय चल जाता है।
0: जी, और दिल खुश हो जाता है, और यही हमारा मकसद है कि हम अपने श्रोताओं को खुश रखें, उन्हें सुबह की ऐसी शानदार शुरुआत दें कि आने वाला जो दिन है वो वक्त बहुत अच्छा गुजरे, सकारात्मक गुजरे।
1: जी हाँ, मुस्कुराते हुए।
0: और देखिए, मौसम में बदलाव भी शुरू हो चुका है और अब हमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। बारिश का भी समय आने वाला है श्रद्धा, तो बहुत जरूरी है कि हम बारिश का जो पानी है उसको संचयित करने का प्रयास करें, उसे इकट्ठा करने का प्रयास करें, क्योंकि जल है तो कल है।
1: बिल्कुल, और पानी का संरक्षण तो जरूरी है ही, साथ में हम जितना प्रयास कर सके कि पेड़ पौधे लगाएं, उनकी देखभाल करें, है ना रिंकी, ताकि गर्मी जो है ना वो सुखद रहे।
0: जी, और जब पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तो हम सब भी स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे।
1: जी हाँ।

0: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे दामिनी फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत कुमार सानू और साधना सरगम के स्वर में। और दोस्तों, अब घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि इसी गीत के साथ अब हमें लेनी होगी आपसे अनुमति, लेकिन वादा है फिर किसी रोज होगी आपसे जल्द ही मुलाकात। तब तक रखिए अपना खूब ख्याल
1: और दीजिए श्रद्धा और रिंकी को आज के कार्यक्रम से अनुमति।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज सुबह। श्रोताओं, इसी कार्यक्रम के साथ अब नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम यही संपन्न होता है। दीजिए अनुमति। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया।

0: है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुरमुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर दिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जल मार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यास का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हुरमुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक जहाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी एजेंसियों की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
3: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
4: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
3: नो टेररिस्ट एक्ट इन इंडिया वुड गो

0: अनपनिश्ड।
1: वहीं सात पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
2: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मोजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति इस समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
3: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
5: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है स्विट्जरलैंड में 19

0: को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर। ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा। वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मॉनसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। टेकनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ हुर्मुज़ जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 एफएम पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्ते बरेली। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम नमस्ते बरेली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ये कार्यक्रम है जो समर्पित है हमारे शहर बरेली के लिए और बरेली वासियों के लिए। साथियों, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं अपने शहर की और बहुत सारी बातें इधर उधर की भी करते हैं। और आज शुरुआत करते हैं बरेली की। एक बहुत अच्छी खबर है कि बहुत दिनों से चौपला पुल का जो कार्य चल रहा था वो अब पूर्ण हो गया है और कल से जो है चौपला पुल सब लोगों के लिए खुल जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी है जो उस पार रहती है। चौपला पुल से आवागमन होता है जिसका, तो वो अभी बीच में कुछ कटाकटा से महसूस कर रही थी शहर से, तो अब वो ये कठिन समय जो है ये दूर हो गया है। और हम बात कर रहे हैं एक और हमारे साथी से जो इस पुल से आवागमन करते हैं और वो बताएंगे आपको इस पुल के बारे में। और जी लव तोमर जी, कार्यक्रम नमस्ते बरेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: जी, जैसा कि आपने बताया कि आप मणिनाथ में रहते हैं और इस पुल से आपका आवागमन होता है रोज ही, और इतने दिनों से ये बंद चल रहा था, तो अब जो खबर आई है कि इसका कार्य पूरा हो गया है और कल से ये पुल शहरवासियों के लिए खोल दिया जाएगा, तो कैसा महसूस कर रहे हैं?
1: सर, बड़ी राहत की खबर है, और क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी।
0: जी,
1: सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि सारा का सारा ट्रैफिक जो है मणिनाथ की तरफ से ही मोड़ दिया गया था। सुभाष नगर की तरफ से जो गया था वहां नीचे अंधी पुलिया की तरफ से स्पेस बहुत कम है निकलने का, तो ज्यादातर लोग क्या कर रहे थे कि सब कर गए ना, और उत्तर तक सारे लोग

0: जी
1: इधर से ही निकल रहे थे। तो रास्ता असल में ये उतना भी वैसा नहीं है कि जो इतने बड़े ट्रैफिक को झेल पाता।
0: बिल्कुल
1: तो आप यकीन मानिए कि एक बार, मतलब ये अक्सर ही था कि शाम को अगर आपको निकलना है तो अगर आप 7 बजे घर से निकले हैं तो सिटी तक पहुंचने तक 8 बज जाएंगे।
0: बिल्कुल। कल भी बहुत जाम लगा रहा पुल की वजह से, सुभाष नगर पुलिया में।
1: जी। तो इधर सुभाष नगर पुलिया पे तो इतना ज्यादा ट्रैफिक हो, जिंदगी हराम हो गई थी, आप ये समझ लीजिए। तो बड़ी राहत की खबर है सबके लिए,
0: जी
1: क्योंकि जाम ना बड़ी इरिटेटिंग चीज है। मतलब
0: बिल्कुल, किसी को कोई
1: आप,
0: जरूरी काम है,
1: हाँ
0: या किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी का पेशेंट है उसको दिखाने ले जाना है, या किसी की
1: जी जी
0: परीक्षा
1: जी
0: है ना,
1: सर
0: तो दिक्कत हो जाती है।
1: बहुत दिक्कत थी।
0: खैर, अब ये
1: अभी
0: परेशान।
1: अभी सब बड़ा, मतलब आपके मार्फत भी और बाकी चीजों से जो पता चला है कि कल ये पुल का फिर से आवागमन जो आरंभ हो जाएगा, तो बड़ी राहत की खबर है सबके लिए। मतलब
0: जी
1: ना केवल अकेले मेरे लिए,
0: जी
1: जो भी लोग इस चीज को झेल रहे थे या जो लोग परेशान थे, बहुत
0: बिल्कुल
1: राहत की खबर है। ऐसे समझ लीजिए कि भयंकर गर्मी के बाद बड़ी अच्छी सी ठंडी बारिश हो जाए और हवा चल जाए।
0: बिल्कुल। तो आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आपने इतना कीमती समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: साथियों, अभी आपने सुना इन लव तोमर जी को, जो उधर से निकलते हैं, वो बता रहे थे कैसी कैसी परेशानियां होती हैं। कल का दिन भीषण गर्मी में बहुत जाम की समस्या थी और लोग परेशान होते रहे, तो अब ये परेशानी बहुत जल्दी ही दूर हो जाएगी। ये बरेली के लिए, बरेली शहर के लिए बहुत ही अच्छी खबर है।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: श्रोताओ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM। साथियों, आज एक और बहुत ही विशेष दिन मनाया जा रहा है जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस। साथियों, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस प्रत्येक वर्ष 16 जून को मनाया जाता है। यह दिवस उन प्रवासी श्रमिकों के सम्मान में मनाया जाता है जो अपने परिवारों के बेहतर जीवन के लिए दूर दराज स्थानों या विदेशों में काम करते हैं और अपनी आय का एक हिस्सा घर भेजते हैं। इस धनराशि को प्रेषण कहा जाता है। साथियों, प्रेषण से परिवारों की शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास और अन्य आवश्यक जरूरतें पूरी होती हैं। ये न केवल परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है बल्कि समुदायों और देशों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस दिन का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के परिश्रम और त्याग के प्रति सम्मान व्यक्त करना तथा समाज को उनके योगदान के बारे में जागरूक करना है। साथियों, हमें प्रवासी श्रमिकों के योगदान की सराहना करनी चाहिए और उनके अधिकारों एवं कल्याण के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। यह दिवस हमें परिवार, सहयोग और आर्थिक सशक्तिकरण के महत्व की याद दिलाता है।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते बरेली। ये कार्यक्रम है जिसमें हम बात करते हैं अपने बरेली शहर के बारे में। और साथियों, एक और बहुत अच्छी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, वो है QR से टैक्स भरने को प्रेरित करेगा नगर निगम। साथियों, आपको बता दें कि शहरी क्षेत्र के लोगों को संपत्ति कर भरने के लिए अधिक भागदौड़ नहीं करना पड़ेगी। इसके लिए नगर निगम टैक्स विभाग ने सभी जोन कार्यालयों पर डिजिटल प्रक्रिया को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। साथियों, निगम अधिकारियों के अनुसार नई व्यवस्था के तहत सभी चारों जोन कार्यालयों में QR कोड काउंटर स्थापित करने का फैसला किया गया है। करदाता इन कोड्स को अपने मोबाइल से स्कैन और सेव कर सीधे पेमेंट गेटवे पर जा सकेंगे और चंद सेकंड में अपनी देनदारी निपटा सकेंगे। तो साथियों, कितनी अच्छी बात है कि हम QR से अपना टैक्स भरेंगे और जो है इससे बढ़ावा मिलेगा नई तकनीक को भी, और साथ साथ हमारा समय बहुत बचेगा। पहले बहुत लंबी लाइन लगती थी और फिर बारी बारी से सब लोग जमा करते थे, लेकिन अब ये ऐसी व्यवस्था आ गई है कि इससे चंद सेकंड में आपका काम हो जाएगा। और साथियों, टैक्स भरना हम सबकी जिम्मेदारी है और समय पर आप इसको अपना कार्य, ये जो है टैक्स का, ये आप निपटा सकते हैं।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।

श्रोताओं, अपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM और सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते बरेली। साथियों, आइए अब लेते हैं बरेली की कुछ खबरें समाचार पत्र के माध्यम से, देखते हैं बरेली में क्या क्या चल रहा है। सिविल डिफेंस ने आग से बचाव के तरीके बताए। साथियों, आपको बताते हैं अग्निशमन पखवाड़ा चल रहा है और अग्निशमन पखवाड़े के तहत नागरिक सुरक्षा के सिविल लाइंस प्रभाग की रामपुर गार्डन पोस्ट ने, सिटी सेंटर मॉल और अलकनाथ प्रभाग की राजेंद्र नगर पोस्ट ने राजेंद्र नगर में आग से बचाव का व्यवहारिक प्रदर्शन किया। गैस सिलेंडर में आग लगने पर बुझाने के बारे में जानकारी दी गई। कार्डियक अरेस्ट आने पर व्यक्ति को बचाने के लिए CPR की प्रक्रिया बताई गई। इसके साथ ही मणिनाथ प्रभाग ने भी इस बारे में जानकारियां दीं।

गर्मी में टूटा रिकॉर्ड, जिला अस्पताल में पहुंचे 3,200 मरीज। साथियों, अस्पतालों में मरीजों की बहुत भीड़ लग रही है और गर्मी जो है बिल्कुल चरम पर पहुंच गई है, तो अपना ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पर्चा और दवा काउंटर पर बहुत भीड़ है, बहुत इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तो ऐसी स्थिति से बचे रहेंगे। एक और बहुत अच्छी खबर, स्टेम सेल दान करने को 50 लोगों ने कराए पंजीकरण। साथियों, कैंसर, थैलीसीमिया जैसी रक्त की गंभीर बीमारियों के मरीजों की जान स्टेम सेल बदलकर स्वस्थ स्टेम सेल से बचाई जा सकती है। इसके लिए लोगों का स्टेम सेल दान करना जरूरी होता है। तो बरेली के लोग रक्तदान तो करते ही थे, लेकिन स्टेम सेल दान ना के बराबर ही किया जाता था क्योंकि यहाँ पर इसकी जानकारी ज़्यादा लोगों को नहीं थी और स्टेम सेल दान करने के बारे में कोई शुरुआत भी नहीं की गई थी। अब IMA की ओर से विश्व रक्तदाता दिवस से इसकी शुरुआत कर दी गई है। साथियों, स्टेम सेल दान करने के लिए पहली बार 50 लोगों का पंजीकरण भी कराया गया है। और साथियों, प्रतिबंधित मांझे की तलाश में छापेमारी शुरू, कमेटी गठित। साथियों, आधी रात के बाद तक टीम पूरे शहर में करती रही छापेमारी। 6 माह पहले से चल रहा था अभियान। साथियों, बरेली शहर में कई सारी घटनाएं ऐसी हुई जो चाइनीज मांझे के कारण हुई। पुल पर लोग जा रहे हैं और उनकी गर्दन में मांझा फंसने से दुर्घटना के कई सारे केस आए। तो इसको लेकर अब इस मांझे की, जो प्रतिबंधित मांझा है, चाइनीज मांझा, उसकी तलाश में छापेमारी शुरू की गई है। आप या आपके पास भी अगर ऐसे कोई लोग हैं या आपकी जानकारी में ऐसा है कि कहीं चाइनीज मांझा बिक रहा है, तो आप पुलिस को सूचना दे सकते हैं। ये पूरे शहरवासियों के हित में ही होगा।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब और अधिक समय नहीं है आपसे बातें करने के लिए। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन समय जो है अब इसकी अनुमति नहीं दे रहा है, तो हमें कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। नमस्कार। श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते बरेली, 100.4 FM पर। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। आइए अब आपको सुनवाते हैं लोकगीत। श्रोताओं, लोकगीतों के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंशुना सक्सेना के गाए इस लोकगीत के साथ।

श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में बुधवार दिनांक 17 जून 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है डायबिटीज और हाइपरटेंशन का दिल की बीमारियों से संबंध, शंकाएं एवं समाधान। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे मंगलवार दिनांक 16 जून 2026 यानी आज 4:30 से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 2517200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के डॉक्टर आशीष शंखधार, कार्डियोलॉजिस्ट एवं फिजिशियन उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लें। विषय है डायबिटीज और हाइपरटेंशन का दिल की बीमारियों से संबंध, शंकाएं एवं समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, मंगलवार दिनांक 16 जून 2026 यानी आज 4:30 से, और हमारा टेलीफोन नंबर है 2517200। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम। आइए अब आपको सुनवाते हैं गीता पंत के स्वर में ये लोकगीत।

श्रोताओं, श्रुति के गाए इसी लोकगीत के साथ लोकगीतों का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। आइए अब आपको जोड़ते हैं विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।

धुरंधर द रिवेंज इस फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना। इस गाने को गाया था जैस्मीन सैंडलाज ने और इस गाने में रैप किया था रिबेल ने। इस गाने की लिरिक्स लिखी है जैस्मीन सैंडलाज ने और रिबेल। म्यूजिक है शाश्वत सचदेव का।

0: सिद्धार्थ बसरूर और प्रिया सरैया की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गाना। इस गाने को लिखा था प्रिया सरैया ने, इसके म्यूजिक तैयार किया है सचिन जिगर ने और फिल्म है अ जेंटलमैन।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना। ओम शांति ओम फिल्म से सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल, विशाल शेखर का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना बयां कर रहा है लाइफ की एक ऐसी फिलॉसफी जो बनाएगी आपके हर दिन को खास। शान और अनुष्का मनचंदाना की आवाज में गोलमाल 3 फिल्म से कुमार के बोल म्यूजिक है प्रीतम का।

ये है विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गायक, संगीतकार और निर्माता की, जिनके बारे में सलील चौधरी ने कहा था, अगर ईश्वर किसी आवाज में गाते तो वो हेमंत कुमार की आवाज में ही गाते।

हेमंत कुमार का जन्म 16 जून 1920 को हुआ था बनारस में। ये जानकर आपको हैरत हो सकती है कि हेमंत कुमार का ताल्लुक बनारस से रहा था। उनके पिता वहां काम किया करते थे। बाद में उनका परिवार कोलकाता चला गया था, लेकिन बनारस से ताल्लुक होने का एक बहुत बड़ा फायदा हेमंत कुमार को किस गाने में मिला, याद है आपको? फिल्म मुनीम जी का ये गाना सुनिए, किस बनारसी अदा के साथ हेमंत कुमार ने इस गाने को गाया है।

हाँ, तो मैं कह रहा था कि हेमंत कुमार का जन्म तो भले बनारस में हुआ था, लेकिन उनका परिवार बाद में चला गया कोलकाता। कोलकाता में हेमंत कुमार को संगीत का शौक लगा और वहां उनकी संगीत की शिक्षा दीक्षा चलने लगी। 12वीं की परीक्षा देने के बाद हेमंत कुमार बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट जादवपुर आ गए और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, इसलिए वो संगीत की ओर बढ़ गए। हालांकि माता पिता ने इसका घना विरोध किया, लेकिन उन्होंने संगीत की अपनी रुचि को छोड़ा नहीं। बीच में एक दौर ऐसा आया जब उन्होंने लिखने की तरफ भी अपने कदम बढ़ाए। जानी मानी बांग्ला पत्रिका देश में उन्होंने अपनी कहानी प्रकाशित करवाई। सन 1930 के दशक के आखिर में वो संगीत की दुनिया में चले आए। सन 1935 में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने कोलकाता के आकाशवाणी केंद्र पर अपना पहला बांग्ला गीत रिकॉर्ड करवाया। हेमंत कुमार ने उस्ताद फैयाज खां और फणीभूषण गांगुली से भी संगीत की तालीम ली थी। सन 1937 में हेमंत कुमार का पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड आया कोलंबिया के बैनर तले। इसके बाद हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली गई। सन 1941 हेमंत कुमार ने पहली बार फिल्मों में गाया। ये बांग्ला फिल्म थी निमाई संन्यास और इसके संगीतकार थे हरि प्रसन्न दास। हेमंत कुमार ने अपने पहले हिंदी गीत रिकॉर्ड करवाए फिल्म इरादा में सन 1944 में। इस फिल्म के संगीतकार थे पंडित अमरनाथ और गाने लिखे थे अजीज काश्मीरी ने। हेमंत कुमार रवींद्र संगीत के विशेषज्ञ माने जाते थे। सन 1944 में बांग्ला फिल्म प्रिय बंधा

भी के लिए उन्होंने रविंद्र संगीत रिकॉर्ड किया था पहली बार। बतौर संगीतकार हेमंत कुमार की पहली फिल्म थी अभियात्री। ये बांग्ला फिल्म सन 1947 में आई थी।

1940 के दशक के मध्य में हेमंत कुमार इप्टा में शामिल हो गए और वो जननाट्य करने लगे। यहाँ सलील चौधरी भी उनके साथ शामिल थे। सन 1943 में बंगाल में पड़े अकाल के दौरान जन जागृति का काम किया इप्टा ने, और सन 1947 में हेमंत कुमार ने अपना गैर फिल्मी गीत रिकॉर्ड किया गनेर बंधु, जिसमें संगीत सलील चौधरी का था। हेमंत कुमार इस दौर में बांग्ला फिल्मों में संगीत दे रहे थे। इनमें से कई फिल्मों के निर्देशक हेमेन गुप्ता थे। कुछ समय बाद हेमेन गुप्ता मुंबई फिल्म जगत में पैर जमाने के लिए चले आए और इसके बाद उन्हें मिली फिल्मिस्तान की फिल्म आनंद मठ। फिल्म आनंद मठ का निर्देशन करते समय हेमेन गुप्ता ने कोलकाता से हेमंत कुमार को भी मुंबई बुला लिया। इस तरह से मुंबई में हेमंत कुमार की पहली फिल्म बनी सन 1952 में आई आनंद मठ।

इसी फिल्म में हेमंत कुमार ने लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड किया वंदे मातरम। आनंद मठ ने मुंबई में हेमंत कुमार के पैर जमा दिए। इसके बाद उन्होंने फिल्मिस्तान की फिल्म की शर्त

इसी दौरान बतौर प्लेबैक सिंगर हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली जा रही थी। देवानंद की फिल्म जाल में सचिन देव बर्मन ने हेमंत कुमार से ये गाना गवाया।

इसके बाद आई घर नंबर 44, फिर देवानंद के लिए हेमंत कुमार ने ये शरारती गीत गाया फिल्म 16 साल के लिए।

50 के दशक तक हेमंत कुमार एक प्रसिद्ध गायक और संगीतकार बन चुके थे। सन 1954 हेमंत कुमार के करियर की नई ऊंचाई फिल्म नागिन। फिल्म नागिन के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए।

सन 1955 में हेमंत कुमार को मिला सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म नागिन के लिए। 1950 के दशक के आखिर में हेमंत कुमार ने अपना बैनर शुरू किया हेमंता बेला प्रोडक्शंस, और इस बैनर के तले उन्होंने बनाई फिल्म नील आकाशेर नीचे। ये फिल्म सन 1959 में आई थी और इसके निर्देशक थे मृणाल सेन। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इसके तकरीबन 10 साल बाद हेमंत कुमार ने एक नया प्रोडक्शन हाउस खोला। इस बार उन्होंने नाम रखा गीतांजलि प्रोडक्शंस। हिंदी सिनेमा के इतिहास की कुछ बेमिसाल फिल्में दी गीतांजलि ने, जैसे 20 साल बाद, कोहरा, बीवी और मकान, फरार, राहगीर और खामोशी, जिसका गुलजार का लिखा ये गीत दिल की गहराई में उतर जाता है।

हेमंत कुमार के गाने सीधे दिल की गहराइयों में उतरते हैं। उनकी आवाज में एक गंभीरता है, दूसरी तरफ उनकी आवाज में एक शोखी भी नजर आती है कुछ खास गानों में। यूं लगता है जैसे कोई दार्शनिक नदी के किनारे अपना सुर छेड़ रहा हो।

आज भी हेमंत कुमार को सुनने वालों की कमी नहीं है। हेमंत दा की आवाज विविध भारती ही नहीं दुनिया भर के रेडियो चैनलों पर गूंजती है और लोग उनकी आवाज को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। हेमंत कुमार बतौर संगीतकार बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं बतौर संगीतकार उनकी कुछ निराली रचनाएं।

0: फिल्म मिस मैरी साल 1957, किशोर कुमार का ये मजाहिया गाना।
1: गाना न आया, बजाना न आया,

0: बनाना न।
1: 26 सितंबर 1989, 69 साल की उम्र में कोलकाता में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने आखिरी सांस ली। रह गई उनकी आवाज, उनका दिया हुआ संगीत और उनकी बनाई हुई फिल्म।

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर, शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 10 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद।

कार्यक्रम आपकी पसंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, आप सभी के बहुत सारे कमेंट हम तक पहुंच चुके हैं, जिसमें आपने अपनी पसंद लिख भेजी हैं, आपकी फरमाइश लिख भेजी हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आपकी फरमाइशों का ये सिलसिला। कार्यक्रम का ये पहला गीत हमारे आप सभी श्रोताओं के लिए जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और रोजी डिकैस्ट्रो, चनोरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजीत, रामानंद कुशवाहा और इनके साथी। आप हैं वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। कमर कॉलोनी बड़वाह जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर। आप हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश्वरी, ट्विंकल, टिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। आप हैं सिद्धार्थ नगर दरियापुर बावली से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप और सुशील येले। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा, अलका मिड्डा। आप हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी साहिल और भारती बघेल, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। सादुल शहर राजस्थान से हमारे श्रोता राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन और मेगा मस्किन। आप हैं नागपुर महाराष्ट्र से कमल सहनी, अफजल मलिक, संदीप मक्कड़, रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी सहनी। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान और उत्कर्ष चौहान। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश कुमार खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, अरब खुराना और एसके पप्पी। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुतासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद। बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। आप हैं बोरखेड़ा पीतरामल, जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूड़त, चेतन नाहटा। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेल से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहन शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान। कोहिनूर रेडियो श्रोता संघ गोगामा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से उस्मान खत्री, रिजवान, अब्दुल गफ्फार खत्री। आप हैं विनोद राठौर और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या निवेश और नियति कुमारी। ये हमारे श्रोता गांव रघुनाथपुरा, सतीश शर्मा, रोशनी, भावना, गरिमा, हिमांशी शर्मा। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाबख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीमुन्ना, दानिश और आसिफ शेख। लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निमी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत कौशिकी, दीपाली युवान और आर के राजा। आप हैं

सिकलापुर बरेली मौर्य मंदिर से रतन माला मौर्य, मुकेश मौर्य, प्रिंस प्रियांशी, पुष्पा गौरव और चंद्र प्रकाश मौर्य। मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, वकार हैदर, कनीज सकीना, हसीना दिलशाद और वसीम फातिमा। आप हैं पंचकुला सेक्टर नंबर 9 से आशु चुग, अश्विनी गोविंद, टोनी दीवान, लव, राधे, भाविक डिंगरा। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट। आप हैं हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा परवीन। आरवी सिंह, अरजीत यादव, प्रशांत यादव, उदित, अभय, दीक्षा, अल्लागंज जनपद शाहजहांपुर से। मोहल्ला हलवाइन शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसीन परवीन, रोजी बिट्टू, साजदा रानी और हिना कौसर। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। आप सभी श्रोताओं के लिए सुनवाते हैं फिल्म श्री 420 का ये गीत, जिसको गाया है मन्ना डे और साथियों ने। गीत के बोल शैलेंद्र के हैं, संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का।

सुनना मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मल हार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना, वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी के लिए। निकट सूर्या वेंकट हॉल नाले के पास से सत्य प्रकाश प्रजापति, मन्नू खान, मौर्य बस्ती सुरखा बरेली से रामगोपाल मौर्य, सुनीता मौर्य, कृष्णा पायल और मानसी। आप हैं वीरपुर पोस्ट बिलसड़ तहसील अलीगंज एटा से विपिन कुमार शाक्य, सपना, रविंद्र, राजेश, रमेश चंद्र शाक्य, राजीव, प्रदीप, रंजीत, सिद्धार्थ, कुमारी सुजाता, संगमित्रा, प्रज्ञा, प्रतिज्ञा और इनके समस्त परिवार। सिहारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, अरफात अदीब और कादिर चौधरी। मोहल्ला गढ़ैया बरेली मस्जिद के पास से कैसर शमसी, अजीम शमसी, सलीम और रजिया शमसी, इनके साथ हैं बेबी। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। आप हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। बठिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित और तानिया नारंग। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। ये हमारे श्रोता पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग, पूना राम और कृष्णा देवांगन। आप हैं पंचकूला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना और तुलसी मस्कीन। समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कपनो निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक लोबना और यश मंसूरी। आप हैं रानीगंज बंगाल से रवि और इंद्र, दिल्ली से ध्वनि और सानवी। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल। सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक नामदेव और हर्षित शर्मा। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा। आप हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। सरलाही सोकनाहा नेपाल से अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी शर्मा, राहुल कुमार, वंदना कुमारी, प्रियंका कुमारी और बहुत सारे साथी। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखीलाल वर्मा। ये हमारे श्रोता डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद कुमार, गौरव मंदुरकर। आप हैं सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार,

उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक भाटिया। घिसू दिलवारे, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ, कुणाल दिलवारे। राजपुर मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता हैं ये। मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी, अलोड, जिला रतलाम, एमपी से जगदीश धाकड़, नायमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़। आप हैं अकोट से विनायक वेंडे, मंगला वेंडे, विजय शुभम, पवन जरिए, के संजीव डावेराव। ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। चंदौसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से मुकेश गौतम, सुनील गौतम, अमन गौतम, विशाल यादव। बुद्धनगर खंडवा से नदीम भाई, बैजोई से राजू जी। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी, जगदीश जौहरी और ये हमारे श्रोता सोंगा मगर लोड। छत्तीसगढ़ से फणेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार और हियांश कुमार चंदन। गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। बाबूदीन मेरठ कैंट से और आप हैं ग्राम देगांव तहसील पूर्णा महाराष्ट्र से सदाशिव थोरात, कविता थोरात, श्रेया और बंटी थोरात। सब्जी मंडी कस्बा उसामाबाद नंबर एक जिला बदायूं से धर्मवीर कश्यप, उषा कश्यप, ध्यानपाल कश्यप, संजय अनमोल, अंश कुमारी, करिश्मा और मुस्कान। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता माखीजा और स्वाति माखीजा। ये हमारे श्रोता सोहन कुमार विश्वकर्मा, ग्राम बपोस महमूदपुर आंवला बरेली से। जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान इरफान, इसरार और नरगिस खातून। आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राही मेरा जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से। आप सभी श्रोताओं को सुनवाते हैं फिल्म प्रेम पुजारी का ये गीत, जिसको अपनी आवाज़ दी है किशोर कुमार ने। गीत के बोल नीरज के हैं और संगीत निर्देशन SD बर्मन का।

0: टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM और सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम आपकी पसंद में अगला गीत हमारे आप सभी श्रोताओं के लिए। आप हैं तिगड़ी कस्बा शीशगढ़ से शाहरुख खान, हाशिम खान, अरहम बाबू और किश्वानूर। बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर, घटे, संगीता, साक्षी, जयश्री महेत्रे, अंजलि करवा, बाबा बाला साले, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय ट्यूर और पीबी कुल थे। शाहजीनगर देगलूर जिला नांदेड़ से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। आप हैं नंगलखेड़ा फकवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मनीष और राहुल शर्मा। ये हमारे श्रोता राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति आकांक्षा और आकाश कुमार। गंज डंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी जंगेल। धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन, अरुषि, ओशिका आदित्य और अंजलि जंगेल। आप हैं ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा और प्रहलाद राजेंद्र वर्मा। मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना, कल्पना, मुन्नी, चांदनी और नंदिनी कुमारी। ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसामा जिला बदायूं से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, केशव, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता और सूर्यश्री यादव। गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा। बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार, मालवीय दर्द और समस्त परिवार का। वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अल्तमश खत्री, मोहम्मद शादाब खत्री। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेक विरक और मीका विरक। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से हमारे श्रोता आलिम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सईद भाई, सूफियान, अनस, आयजा, अल्फिया, सदफ, हसनैन, कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आफिया और मुस्तफा खान। उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भैरूलाल वाक्तरिया, धाकड़, भोला वाक्तरिया, प्रवीण, रियांश और प्रतीक वाक्तरिया। आप हैं प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा।

पूजा प्रथम A5B ब्लॉक जनकपुरी नई दिल्ली से, अरुण चंद्र शर्मा, रेणुका शर्मा और आपके बहुत सारे साथी विराटनगर नेपाल से, गनगोला दातागंज से इसरत खान, शायरा बेगम, रहूब खान, सावरीन बेगम, शाहबाज सैफ, ईशान आजम और अरहान खान। ये हमारे श्रोता नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नजीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, मोहम्मद उमर, राजेंद्र कटारे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी। आपने सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज उत्तर प्रदेश से पवन गौड़, सुयश, आशीष गौड़, तन्मय और अपूर्वा। रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। राजकोट गुजरात से हमारे श्रोता रश्मि झरना और भरत कुमार। आप हैं गनगोला दातागंज से इशरत शायरा, रहूप सावरीन। अनारकली बजाव जगराओं से सुनील पाठक, कमल, दीपिका गव्या, सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी, जयपाल यादव। और मालवा रेडियो श्रोता संघ गुलबालोद, तहसील आलोड, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से विक्रम मालवीय, रचना कमलाबाई, वंदेवी, आकाश महेश्वरी, विनायक और आपका समस्त परिवार। आप हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा, जिला गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी और परांजल राय। शस्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सोनिया और विशाल सपकाल। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पमार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पमार, अलमास बानो, मोइन छोटू, शंकर लाल, वनीता गंगराडे और मोहम्मद हसनैन पमार। धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, प्रीति, ऋतु, संकल्प और गुड़िया वेदा सिंह। किसान रेडियो क्लब ग्राम बपोस ललहुआ जिला खीरी से विजय पाल यादव, शिवम यादव, ऋचा शिखा, गुड़िया बबलू और विजय पांडे जी। अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। आप हैं ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू। रघुवीर नगर नई दिल्ली से शमशाद खान, मोहम्मद नौशाद, अशोक कुमार, पप्पू और सिकंदर खान। आप हैं उदयपुर राजस्थान से बाबू भाई, भारती देवी, रमेश नाचानी, विनीत और मिथिल नाचानी। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चनाताई गोंडाने, हीरामन शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने। आप सभी को सुनवाते हैं फिल्म कुदरत का ये गीत जिसको गाया है लता मंगेशकर ने। गीत के बोल मजरू के हैं, संगीत निर्देशन राहुल देव बर्मन का।

0: इतनी रात में SMS, KYC अपडेट कीजिए, नहीं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। लिंक पे क्लिक करता हूँ, ब्लॉक ना हो जाए।
1: रुको, चेक किया, लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक ही है। KYC अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब अनजान लोगों के लिए अपने अकाउंट का दरवाजा खोलना। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए और फर्जी KYC अपडेट लिंक से बचिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और कार्यक्रम का ये गीत जो है आप सभी श्रोताओं के लिए है। आप हैं गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊ नाथ भंजन उत्तर प्रदेश से। राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा।

0: इतनी रात में SMS, KYC अपडेट कीजिए, नहीं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। लिंक पे क्लिक करता हूँ, ब्लॉक ना हो जाए।
1: रुको, चेक किया, लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक ही है। KYC अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब अनजान लोगों के लिए अपने अकाउंट का दरवाजा खोलना। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए और फर्जी KYC अपडेट लिंक से बचिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और कार्यक्रम का ये गीत जो है आप सभी श्रोताओं के लिए है। आप हैं गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकर, पिंकी स्वर्णकर, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकर, ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, गांव कलमंडी खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नाथावत और आपका समस्त परिवार। आप हैं रावर करनाल से विनोद लखनपाल, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन, अंकुश अरोड़ा, और ये हमारे श्रोता रेहाना खान, हाफिजुर रहमान खान पंजाब से, गांव बांडी वाला फजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश और योगेश बगड़िया, इनके साथ हैं रजत और बेबी गरिमा बगड़िया, एयरपोर्ट रोड वंदनानगर इंदौर से नारायण भाव खड़ से, ललिता आशा रानी खड़ से, संजना परी खड़ से, गणेश कार्तिक, देविका चौधरी, लड्डू चौधरी, स्वाति प्रज्ञा, प्रज्ञा चौधरी, और गांव मऊ शर्की जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश से तेज बहादुर यादव, ममता यादव, रोनित, बेबी बानिका और दीपचंद। ये हमारे श्रोता हैं अमर रमेश चनेसर गोठ कराची से, अमर रमेश कुमार खत्री, मास्टर कृष्ण लाल खत्री, मोहम्मद अमीन जफर, सादिक शेख, शंकर गुल शर्मा, और आप हैं गांव खोखरा वाली श्रीगंगानगर से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास रोशनी और शगुन बारासा, आप पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि और मानवी मौर्य, अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना कांठ रोड लतावली से, और ये हमारे श्रोता मूलचंद कार्तिक, वीरमगांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, परवीन सुल्ताना और तबस्सुम सुल्ताना, गांव जाखो से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदर।

लाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक। आप हैं ग्राम लसूड़िया पाता, तहसील नरसिंहगढ़ से, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से। गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमलपरी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी। पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। आप हैं शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से, आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। वार्ड नंबर 16, गरीब नवाज कॉलोनी, इंदौर से रेखा रघुवंशी, पूजा रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा, नंदिनी, कुमारी वंदना मराठा। और बैंक सेंटर के पास चनेटी बरेली से हमारे श्रोता विनेश कुमार श्रीवास्तव, रागिनी श्रीवास्तव और मुस्कान। आप हैं चर डोगरी पिपरिया, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, इंद्राणी, माया साहू। और ये हमारे श्रोता हैं अलकनाथ मंदिर के सामने से बेचेलाल गंगवार, गुड्डी देवी, प्रशांत देव, ज्ञानेंद्र देव, इला देवी अंगवार, बर्फा देवी, सुनील यादव, संजय अग्रवाल, अश्विनी कुमार मौर्य, विनोद दीक्षित, राज, महावीर कश्यप, रमेश चंद्र सैनी और रॉबिन भाई। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर, उमंग, आकांक्षा और माही मलिक। आप हैं नलेश्वर नगर, नरवेल, महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला विशाल, गुरमीत सिंह, मीता, साउथ दिल्ली से। पीलीभीत, ग्राम ढकिया, केसरपुर, बांसखेड़ा से एस के राजपूत, अनिल कुमार राजपूत, कैलाश चंद्र, भगवान दास, मदन लाल राजपूत, रवि कुमार वर्मा, नवनीत वर्मा, खुशी, संतोषी, प्रिया और गुड़िया, साथ में है चंचल कुमारी। आप हैं बबलू शेख, शेख शागिर, वजीर, सोहेल शेख, मोतला बाजार से। मेन बाजार कुंडलवाड़ी, महाराष्ट्र से गंगाधर ये मेकर, प्रमोद और प्रदीप ये मेकर। शक्तिनगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सोनिया और विशाल सपकाल। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, राज, SD अंसारी, डुमराव बाजार से W अंसारी और सोनम अदीबा। आप सभी को सुनवाते हैं फिल्म शर्मिली का ये गीत, जिसको गाया है किशोर कुमार ने, गीत के बोल नीरज के और संगीत निर्देशन SD बर्मन का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के लिए राजकोट से जैमिन कुमार जैन, हेतल जैन, कृष्णा और राकेश जैन। आप हैं हमारे श्रोता जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से। रूपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश और प्रतेश संघई, आपके साथ आपका पूरा परिवार। पूजा रेडियो श्रोता संघ पलेरा हॉल टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से राजेश कुमार अकेला, यशोदा यादव, राजीव और संजीव यादव। आप हैं कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित, बेबी गर्वी और हिमाक्ष। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु, रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, मेघा राशि, किशनगंज बिहार से। और ये हमारे श्रोता पटियाली रोड गंज डनवार से आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन और अरहान हुसैन। ओखला संगम बिहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी, सत्यम और सुंदरम गुप्ता। ग्राम कोलासर नांदुरा महाराष्ट्र से प्रमोद बगाड़े, वर्षा, प्रतीक और संकेत बगाड़े। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन, मयंक शर्मा। आप हैं रामपुर रोड हल्द्वानी से गंगा सिंह रावत। गांव खावरी अव्वाल से चौधरी राजवीर सिंह, चौधरी अव्याना कंचन। ये हमारे श्रोता हैं कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा और अभय गुजराती। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू। आप हैं पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, असमानाज अंसारी, शबनम बानो। जेल रोड बक्सर से राज एस डी अंसारी और फातमा नाज। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्मी मल्होत्रा, कोयल, नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल, डुग्गू, भाविका सिक्का। आप हैं नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, मेजबी निसार, नुसरत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद, तस्लीम रजा और पप्पू भाई अंसारी। गिरगांव महाराष्ट्र से गजानन नादरे, मारोतराव पांचाल। गुजरात गांधीनगर से जी के परमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष और दीपल। आप हैं पंजाब से मोहम्मद हफीजुर रहमान, हबीब मलिक, खलील मलिक, अली रहमान। कस्बा क्योलड़िया नवागंज जिला बरेली से राजेंद्र गंगवार, प्रेमपाल, धर्मवीर, सचिन, अनुज, अनमोल, कमलेश, तुलाराम, अंकुश मौर्य, राजू, चंद्रपाल, उल्फत शर्मा, बबलू, वेदपाल और संजीव गंगवार। ये हमारे श्रोता दीवाना रेडियो श्रोता क्लब बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से प्रेम सिंह बड़वाल, सुखवीर, काजल बड़वाल, लखवीर, रानू, कृष्णा, श्रीमती छिंदो, प्रवीण, शीतल, नवीन रंगीला, निशान अनमोल और चटकू मटकू। आप हैं दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमन नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन, दीपांशु। आप हैं शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन,

रोशनी और प्रियांशी। आभा खोड़रा रेंगाखार जिला कवर्धा से राजेंद्र सिंह नेताम, देवी सिंह नेताम, दक्षप्रिया महामाया, गीत सरगम जयसूर्य नेताम। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन नौरीन, आशना मोहम्मद कैफ अंसारी। फाजिलका रोड पंजाब से भूषण खेड़ा।

विशुखेड़ा विशाल विशाल लाड़ी खेड़ा शालिनी टिवांशी खेड़ा। और ये हमारे श्रोता रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना हर्षित खुशी गोस्वामी। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, बेबी वैदेही और मनु। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमा राज, दिव्या भारती, बेताब रेडियो रेडियो लिसनर्स क्लब बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर, अबरार हुसैन, अल्ताफ हुसैन, आशिक हुसैन, मुन्ना अंसारी। पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी अंसारी, नसीबन बेगम, शानिया अंसारी, मोहम्मद इलियास, मुशाहिद हुसैन, अक्सा अंसारी, आयशा उमर और समीना अंसारी। आप सभी श्रोताओं के लिए सुनवाते हैं फिल्म साजन का ये गीत, जिसको गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने। गीत के बोल समीर के और संगीत निर्देशन नदीम श्रवण का।

कार्यक्रम का ये गीत आप सभी श्रोताओं के लिए बेरानी से रमेश कुमार खत्री, कृष्णलाल खत्री, मोहम्मद अमीन, जफर सादिक, शेख शंकर, गुल शर्मा और ये हमारे श्रोता गांव और डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, आप हैं सेक्टर नंबर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से विनय कुमार खारवन, मीनाक्षी प्लोमा और ईशानी, मधुबनी बिहार राजनगर से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, चुलबुल रानी, आप हैं नई बस्ती गंज डंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ, तैमूर और कलीम अंसारी, कुतुबखाना सब्जी मंडी बरेली से सुल्तान रजा, इकबाल रजा, जीशान अफजाल, मोनिश सादिक और आपके परिवार के सभी सदस्य, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा, हर्ष आहूजा, ये हमारे श्रोता रेगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी और हसन सिक्का, आप हैं इमामबाड़ा चौक ग्राम उदयपुर बनो जान जिला बरेली से नाजिब अली, फुरकान अली, वसीम अंसारी, अहमद अंसारी, खालिद अली मोहम्मद, हुसैफ अली, यासीन अली, नासिम दिल्ली से हाशिम अली, गालिब अली, गुड्डू रिजवान और ये हमारे श्रोता हैं सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोड़ाना, मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़, हनुमानगढ़ राजस्थान से रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान, दीवाना रेडियो श्रोता क्लब बहलोल नगर से प्रेम सिंह, सुखबीर काजल, आप हैं कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखीलाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू आरोही और स्वाति मौर्य, मदार चौक ग्राम उदयपुर जिला बरेली से नाजिम अली, वसीम अंसारी, फुरकान अली, गुड्डू और आप हैं मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार, सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से अनीश राजभर, मनीष आशीष और आकाश राजभर, ग्राम कोठा मक्खन बरेली से अफरोज अंसारी और फारूक अंसारी, हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी सोनौली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा, आप हैं राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, वंदना कुमार और बिट्टू कुमार, प्रदीप सलूजा, संगीता प्रथम, A5B ब्लॉक जनकपुरी नई दिल्ली से, कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता अनिकेत, रोहिणी ऋषिकेश, जीविका पुनावले, पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा अविका और विशाखा सोनवने, ग्राम पंचायत बाकरगंज तहसील फरीदपुर पानी की टंकी के पास से सुनील बाबू, शिवम सिंह, सर्वेश कश्यप, अभयमीत, भगवान देई, स्वाति सिंह, तान्या और आपके सभी मित्रगण, फूले नगर बीड महाराष्ट्र से बाला प्रसाद जी करवा, गीतांजलि, आकाश और आकांक्षा करवा, आप हैं नई मस्जिद करेली से इंतजार भाई अंसारी, हिब्जा नूरी, नथू अख्तर अंसारी, नन्ने शाकिर, जाहिर अंसारी, ये हमारे श्रोता नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू, ज्योति ठाकुर, ग्राम चरौदा बार नवापारा जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से

राम लोहेडी, जिला महुआ बुंदेलखंड, यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल राघवेंद्र, अरविंद्र, रागिनी, रिया, रेनू, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गुहा, सुनील पाठक। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। आप हैं मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश, राजेश, रूबी, एकता, दिव्या, रचना, ओमवती, घनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथम सिंह। ऊपरकोट मोहल्ला चौगुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अवान और आपके परिवार के सभी सदस्य। ग्राम मझुआ गंगापुर भोजीपुरा बरेली से हंसमुख जी, हस

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरंग। आइए कार्यक्रम सबरंग की शुरुआत करते हैं बीना के गाए इस लोकगीत के साथ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरंग। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:15 हो चुके हैं और ये समय है कार्यक्रम झुमका गिरा रेखा।

0: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम झुमका गिरा रे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आपको बता दें कि कार्यक्रम झुमका गिरा रे हमारा केंद्रित होता है बरेली की किसी खास जगह पर, किसी विशेष बात पर। और आज का कार्यक्रम झुमका गिरा रे बहुत ही विशेष है। क्यों? क्योंकि आज का झुमका गिरा रे कार्यक्रम केंद्रित है आकाशवाणी बरेली पर। जी हाँ, आपने ठीक सुना, आकाशवाणी बरेली, जिसे आप रोज बहुत प्यार से सुनते हैं और अपना बहुत सारा प्यार देते हैं। आज हमारा झुमका गिरा रे केंद्रित है इसी स्थान पर, आकाशवाणी बरेली पर। और आपको बता दें क्योंकि कल 17 जून 1993 को, कल के दिन ही इसकी स्थापना हुई थी, तो हम इसका एक तरीके से स्थापना दिवस भी मना रहे हैं कल। और इसलिए आज हमने झुमका गिरा रे केंद्रित किया है आकाशवाणी बरेली पर। और आपको बता दें साथियों कि आकाशवाणी बरेली भारत के सार्वजनिक रेडियो प्रसारण नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र और आसपास के जिले में समाचार, शिक्षा, संस्कृति और मनोरंजन से जुड़े हुए कार्यक्रम अनेक प्रकार के प्रसारित करता रहता है। साथियों आप भी सुनते हैं इसके नए नए कार्यक्रम। और एक बहुत ही विशेष बात है कि इसका एक नया कलेवर भी आपके सामने है कि आप अब सोशल मीडिया के माध्यम से भी इससे जुड़ सकते हैं, अपनी पसंद के गीत सुन सकते हैं। तो इसी बात पर अब आपको सुनवाते हैं हमारे स्थानीय केंद्र प्रमुख मिथिलेश श्रीवास्तव जी के विचार।
1: दोस्तों नमस्कार, सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक, बहुत शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां कि आकाशवाणी बरेली का हम स्थापना दिवस मनाए जा रहे हैं 17 जून को। जी हाँ, 17 जून को ही इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, और तब से आकाशवाणी बरेली आप सभी श्रोताओं का मनोरंजन भी कर रहा है और जानकारियां भी दे रहा है, यानी इंफोटेनमेंट आपको दे रहा है। और आप सभी श्रोता हम सबको प्यार दे रहे हैं, आकाशवाणी बरेली को प्यार दे रहे हैं, तो ऐसे ही आगे भी प्यार देते रहिए, साथ मनाए रहिए। और देखिए सोशल मीडिया पे भी हमारा परिवार लगातार बढ़ रहा है, और आजकल ज़माना है सोशल मीडिया का, तो आप बढ़ चढ़ के और भी लोगों को जोड़िए। और रेडियो आप कैसे सुनते हैं ये भी बताइए, ऑनलाइन सुनते हैं या फिर रेडियो सेट अभी भी आपके पास है। तो आज स्थापना दिवस जो है 17 जून को जो हम मना रहे हैं अब, तो उसमें आप चाहें तो कुछ अपने वीडियोस भी भेज सकते हैं, अपने फोटोग्राफ्स भी भेज सकते हैं, है ना। और जैसा कि आपको पता है कि आकाशवाणी बरेली से न केवल के बरेली ही बल्कि बहुत सारे दूर दूर के भी श्रोता जुड़े हैं, तो आप सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सब जुड़े हैं। और झुमका गिरा रे जो प्रोग्राम है, ख़ास तौर पे ये बहुत पहले शुरू किया गया था, आप सभी आम जनता के बीच आकाशवाणी बरेली की टीम जाती थी, उनके विचार जानती थी और उनको जागरूक करने का भी काम करती थी, वो ट्रैफिक नियम हो या स्वास्थ्य संबंधी जो बातें हों। और इसी क्रम में एक तरह से उसका अपडेटेड वर्जन 2.0 झुमका गिरा रे चल रहा है, कई महीनों से चल रहा है, और हम बरेली के तमाम जगहों के बारे में आपको बताते हैं, हमारे साथी वहां जाते हैं, वहां के लोगों से बातचीत करते हैं और अच्छी सी जानकारी आपको देते हैं। तो ये प्रोग्राम भी आपको कैसा लगता है बताइए। और 17 जून को स्थापना दिवस के अवसर पर जो है हम सुबह सुबह 6 बजे एक वाकाथन का भी आयोजन कर रहे हैं। वाकाथन मतलब श्रोताओं की हम लोग पैदल चलेंगे आकाशवाणी बरेली केंद्र से और कुछ दूर तक, फिलहाल हमने सोचा है कि ITBP तक चलेंगे। देखिए सबसे बड़ा जो धन है वो है हम स्वास्थ्य, हमारी सेहत अच्छी है तो हम बहुत धनवान हैं, नहीं तो ढेर सारा पैसा होते हुए भी अगर हमारे पास सेहत नहीं होती है तो हम उदास हो जाते हैं, और हम सारा पैसा हमारा सेहत ठीक करने में ही, इलाज में ही खर्च हो जाता है। तो यही संदेश देने की थोड़ी सी कोशिश है इस माध्यम से, वाकाथन के माध्यम से, कि और आकाशवाणी के 90 वर्ष जो हाल ही में पूरे हुए हैं, तो पूरे देश में भी मनाया गया है वाकाथन।

और मैराथन कराया गया, तो उसी क्रम में आकाशवाणी बरेली का जो स्थापना दिवस है उसकी सुबह भी हम सब मिलके आइए, आप सब भी हमारा साथ दीजिए और हम सब मिलके एक स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे और अपनी सेहत को कुछ मिनट कुछ घंटे देंगे सुबह सुबह 6 बजे 17 जून को। शुक्रिया।

0: बजने दे।
1: और इसी क्रम में हमने अपने कुछ पुराने लिसनर्स जो हैं हमारे श्रोता, उनसे बातचीत करी, वो भी आपको सुनवाते हैं, आइए इसी कार्यक्रम में।
2: जी, मैं अनोखीलाल मौर्य कटाचान का पुराने शहर बरेली से।
3: जी अनोखीलाल जी, कल हम मना रहे हैं आकाशवाणी बरेली का स्थापना दिवस और आप हमारे नियमित श्रोता हैं, तो अपने विचार हमें बताइए कि आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं, कब से आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली को।
2: मैं 17 जून सन 1993 से सुन रहा हूँ सर।
3: अच्छा जी, तो कैसे लगते हैं कार्यक्रम?
2: कार्यक्रम बहुत बढ़िया चल रहे हैं सब, आकाशवाणी बरेली के नंबर वन कार्यक्रम चल रहे हैं सब, सभी किसान वाणी है, युगवाणी है जी, अनुरोध गीत कार्यक्रम है और आपकी पसंद कार्यक्रम है, महिलाओं के लिए कार्यक्रम है, अंकुर कार्यक्रम है, बहुत ही अच्छे चल रहे हैं।
3: हमारे और सुनने वाले जो हमारे श्रोता हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: हम ये संदेश देना चाहेंगे साहब, सभी श्रोता दिल खुल के सुने इस कार्यक्रम के लिए, आकाशवाणी के लिए जुड़े, ज्यादा से ज्यादा जुड़े और कम से कम 1,00,000 से ऊपर सब श्रोता हो जाए आकाशवाणी बरेली में हमारे, हमें बहुत ही खुशी होगी। और आकाशवाणी बरेली को आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाशवाणी बरेली की, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, हम श्रोताओं के पहुंचाते हैं कार्यक्रम।
3: धन्यवाद अनोखीलाल जी, आपने इतना समय दिया और अपने विचार व्यक्त किए आपका कार्यक्रम झुमका गिरारे में। निसार अहमद जी, कार्यक्रम झुमका गिरारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: जी
3: आप नियमित श्रोता हैं और अपने विचार बताइए आकाशवाणी बरेली के बारे में।
4: जी, सबसे पहले मैं स्थापना दिवस की आकाशवाणी बरेली के सभी अधिकारियों को और सभी एंकर भाइयों को और जितने भी सुनने वाले मेरे रेडियो दोस्त हैं, सबको मैं स्थापना दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूं।
3: जी।
4: और बाकी मैं आकाशवाणी बरेली से काफी लंबे समय से कार्यक्रमों को सुन रहा हूँ और कार्यक्रम बल्कि सुन नहीं रहा हूँ, उनके साथ साथ ज्ञान की बातें भी, ज्ञान भी हासिल कर रहा हूँ, मनोरंजन के साथ साथ हमें नॉलेज भी हासिल हो रही है। और कुछ रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम ऐसा एक कार्यक्रम है आपके यहाँ से, डॉक्टर लोग जो जिस विषय पे बात करते हैं बहुत अच्छी जानकारी मिलती है उनसे, और काफी अच्छे अच्छे कार्यक्रम आप लोग बड़ी मेहनत के साथ कार्यक्रमों को पेश कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है।
3: जी निसार जी, आपने हमें इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: ओके सर, थैंक यू।
3: करीब भाई नमस्कार।
5: जी नमस्कार,
3: कार्यक्रम झुमका गिरारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: गरीब भाई, आकाशवाणी बरेली कल यानी 17 जून को पूरे कर रहा है 33 वर्ष, तो इस विषय में आप अपने विचार बताइए, आपके क्या विचार हैं?
5: भाई मैं तो लगभग 20 साल से इस कार्यक्रम को सुन रहा हूँ आकाशवाणी बरेली को, और इस आकाशवाणी कार्यक्रम ने जो है, आकाशवाणी बरेली ने जो है बहुत बहुत अच्छे कार्यक्रम दिए हैं और बहुत बहुत अच्छे अनाउंसर हैं, अधिकारी हैं, बहुत बहुत अच्छी मेहनत करते हैं और बहुत बहुत बढ़िया कार्यक्रम सुने हैं और सुनते आ रहे हैं, सुन भी रहे हैं कार्यक्रम। रेडियो जो है हमारा एक सच्चा साथी है जो हमारा अकेलापन दूर करता है।
3: जी
5: जी, बहुत ज्ञान विज्ञान सब कुछ इसी से सीखने को मिलता है, मैंने आज तक जो सीखा है रेडियो से ही सीखा है।
3: जी।
5: तो 17 जून 1993 स्थापना दिवस हुआ तो मैं बहुत बहुत आपको, आकाशवाणी परिवार को, सभी को बधाई देना चाहता हूँ।
3: जी बहुत बहुत धन्यवाद गरीब भाई।
5: जी जी नमस्कार।
1: श्रोताओं, तो ये थे विचार हमारे जो रेगुलर लिसनर्स हैं कुछ उनके, और साथियों अभी मिथिलेश सर ने भी जानकारी दी कि आकाशवाणी के स्थापना दिवस पर यानी 17 जून 2026 को कल हम एक वॉकाथन का आयोजन कर रहे हैं जो होगी सुबह 6 बजे से, आकाशवाणी बरेली केंद्र से ही शुरू होगी और थोड़ी दूर हम अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने पर्यावरण के लिए, एक जागरूकता देने के लिए समाज में और अपने आप के लिए भी ये वॉकाथन का आयोजन किया जा रहा है। यदि आप इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं तो सुबह 6 बजे आप आकाशवाणी केंद्र पर आ सकते हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, कार्यक्रम में समय अब बहुत अधिक नहीं है कि आपसे बहुत बातचीत की जाए, तो कार्यक्रम झुमका गिरा रे का आज का अंक बस यहीं तक, फिर अगले कार्यक्रम में मिलेंगे किसी और नई जगह के साथ, किसी नई बात पर, और अब हमें कार्यक्रम से अनुमति दीजिए, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम झुमका गिरारे। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। आई श्रोताओं, अब आपको जोड़ते हैं आकाशवाणी के FM रेनबो केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला।

FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए airbareli@cbs.gmail.com।

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं निखिल सिंह।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ निखिल सिंह। 12 वर्ष इतिहास के पन्नों में ये एक छोटा सा अध्याय लग सकता है, लेकिन अगर आप किसी राष्ट्र की जीवन यात्रा की बात करेंगे और खासतौर पर अगर भारत की आजादी के बाद से जीवन यात्रा की बात करें, तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव में तब्दील हो चुका है। एक ऐसा पड़ाव जहां सपने संकल्प में बदलते हैं और संकल्प बदलाव का वाहक बनता है, बदलाव की एक नई तस्वीर गढ़ता है। पिछले एक दशक में या उससे थोड़े से ज्यादा वक्त में अगर हम बात करें, तो ये जो बदलाव है इसको बहुत तेज गति से हमने देखा है, महसूस किया है और बदलाव के मायने बदलते भी देखे हैं। और अब हम इन बदलाव के अगर महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें, तो घर, शहर और ऊर्जा, ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आम नागरिक के जीवन की धड़कन, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, और इस धड़कन को संभालने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के पास है, वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आज हमारे साथ सीधा बेबाक संवाद करेंगे। स्वागत करते हैं हम केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी, बहुत स्वागत है सर।
2: धन्यवाद।
1: बहुत लंबा आपका सर सफर रहा है मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का, तो सबसे ज्यादा फोन आजकल कहां से आते हैं, ज्यादा वक्त किस में गुजरता है, ये बिजली वाले विभाग में या फिर शहर वाले में?
2: देखिए, मेरे लिए दोनों विभाग इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और उसमें कभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया कि मुझे कौन से विभाग को समय ज्यादा देना, कौन सा कम देना। जितनी जांच की आवश्यकता होती है वो विभाग के लोग हमको बताते हैं, हमारे मन में विचार आता है हम उनको बताते हैं, और मेरे पास समय की कमी होती नहीं है। अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे उठता हूँ, 1-2-3 घंटे अपने व्यक्तिगत काम के लिए आवश्यक होते हैं, 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेरा सारा समय डिपार्टमेंट्स के लिए है, सारा जनता के लिए है, सारा समाज के लिए है, देश के लिए है, प्रदेशों के लिए है, इसलिए मुझे समय की कमी नहीं होती है। इसलिए जो जितना आवश्यक होता है मैं उन दोनों विभागों को देता हूं, और मुझे लगता है कि दोनों विभागों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। उसमें मैं किसी एक को कहूं कि ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, आवासीय व्यवस्था नहीं है, वो ठीक नहीं है।
1: ठीक बात है। अच्छा, अगर एक एक मंत्रालय की बात करें, तो जो आवासन और शहरी कार्य, इसमें मोदी 3.0 की बात करें, क्या मेन थ्रस्ट है, क्या प्राथमिकताएं, अगर हम आपसे समझना चाहें किन किन चीजों पर आपका फोकस है?
2: देखिए, फोकस के लिए अगर मैं कहूँ तो जो सामान्य व्यक्ति है, खास करके जो गरीब व्यक्ति है, उसको हाउसिंग की, अफोर्डेबल हाउसिंग की एक जो जरूरत है उसके लिए हम उपलब्ध कराने में बहुत से काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। PMAY प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, पहले PMAY 1 था, PMAY 2 हो गया, उसके माध्यम से हमने 2 करोड़ मकान देने हैं, 1 करोड़ 13 लाख हम दे चुके हैं, तो बाकी मकान भी इस अगले वर्षों के अंदर जिनकी सारी प्रक्रिया चल रही है, उनका चयन हो रहा है, उन सबको मकान उपलब्ध हो ये देंगे। तभी हमने यहाँ पर जो जे कॉलोनीज हैं, यहाँ ड्यूसिम के माध्यम से, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता वो, ड्यूसिम के माध्यम से उनको मकान दिए जाए, इसका हम प्रयत्न कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई जो स्कीम बनाई है वो TOD बनाई है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ताकि उसके कारण से एक तीर से 2 निशाने हो जाए। क्या मेट्रो के ट्रैक के इर्द गिर्द 500 मीटर में लोगों को मल्टी स्टोरी फ्लैट बना करके दिए जाए, और उसमें कम से कम जो ट्रेवल करने का मोड है, उनके जो रोड ट्रैफिक है वो खत्म होगा, मेट्रो से ट्रेवल कर सकेंगे, तो एक तरफ रोड का ट्रैफिक जाम खत्म करना, दूसरे से उनको अफोर्डेबल हाउसिंग का लाभ मिल जाना, दोनों चीजें

श्रोताओं, हमें खेद है कि हम ये कार्यक्रम आपको थोड़ी देर से सुनवा पा रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला।

0: इंटरेस्ट जो है उसका सबवेंशन करेंगे। ऐसा नहीं कि उनके लिए योजनाएं नहीं है, तो सबके लिए अलग अलग योजनाएं हैं। एक समय हम चाहते हैं कि देश में कोई परिवार ऐसा न रहे जिसके सिर पर छत ना हो। हाउसिंग फॉर ऑल, ये प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन जो दिया हुआ है, इसको हम पूरा करेंगे।
1: जी, एक बात आपने कही हाउसिंग फॉर ऑल, ये जो आपने कहा ना कि मध्यम वर्ग के लिए भी करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो हाउसिंग फॉर ऑल की आपने बात कही, एक तो सबको घर मुहैया कराना, लेकिन सबके जीवन स्तर भी ऊपर रहे, और सिर्फ घर की बात नहीं बल्कि वो सुविधाएं जिसको कहते हैं ईज ऑफ लिविंग के साथ में, उसके लिए फोकस है।
0: बहुत चीजें हैं, केवल घर का छत के साथ काम नहीं चलता है, उसमें पानी भी चाहिए, उसमें गैस की चूल्हा भी चाहिए, उसके अंदर लाइट भी चाहिए, उसमें शौचालय भी चाहिए, उसमें ऐसी सब सुविधाएं जो एक घर में परिवार में चलाने के लिए आवश्यक हैं, वो सब मुहैया कराने के लिए योजनाएं बनाई हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 12 साल में इतनी योजनाएं इतनी व्यवस्थाएं दी हैं उज्ज्वला योजना के नाम से। अब मुझे लगता है कि परिवारों के अंदर प्राय प्राय सब घरों में गैस का चूल्हा कनेक्शन पहुंच गया है। इसी प्रकार पानी, लगभग करोड़ों के रूप में जो शायद 3 करोड़ नए कनेक्शन हमने जो अमृत में दिए हैं, पानी के कनेक्शन दिए हैं, तो स्वच्छ जल ये सबके घरों में पहुंचे, पानी पहुंच गया, अन्न सबके घरों में राशन हो, 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त अन्न योजना जो दी है, खास करके कोविड में बहुत ध्यान किया गया, वो हम दे रहे हैं। अब उसको पानी भी पहुंच गया, उसको अन्न भी पहुंच गया, अब उसके यहाँ रसोई भी व्यवस्था हो गई, बिजली पहुंच गई, लेकिन शौचालय उसकी भी आवश्यकता उतनी महती आवश्यकता है, तो इसमें भी लगभग 12 करोड़ ये शौचालय बनाए गए हैं। उसकी व्यवस्था 2014 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि घर घर में शौचालय चाहिए, जहाँ घरों में जगह नहीं है वहाँ कम्युनिटी टॉयलेट चाहिए, कम्युनिटी टॉयलेट की व्यवस्था की, बाजारों के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स इसकी व्यवस्था की। तो ऐसे एक से एक बढ़कर के काम, ये घर की आवश्यकताओं के हिसाब से सब योजनाएं दी गई हैं, और सब योजनाओं में अब अगली योजना आती है कि उस परिवार की आमदन कैसे बढ़े, लाइवलीहुड की व्यवस्थाएं भी की, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, ड्रोन दीदी की व्यवस्था की, लखपति दीदी, हर परिवार का जो रोजगार बढ़े उसकी स्किलिंग की व्यवस्था, आमदन हो, सरकारी गरीब आदमी को सुविधाएं जितनी आवश्यक है वो दी जाए, ताकि उसका जीवन सुखी हो, ईज ऑफ लिविंग के नाते से एक आदमी का सेटिस्फेक्शन लेवल, ये तभी ठीक हो सकता है जब उसकी सारी आवश्यकताओं की चिंता सरकार करे।
1: बिल्कुल ठीक बात है, और विकसित भारत जिसका हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2047 तक, वहां तक पहुंचना है, तो जाहिर तौर पर अगर इन्हीं में आदमी उलझा रहेगा। लेकिन एक बात और सामने आती है, कई बार मध्यम वर्ग से जुड़े हुए लोग, आम आदमी जिसको हम कहते हैं, वो कहता है कि मकान खरीदना तो धीरे धीरे पहुंच से बाहर होता जा रहा है। कैसे, जो आपने अभी बताया, ये चीजें कैसे प्रसारित करें लोगों को कि सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिलती है या ये आपके रीच में है?
0: ये अलग अलग शहरों की अलग अलग स्थानों की व्यवस्थाएं हैं, सब जगह एक जैसा नहीं है। जहाँ चीजें, खास करके जमीन, बहुत महंगी हो गई है, क्योंकि वो तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है, जमीन तो लिमिटेड है, कैन नॉट बी एक्सपेंडेड, इट्स नॉट द रबर, तो जमीन जितनी है उसी का उपयोग करना है। शहरों के अंदर विकास बहुत हो रहे हैं, शहरों के अंदर देश और दुनिया के इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनके कार्यालय बन रहे हैं देश के अंदर, चाहे वो प्रदेश सरकारें हैं, चाहे हमारे केंद्र सरकार हैं, चाहे लोकल बॉडीज हैं, उनके काम बढ़ रहे हैं, तो उनकी आबादी बढ़ रही है। अब दिल्ली को लीजिए, दिल्ली की आबादी 2011 में 1.6 करोड़ थी, आज वो आबादी लगभग 3 करोड़ होने को पहुंच रही है, तो 15 साल में दुगने से भी ज्यादा, लगभग 2.5 गुना ये आबादी हो गई है, और हमें अनुमान ये है कि 2047 तक ये आबादी 5 करोड़ से पार करने वाली है। तो जब आबादी बढ़ेगी, जमीन उतनी है, ये समस्या आएगी, उसके लिए जो हमारी हाउसिंग पॉलिसी है, कंट्री टाउन, टाउन कंट्री प्लानिंग की पॉलिसीज हैं, उसमें ऐसे बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी बनाया जाए, उनको दिया जाए, कॉस्ट जमीन की कम पड़े, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगभग बराबर रहती है, तो ऐसे वो प्लानिंग जितनी ज्यादा हम बना पाएंगे उतना ही लोगों को सुविधा मिलेगी। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को बहुत नजदीक महंगा मकान मिलता है, वो थोड़ा दूरी पर भी जाता है, तो उसके लिए हमने फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको लागू किया, RTSC बन रही है, मेट्रो खूब बन रही है, आज 1,150 किलोमीटर मेट्रो पूरे देश में है, दिल्ली में भी लगभग 400 किलोमीटर से ऊपर अकेले एक शहर में ये पहुंच गई है, और मैं समझता हूं कि दुनिया के बड़े शहरों में न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मेट्रो है, उसके बाद दिल्ली है। अगर देशों में बात करें तो सबसे ज्यादा चाइना में, उसके बाद USA में, उसके बाद हम थर्ड नंबर पर मेट्रो में है। तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आगे बढ़े, RTS यानी अब मेरठ, जो हमारे यहाँ से 2-2.5 घंटे का सफर लगता था, आज 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ आदमी पहुंच जाता है। तो रास्ते में बहुत स्थान है जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, उनको स्थान मिल जाते हैं। अगली रेलवे लाइन बहुत जल्दी अब दिल्ली से और करनाल, फिर दिल्ली से नीमराणा, ये सारी लाइनें बन रही हैं। तो 100-100 किलोमीटर के जो हमारे रास्ते हैं NCR के एरिया में, इस समय वहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग के अच्छे स्कोप हैं, वहाँ लोगों को रहेंगे तो रोजाना आधे घंटे का ट्रैवलिंग करके दिल्ली में आएंगे। तो कैसा स्थान है, कैसी जगह है, ये 4-5 बड़े शहरों की समस्या है, बाकी बहुत शहरों की ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, मोटे रूप से तो तीन शहर है, अदरवाइज फिर चेन्नई कलकत्ता में थोड़ी कम समस्या है।

0: बाकी स्थानों पर सब अफोर्डेबल में कोई समस्या नहीं आती है मध्यम वर्ग।
1: ठीक बात है। एक चीज और, इन शहरों को डेवलप करने की और इतनी सारी चीज, मेट्रो और बहुत बड़ा चेंज है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब बात करते हैं सीवर की, जब हम बात करते हैं जैसे बरसात के दिनों में आप देखते हैं शहरों पे, इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए, इन चीजों से निजात पाने के लिए कितना काम किया जा रहा है, कितनी तेजी से किया जा रहा है, या ये कहें कब तक इस पे एक कंप्लीट परिवर्तन सा दिखेगा, कैसे समझे इसको?
0: देखिए, शहरों की जब शुरू होते हैं, शहर बनना या शहर को धीरे धीरे बढ़ना, उस समय किसी को कल्पना नहीं होती कि यहाँ कितना बड़ा लोड शहर पर पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में जो प्लानिंग बनाई जाती है, उस
1: जैसे भी आपने दिल्ली का उदाहरण दिया कि तीन गुना ढाई गुना बढ़ गए,
0: तो किसी को जब दिल्ली बसी होगी या दिल्ली को जब फैला हुआ होगा, किसी ने ध्यान ही नहीं किया होगा कि इतनी आबादी हो जाएगी। आज फिर भी आंकलन किए जा रहे हैं कि जिस गति से पहले बढ़ा इसी गति से और बढ़ेगा, तो आज से ही हम व्यवस्थाएं बनाना शुरू करें। मुझे गुरुग्राम का ध्यान में है, 80s में मैंने गुरुग्राम देखा था, एक गांव था, थोड़ा सा साथ कस्बा था, तो मुझे लगता है हार्डली वहां की दो भी नहीं होगी, 1-1.5 लाख की आबादी थी। ये 80s की बात है। आज वही आबादी वहाँ 40 लाख हो गई है। और उस समय जब ये शहर मॉडर्न सिटी, जिसको गुड़गांव कह, न्यू गुड़गांव कह लें, ये बना था 2004-5 के आसपास, उस समय भी किसी ने नहीं सोचा था गुरुग्राम इतना बढ़ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए प्लानिंग ठीक बनी नहीं, लेवल्स ठीक नहीं हुए, उसका जो एरिया है, कैचमेंट एरिया कितना होगा, पानी कितना आएगा, उसको निकासी कितनी चाहिए। जब खाली होता तो पानी कहीं से भी निकल जाता है, लेकिन जब विकास हो जाता तो पानी को पैसेज का नैरो साइज हो जाता है, तो नैरो साइज में उतना पानी निकलता नहीं है, फिर समस्याएं आती हैं। आज हमने उसके लिए कहा कि जो ऐसे स्थान समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए सीवेज सिस्टम द्वारा बनाया जाए, उसमें पानी निकासी की व्यवस्थाएं वो द्वारा बनाई जाए, उसमें जो केंद्र को सहायता करनी है केंद्र सहायता करेगा, स्टेट को अपना पैसा लगाना वो लगाएगा, यूएलवीज को भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि वो भी उसमें शेयर करें। अब हमने पीछे अमृत 1 अमृत 2 योजना चलाई, इसीलिए चलाई, पीने का पानी भी और जो पानी की निकासी है वो भी। स्वच्छ भारत मिशन में हमने बनाया कि जो सीवेज सिस्टम है उसमें पानी को ट्रीट किया जाए और ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाए, क्योंकि पानी की अपने आप में समस्या वैसे भी बहुत आने वाली है, उससे समस्या का हल होगा। इन सब चीजों पर भारत सरकार भी काम कर रही है, प्रदेश भी कर रहे हैं, मिल करके बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: अच्छा, छोटे जो शहर जिनकी हम बात करते हैं, टियर 2 टियर 3 शहरों, क्या इस तरह की योजनाएं, या ये हम पूछें आपसे सीधे कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ वर्षों में वहां के नागरिक क्या बदलाव महसूस करेंगे, क्योंकि हम लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं, 12 वर्षों में देश के नागरिकों ने वो महसूस किया है।
0: अभी जैसे हमने एक नई स्कीम बनाई है, वो है अर्बन चैलेंज फंड। तो अर्बन चैलेंज फंड में 1 लाख करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार की ओर से होगा, 1 लाख करोड़ रुपया प्रदेश सरकारें अपने पास से लगाएंगी, 2 करोड़ रुपया आउटर एजेंसी से फाइनेंसिंग कराई जाएगी। तो 4 लाख करोड़ रुपया 5 साल में लगाना हमको, और वो इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए लगाना है। इसकी स्कीम सारी मंगवाई जा रही है, सब प्रदेश अपनी अपनी स्कीम भेज रहे हैं, प्रदेशों को हमने बता दिया कि आपका इतना टारगेट है, इतनी स्कीम्स बना के लाओ, उसमें जो समस्याएं उनको दिखती हैं वो लाएंगे। इसी में साथ में हमने कंडीशन लगा दी कि जो छोटे कस्बे हैं, म्यूनिसपैलिटीज हैं, उनमें कम से कम 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें बना के आप लाओ। 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें अगर बनेंगी तो ऐसे 5 करोड़ में छोटे कस्बे का पानी की निकासी, पानी की सप्लाई, सीवरेज के, स्वच्छ भारत मिशन के छोटे बड़े प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए में बहुत ज्यादा बन सकते हैं। 5 करोड़ रुपए एक शहर के लिए
1: निश्चित तौर पर ये तब्दीली आएगी। एक बात और, जब हम बड़े बदलाव की बात करते हैं, हमने मेट्रो शहर की बात करी, स्मार्ट सिटीज, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, लेकिन स्वनिधि योजना जिसको कहते हैं कि रेहड़ी वाला, पटरी वाला, खोमचे वाला, उसकी लाइफ में परिवर्तन कैसे इसको कर रहे हैं, कितना बदलाव आया है आपको लग रहा है, और कितना आए हैं, कितना आगे जाना है?
0: देखिए, मैं इस काम के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन को सलाम करता हूँ, उनको सलूट करता हूँ कि कैसे उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं तो सब आ जाती है मस्तिष्क में, जो शासक होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, छोटी योजना और वो भी एक स्ट्रीट वेंडर, उसकी चिंता करना। तो उन्होंने स्पेशल योजना बनवाई, आज उस योजना को चलते हुए 6 साल हो गए हैं
1: जी।
0: और उस योजना में उन्होंने कहा कि जो ऐसा रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जिसके पास कोई गारंटी नहीं है देने के लिए, और वो जो बाजार से लोगों से साहूकार से पैसा लाता है, तो जितना पैसा लेता है साल भर में उसको डबल देना पड़ता है, तो वो अपनी कमाई तो वहां सारी निकल जाती है उसकी, फिर उसकी सहायता कौन करेगा? तो ये विषय आया कि ऐसा कोई भी रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जो शहर के अंदर काम करता है, किसी भी रूप में काम करता है, उसकी सिलेक्शन करिए, उनको सबको 10,000 रुपए की सहायता प्रदान करिए, बैंकों से दिलवाएंगे, और उसको कहेंगे 1 साल में इसको वापस करना है। यानी 10,000 रुपए लेता है तो महीने का अगर 1,000 रुपए भी देना शुरू करेगा तो उसके 10,000 10 महीने में समाप्त हो जाएंगे, और उसका जो इंटरेस्ट है वो भारत सरकार देगी। केवल 1,000 के बदले में 1,000 ही देना है। साथ में फिर अगले साल में जोड़ा गया कि डिजिटल पेमेंट अगर वो लोगों से लेता है, उसकी व्यवस्था करता है, फिर उसका इंसेंटिव दिया जाएगा, तो और उसमें लाभ हो जाएगा। फिर ये कहा कि 1 साल में अगर 10,000 का फर्स्ट ट्रेंच का वो लोन वापस करता है तो अगले साल में वो 20,000 रुपए का ले सकता है, 20,000 का वापस करता है तो वो 30,000 का ले सकता है। बाद में स्कीम को हमने मॉडिफाई किया, 10,000 की जगह 15,000 कर दिया, 20,000 की जगह 25,000 कर दिया।

0: और 30,000 की जगह सीधा 50,000 कर दिया कि वो तीसरी बार में अगर दो बार पैसा वापस करता है तो उसका ऊपर हमारा भरोसा हो सकता है कि वो 50,000 पहले ले उसी तरीके से वो वापस करे। और यहीं तक नहीं, हमने कहा कि 50,000 के बाद उसको 30,000 रुपए का UPI कार्ड भी देंगे जो क्रेडिट कार्ड होगा, जितना पैसा चाहे बैंक से ले आए उतना जाके जमा कराए, उसका रेगुलर 2 महीने के अंदर जमा कराता रहेगा, नो इंटरेस्ट। 2 महीने से डिले करेगा तब थोड़ा इंटरेस्ट के ऊपर रखा है। बहुत रुचि जागी और रुचि जागने के बाद आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोर देन 75 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है। 1,05,00,000 लोन्स यानी 75,000 तो ऐसा कि 75 एक हो गए, कुछ लोगों ने फिर सेकंड ट्रेंच का लोन लिया, कुछ लोगों ने थर्ड ट्रेंच का लोन लिया, तो टोटल 1,05,00,000 लोन्स लिए जा चुके हैं। 75 लाख लोगों को लाभ हुआ है जिसमें से 40 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पेमेंट अपना वापस भी किया है, बाकी अभी रनिंग में है और धीरे धीरे थर्ड ट्रेंच भी लेकर के वापस करने वाले भी 6-7 लाख हो गए हैं और वो 6-7 लाख लोग 50,000 का लेकर के उसको वापस कर चुके हैं। अगली योजना उनको दी गई मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में भी आपको 1 घंटे में और आप बैंक में अप्लाई करिए, अपना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए और बैंक अगर सहमत हो जाता तो आपको 1-2 करोड़ जितना लोन चाहिए उतना मिल जाता है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स 10,000 रुपया महीना से शुरू करके करोड़ों रुपए तक कुछ लोग उदाहरण है ऐसे पहुंच गए हैं जिनके जीवन में बहुत खुशहाली आई है। उनको ये लगा कि हमारा सारा पैसा जो साहूकार को ब्याज देने में चला जाता था वो हमारे घर में बचता है। बहुत लोग इसमें लाभान्वित हुए और गुण गा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, एक चीज जिसको कहते हैं मच टॉक्ड अबाउट आजकल वो है और वो थोड़ा सा मैं आम नागरिकों के दृष्टिकोण से भी समझना चाहूंगा कि ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम की बहुत सारी बात हुई है, अभी दिल्ली में हाल में ही ये कम्प्लीट हुआ है, तो इसमें आउटकम डॉक्यूमेंट क्या रहा है? एक बात तो मैं ये समझना चाहता हूँ क्या उसकी विशेषताएं हैं। दूसरी चीज ये, जब हम ब्रिक्स की और इस तरह के फोरम्स की बात करते हैं तो लगता है कि जैसे बड़ी बड़ी बातें और कूटनीति की बातें होती होंगी इसमें अर्बनाइजेशन और आम नागरिक के लिए क्या कुछ हो सकता है, मतलब कैसे इसको समझे?
0: पहले तो ये विषय समझने का है कि ब्रिक्स की स्थापना जब हुई थी तो ऐसे 5 देशों ने मिलकर के कि हमारे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, ये एक प्रकार का आपस में परामर्श करने के लिए टू कंसल्ट ईच अदर टू कॉमन वन सॉल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम, इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था और इसके इस समय तक 13 अधिवेशन 12 हो चुके हैं, 13वां अब चल रहा है। हर वर्ष उन 5 देशों के साथ कुछ और देश भी जुड़ गए तो उन देशों को मिला करके अब 11 देश हो गए हैं ब्रिक्स में। तो ऐसे हर वर्ष कोई ना कोई एक चेयरशिप किसी देश को मिलती है, उसके वहाँ ऐसे ब्रिक्स की मीटिंग्स होती हैं, एक नहीं होती है, हर डिपार्टमेंट की होती है। जैसे हमारी मोवा की हुई है, 2 दिन खत्म हुए, अभी 25 तारीख को पावर की हो रही है, एग्रीकल्चर की हो रही है इंदौर में, तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स ब्रिक्स की मीटिंग्स अपनी कर रहे हैं, एक दिन दो दिन। बाद में सितंबर में शायद 11-12 सितंबर है, उस समय पूरे देश के इकट्ठे सभी इन 11 देशों के जो हेड्स आएंगे, प्रधानमंत्री जी उसको चेयर करेंगे और वो फिर बैठक का सब की निचोड़ निकाल करके फाइनल आउटपुट उसमें डॉक्यूमेंट निकलेगा। जहां तक अर्बन का ये 2 दिन का हमारा समाप्त हुआ ब्रिक्स का सम्मेलन, इसके अंदर सब लोगों ने खुल करके अपने अपने देशों में शहरीकरण में क्या क्या उनको समस्याएं आ रही हैं और क्या क्या उन्होंने अचीव किया है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, एक एक करके हमने उनको सबको समय दिया, सबने बताया है और फिर बाद में सबकी समस्याओं को कैसे हल किया जाए, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जिन चीजों पर बनी उसका एक फिर हमने आज जो है कॉमन डिक्लेरेशन उसको अनाउंस किया है जिस पर सब सहमत हुए। उसमें कोई पर्टिकुलर देश की समस्या को नहीं विचार किया जाता, लेकिन किस प्रकार किस दिशा में आगे बढ़ना है, रेजिलियंट हाउसिंग होना चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए, एक वातावरण के नाते एनवायरमेंट के नाते से अच्छा होना चाहिए, एक शहर में किस प्रकार नागरिक को सुविधाएं ज्यादा मिले, उन नागरिकों का स्वभाव कैसे बदला जाए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी लोगों के संस्कार और स्वच्छता कैसे उसको बनाए रखा जाए, लोगों को जो जो कठिनाइयां आ रही है उसको हल करने के लिए जैसे मानो वहां का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, उसकी प्लानिंग कैसे हो, ये सारे विषय विचार किए जाते हैं। कोई इसमें ऐसा निर्णय नहीं है कि सबके ऊपर थोपा जाता, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक डिक्लेरेशन के ऊपर साइन किया जाता है। अच्छी बात यह है कि अर्बन के इस प्रकार के ब्रिक्स में आज तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं मिनिस्ट्रियल लेवल पर ये पहली बार हुआ है, अदरवाइज अधिकारियों के स्तर पर होता रहा है। पहली बार स्टेट के कुछ मिनिस्टर्स वो कंट्रीज के वो आए, क्योंकि यहाँ मिनिस्टर के नाते मेरे पास दायित्व है, तो उस चेयरशिप में ये मीटिंग हुई। और अच्छी बात यह है कि जिसको बहुत कम लोग सोचते थे कि हम किसी कॉमन इशू के ऊपर कोई डिक्लेरेशन अपना डिक्लेयर कर पाएंगे कि मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, इस पर कुछ शंकाएं जाहिर की गई, हमने कहा फिर भी प्रयत्न करेंगे। तो आखिर में कल और आज में सब विषयों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाया, हमारे अधिकारियों ने बनाया और आखिर में सबकी सहमति उसमें हुई और उसके बाद शाम को उसको हमने डिक्लेयर किया कि भाई ये कॉमन डिक्लेरेशन हम जारी कर रहे हैं, लेकिन उसका फाइनल जो ड्राफ्ट है अभी ड्राफ्ट बना है, फाइनल उसकी जो शेप आएगी वो सितंबर की जो ऑल इंडिया

0: हमारे सब डिपार्टमेंट्स का मिला के होगा, उसमें डिक्लेयर किया जाएगा।
1: एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा, बिजली बिल की भी बात लोग करते हैं लेकिन अब उससे ज्यादा सोलर सब्सिडी की बात, पीएम सूर्य घर कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं?
0: बहुत बड़ा विषय है। कारण उसका ये है कि जो छोटा कंज्यूमर है उसकी उतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपने बिल को भी पे कर सके
1: जी,
0: और जब बिल पे नहीं कर सकता, इच्छा सबकी रहती है पावर हमको मिले, क्योंकि आज पावर जो है हर गतिविधि की आवश्यकता बन गई है। घर में पे नहीं कर सकता उसको कठिनाई होती है, कभी कभी गलत संस्कार पड़ जाते हैं कि वो बिजली की चोरी भी करने लग जाता है। अब जब ये सारी चीजें होती है तो इसका नुकसान जो होता है वो डिस्कॉम्स को होता है, घाटा स्टेट को भरना पड़ता है, फिर वो यूनिवर्सलाइज एक प्रकार से सोशलाइज फाइन हो जाता है सबको
1: जी,
0: चोरी कोई करे भरे सब। उसी में से स्कीम ये निकली कि क्यों नहीं हम पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना, कुछ स्टेट्स ने अपने फ्री बिजली के भी नारे लगाने शुरू किए, 600 यूनिट तक फ्री, 200 यूनिट तक फ्री। तो उस समय से ये विचार निकला कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट उनको दें कि बिजली उनको फ्री मिले, न केवल फ्री मिले बल्कि हम सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि

0: और एक नया ESPN सूर्य घर अपने घर में लगा करके क्यों परेशानी बोल लेनी। तो उनको कहा कि उनको और थोड़ा इंसेंटिव दीजिए, ताकि अभी तो जीरो है, ये लगाएंगे तो उसको इनकम भी हो जाएगी।
1: इनकम होने लगेगी।
0: इसी प्रकार अगर सौर ऊर्जा की बात करता हूँ, किसानों की बिजली भी प्राय प्राय फ्री जाती है सब किसानों को। उनके ट्यूबवेल्स के ऊपर जो पंप्स हैं वो सौर ऊर्जा से वो पंप चलाए जाए, ताकि उनका खर्चा भी ना हो, सरकार का खर्चा भी ना हो। वो भी कुसुम योजना के अंतर्गत, बहुत बड़ी मात्रा में कुसुम योजना के अंतर्गत सौर पंप लगाए जा रहे हैं।
1: जी, पिछले 12 वर्षों में अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा रीलोड आप किसको मानते हैं, कैसे आप देखते हैं?
0: आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि पता नहीं बाकी लोग मेरे उत्तर से सहमत होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो मुझे लगता है, 12 साल पहले व्यक्ति अपने आप को महत्व देता था, परिवार अपने आप को देता था, और इंस्टीट्यूशन वो अपने आप को महत्व देती थी, राज्य भी अपने आप को महत्व देते थे, देश को महत्व कोई नहीं देता था। लेकिन 12 वर्षों में जो अंतर मैं देख रहा हूँ, अब जैसे मोदी जी ने कहा कि इंडिया फर्स्ट, देश है तो सब ठीक, देश पहले सब बाद में, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के मन में देश के प्रति सोचने का स्वभाव बना है, देशभक्ति का भाव जागृत हुआ है, और इसी में से देश की एकता ये बनी है। ये हमारे विपक्षी मित्रों को समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने हमेशा व्यक्ति का स्वार्थ जगाया। मोदी जी ने व्यक्ति को देश के साथ जोड़ा है, और देश के साथ जुड़ने के बाद समाज इकट्ठा होता जा रहा है, और अब धीरे धीरे वो दिशा इतनी ज्यादा बड़ी बन गई है, इतनी बड़ी लाइन हो गई है कि उस बड़ी लाइन को करने के लिए और कोई मुद्दा इससे बड़ा विपक्ष ढूंढे वो ढूंढ नहीं पाएगा। जब वो ढूंढ नहीं पाएगा तो अल्टीमेटली ये लाइन इतनी बड़ी बन गई है कि अब टूटने वाली नहीं है। बहुत परेशान हो रहे हैं हम उनको, बेचारा तो क्या कहूंगा, क्योंकि पार्टी चलाते हैं, सब लोग अपने अपने लक्ष्य को लेके चलते हैं। अब उनको यही लगता है कि मोदी जी को गालियां दे लो, शायद जनता उसमें से आगे बढ़ जाए। लेकिन कुल मिलाकर के मेरे मन में है कि जैसे मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबकी एकता बनाने में मोदी जी हमारी सरकार ये कामयाब रही है, और यही सबसे बड़ा रीलोड मैं समझता हूँ कि देश पहले बाकी सब बाद में, इससे बड़ा और कोई रीलोड अभी तक मैं महसूस नहीं करता।
1: जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो मनोहर लाल जी ने जो बातें कही, निश्चित तौर पर विकास के नए सोपान गढ़ने के सपने भी हैं, उसको बेहतर बनाने के और सपने भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही कि पिछले 12 वर्षों में लोगों का भाव बदला है, लोगों का नजरिया बदला है देश के प्रति, और देश के लिए काम करने का जो नजरिया बदला है वो शायद पिछले 12 वर्षों का सबसे बड़ा टेक अवे है, ऐसा मानना है मनोहर लाल जी का। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे निखिल सिंह। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, नाउ वी ब्रिंग यू एन इंटरव्यू विद मनीष सबरवाल, को फाउंडर ऑफ टीम लीज सर्विसेज। इंटरव्यूअर इज अनिल पद्मनाभन, सीनियर जर्नलिस्ट।
4: ओवर द लास्ट 12 इयर्स, इंडिया स्ट्राइव्ड टू मेक अ ग्रेजुअल ट्रांजिशन टुवर्ड्स अ मोर रूल्स बेस्ड ट्रस्ट एनेबल्ड इकोनॉमी थ्रू लेबर रिफॉर्म्स, डिजिटाइजेशन, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ लॉज। Under the Jan Vishwas framework, India strived to reduce friction, formalize the economy, and rebuild trust between the state, enterprise, and citizens. Yeah. Manish, you make a great point about the legacy of what India had and what has been undertaken in the last decade, particularly this pivot from reforms of conviction, from earlier the reforms of, you know, where you're forced to carry them out.
5: Compulsion.
4: So I just had a quick follow-up. One fallout of that legacy has been that the informality which you flagged, it has created a kind of low trust economy in India. The biggest example or metaphor for this is KYC. So these last decade and more, have we worked to chip away at this low trust economy? And another question, that another fallout of a low trust economy is that they treat somebody who's honest and dishonest the same way. There's no premium on being honest.
6: Well, that is because governance didn't shift from being rulers to being governors. There was a British mentality of subjects, which was carried forward in my mind in the Awadhi resolution and much of governance after independence, where we were placing our bets on control. The metaphor between entrepreneurs and government was tug of war. For one side to win, the other has to lose, rather than the dance between entrepreneurs, non-profits,

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: लखनऊ है तो महज गुम्बदों मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

जी 12:13 का वक्त और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं शत्रुपा अपनी दोस्त शिखा के साथ। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर साल 21 जून को हम सब मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। आपको पता है ये जो योग है ना, ये मनुष्य को दीर्घायु बनाता है और नियमित योगाभ्यास से शारीरिक क्षमता, लचीलापन और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। और अगर सच कहूं ना, योग के जो फायदे अगर आपको गिनाने लगूं तो समय कम पड़ जाएगा। तो आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कपड़ों की जिनको पहनकर आप योगा कर सकती हैं बहुत अच्छे से और साथ ही आप दिख सकती हैं एलिगेंट। क्योंकि भाई कोई भी चीज हो, कहीं पे भी जाना हो या कुछ भी करना हो, हम औरतें जो हम महिलाएं हैं ना, हमें ये बड़ी टेंशन रहती है कि हम हर चीज में अच्छे लगने चाहिए। तो बातें अभी हम आपसे और भी करेंगे और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए आपको करना होगा ये कि जुड़े रहना होगा हमारे साथ और सुनते रहना होगा 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी प्यारा सा ट्रैक आपने सुना अभी, सन सना ना ना ना, सन सना ना ना, जारी जारी जारी जारी पवन। जी हाँ, ये प्यारा सा ट्रैक ये हमारी प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल सी महिलाओं के लिए था, क्योंकि सच में आपके जैसा तो कोई है ही नहीं। और हर जो महिला है ना, वो इतनी खूबसूरती से बनाई गई, इतनी खूबसूरती है उसके अंदर, इतने टैलेंट है, तो हर एक अलग अलग इंडिविजुअल अपने में है खूबसूरती उसकी, तो कोई उसके जैसा तो हो ही नहीं सकता। जी तो 12:22 का वक्त और शिखा है आपके साथ प्रोग्राम शत्रुपाली का। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ट्यूसडे के दिन, जैसा कि आप सब जानते हैं, बात करते हैं फैशन की। और फैशन चाहे ओकेजन कोई भी हो, कुछ भी हो, अरे हमें फैशनेबल तो दिखना ही है। और हमारी जितनी भी महिलाएं ना, उनके मन में एक चीज हमेशा चलती रहती है, वो ये है कि स्लिम दिखें, ट्रिम दिखें और एलिगेंट दिखें, चाहे ओकेजन कोई भी हो। तो इस इंटरनेशनल योगा डे पे भी तैयारी तो आपकी शुरू हो गई होगी भाई। हम लेडीज हैं, हम भाई पहले से शुरू तैयारियां ना हो तो फिर क्या फायदा। तो ये जो आज का सेगमेंट है ना, ये आपकी इन तैयारियों में बहुत हेल्प करने वाला है। और बताने वाले हैं हम आपको कि किस तरीके के कपड़ों को पहनकर आप इजीली योगा कर सकती हैं और साथ ही दिख सकती हैं गॉर्जियस। तो ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा होगा ना कि योगा भी कर सकते हैं और गॉर्जियस भी दिख सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? जी बिल्कुल हो सकता है, और एफएम रेनबो के साथ तो डेफिनेटली हो सकता है। तो आगे अभी बताऊंगी कि कौन कौन से कपड़े और कैसा हेयर स्टाइल करके और क्या क्या चीजें कैरी करके आप दिखने वाली हैं बहुत ही खूबसूरत। तो चलिए एक प्यारा सा ट्रैक एंजॉय करते हैं, फिर आते हैं लौट कर और बातें करते हैं आपसे कि कौन से कपड़े कैरी करे जाएं इस इंटरनेशनल योगा दिवस पर।

0: लखनऊ है तो महज गुम्बदो मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
0: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टीसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
5: पहचान वही मगर

0: अंदाज है नया,
1: धड़कता है जो हर दिल में,
2: सुबह 6 से रात 12 बजे तक
3: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो,
0: धड़कन लखनऊ की।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
6: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

जी दोस्तों, शिखा है आज आपके साथ प्रोग्राम क्षेत्रोपा में, और आज हम बातें कर रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे पर आप कैसे कपड़े पहन के एलिगेंट दिख सकती हैं। तो आपको बता दूं कि आपके लिए सबसे बेस्ट कपड़े वो हैं जो आपके लिए आरामदायक हो और साथ ही स्ट्रेचेबल भी। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एलिगेंट और सहज दिखने के लिए योगा पैंट्स और टी शर्ट आप ट्राई कर सकती हैं। फुल लेंथ या एंकल लेंथ स्ट्रेचेबल योगा पैंट्स के साथ एक अच्छी फिटिंग की कॉटन टी शर्ट पहन सकती हैं। जो आपको कैरी करने में इजी भी रहेगा और साथ ही आपको एक क्लासी लुक देगा। भाई, क्लासी लुक अगर पाना है और एलिगेंट दिखना है योगा दिवस पर, तो अभी तक अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो बस जुड़ जाइए, क्योंकि आज हम बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं आपको फैशनेबल और स्टाइलिश दिखाने के लिए।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

जी 12:47 का वक्त और आज बातें हो रही हैं कि इंटरनेशनल योगा डे पर आप क्या पहन सकते हैं जिसको पहनकर आप दिख सकती हैं एलिगेंट। तो अभी प्यारा सा ट्रैक आपने सुना, कोई तुम सा नहीं, कोई तुम सा नहीं। जी हाँ, आप जब ये ड्रेसेस जो आज हम बता रहे हैं इसको पहनेंगी और योगा डे पे भी लोग आपसे कहेंगे कोई तुम सा नहीं। तो दोस्तों, योग के लिए कपड़ों का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि कपड़ा हमेशा कॉटन, लाइक्रा या ड्राई फिट फैब्रिक ही लें। एक और ऑप्शन जो आपके लिए बेहतर हो सकता है वो है ट्रैक सूट या जॉगर्स, क्योंकि ये वर्कआउट के दौरान आपको पूरा स्ट्रेच देते हैं जिसे आप आसानी से कोई भी आसन कर सकते हैं। और एक बात, जब भी आप जॉगर्स खरीदें वो एंकल से फिट हो जाए इस बात का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है, ताकि उल्टे आसन करते समय कपड़ा चेहरे पर ना आए। तो ये जरा जरा सी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो आप बिल्कुल भी लगने वाली हैं स्पेशल दिस योगा डे।

जी दोस्तों, 12:55 का वक्त और आज हम बातें कर रहे थे। जी हाँ, आज हम बातें कर रहे थे क्योंकि टाइम बहुत कम हो गया और हमें इसी टाइम में समअप करना है, वाइंड अप करना है। तो हम आपको चीजें जो बता रहे थे उसको हम आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं। दोस्तों, एक सबसे अच्छा ऑप्शन जो आप इस योग दिवस ट्राई कर सकते हैं वो है कुर्ती और लेगिंग्स, जो कहते हैं ना, हर एज ग्रुप की फीमेल के लिए बेहतर है, जिन्हें पहनकर आप योग भी कर सकती हैं और एलिगेंट भी दिख सकती हैं। सफेद या हल्के रंग के घुटने तक की कुर्ती के साथ स्ट्रेट पैंट या लेगिंग्स ट्राई करें, जो शालीनता और परंपरा जो कहते हैं ना, पारंपरिक जो एक लुक होता है वो आपको देगी। तो भाई, ये बातें तो हुई कपड़ों की, बालों की स्टाइल भी तो बतानी पड़ेगी। तो भाई, अगर आप योग करने जा रही हैं तो बालों को खुला बिल्कुल भी नहीं रखना है। एक नीट पोनी टेल बना लेंगी, मेसी बन या फ्रेंच ब्रेड बनाए जो आपके लुक को एनहांस करेगा। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है योग करते समय कि आपको भारी घड़ी, कंगन या इयररिंग्स को कैरी नहीं करना है। आप केवल एक छोटा स्टड या हेयर बैंड पहन सकती हैं जो आपकी खूबसूरती में लगा देगा चार चांद, क्योंकि योग ना सादगी से जुड़ा होता है, इसीलिए सिंप्लिसिटी से आपका जो आत्मविश्वास है ना वो झलकेगा।

दोस्तों, बस आज आज आज के सेगमेंट में, शत्रुपा के सेगमेंट में इतना ही। और इतनी जो चीजें आज आपको बता दी है ना, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाली हैं बहुत। तो बस इन सब चीजों को अप्लाई करिए और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से रखिए योग करने के लिए। और इसी के साथ शिखा को दीजिए इजाजत और वाइंड अप करते हैं कार्यक्रम शत्रुपा यहीं पर। और अगले प्रोग्राम में भी रहूंगी मैं आपके साथ, तो आपको कहीं नहीं जाना है, बस जुड़े रहना है और सुनते रहना है आपकी अपना चैनल। जी हाँ, आपका अपना चैनल FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अनुरोध गीत। कार्यक्रम अनुरोध गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। साथियों, आपके बहुत सारे पत्र हम तक पहुंच चुके हैं जिसमें आपने अपनी पसंद के गीत लिख भेजे हैं, अपने अनुरोध लिख भेजे हैं। ये पहला पत्र हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं ज्ञान सिंह ग्राम परधौली से, सौरभ वीरपुर बरेली से, वीरेंद्र कुमार लोंगपुर से, और इसी गीत को सुनने का अनुरोध किया है हमारे ये श्रोता हैं ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसामा जिला बदायूं तहसील दत्तागंज से, सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंगिता, विनीता, अनीता, सुनीता, सूरजश्री और प्रीति यादव। आप हैं सेक्टर नंबर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। आप हैं जिला बदायूं ग्राम दूनेनगर से, ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार कठेरिया, सत्येंद्र कुमार कठेरिया, गुड्डू, विशाल, संगम, वैभव, आदर्श, आदित्य, अमित, रेणु, कुमकुम, निव्या, सरिता और अंतिमा। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गोगलानी, जग्गी दुआ, जगमोहन प्रजापति, सुनीता शर्मा और सुनीता जैन। ये पत्र हम तक पहुंचा गैगटा काशी धर्मपुर बरेली से, फहीम खान सिद्दी गली, साबिया राम प्रसाद शर्मा, मोहल्ला तलैया उल्ला जागीर से, फजुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजाल भाई। और आपके साथ हैं नरियावल से मीना शर्मा, जोगराज शर्मा, मस्तान कश्यप, तुफैल अहमद अंसारी और नाजमा अंसारी। आप हैं दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, परिमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान। और ये पत्र हम तक पहुंचा है शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरीसी, नाजरा इदरीसी, नईम, नदीम और असद बाबू का। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म लावारिस का ये गीत जिसको गाया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने। गीत के बोल अनजान के हैं, संगीत निर्देशन

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक। आप हैं निकट बिजली घर कस्बा मीरगंज बरेली यूपी से कल्लू भाई मिस्त्री, मोहम्मद नईम, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद दानिश, नसीम, अनाविया फातिमा, बाबर अजीम, हमजा, आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, यशपाल दिवाकर, ओमेंद्रपुरी गोस्वामी, मुकेश पुरी, राजीवपुरी गोस्वामी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं रामपुरा किसानानंद मजरा सिमरिया तहसील मीरगंज बरेली से राम कुमार वर्मा, भगवान दास वर्मा, रविंद्र वर्मा, तेज प्रकाश वर्मा, सोमपाल, शशि कुमार, नथुलाल, ननकी सिंह वर्मा, एचएल वर्मा, विवेक और हिमांशी वर्मा। ये पत्र हम तक पहुंचा खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन और अंकुश अरोड़ा का। इसी गीत को सुनने का अनुरोध किया है मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप गोगलानी, जगमोहन प्रजापति। आप हैं लक्षणपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति थनक्ष और आरू साहू। बक्सर बिहार से इस गीत को सुनना चाहते हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार से डब्लू अंसारी, सोनम अदीबा, दानिश अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। आप सभी ने सुनने का अनुरोध किया है फिल्म साहेब का ये गीत, जिसको गाया है बप्पी लहरी और एस जानकी ने। गीत के बोल अनजान के हैं, संगीत निर्देशन बप्पी लहरी का।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM और सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए अनुरोध किया है हमारे आप सभी श्रोताओं ने। आप हैं वारिस अली खान, इस्लामुन निशा, शकील अहमद और सलीम अहमद, बेबी नुसरा, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। आप हैं विनेश कुमार, रागिनी श्रीवास्तव और मुस्कान, बरेली कैंट रेलवे केविन के पास चनेटी बरेली से। यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान, जितेंद्र, धर्मेंद्र मालाकार। आप हैं सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा और अदीबा थापा। बिहारी कॉलोनी लोनी से प्रवीण डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली और कुमारी डब्लू डोम। जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा, उल्ला आसमा बेलदार। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म एक दूजे के लिए का ये गीत, जिसको गाया है लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम ने। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

arkadaşlar. Ye akashmat. अब आप संजय मिश्रा से दिल का हाल सुन। दिल का हाल ये है कि आकाशवाणी बरेली का स्थापना दिन और मैं आकाशवाणी की तरफ से अपनी तरफ से उन तमाम आकाशवाणी सुनने वालों को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, सुनते रहिए, आकाशवाणी हमारा है, हमको इसे बताना है। थैंक यू बरेली आकाश।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM, सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत। कार्यक्रम अनुरोध गीत में अगला गीत जिसको सुनने का अनुरोध किया है हमारे आप सभी श्रोताओं ने, उसको हमने लिया है फिल्म सिलसिला से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथी। गीत के बोल जावेद अख्तर के हैं और संगीत निर्देशन शिव हरि का। और इस गीत को सुनने का अनुरोध किया है हमारे आप सभी श्रोताओं ने, छावनी अशरफ खां से, रामप्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना शर्मा, मनोरमा, अजय, विनोद, वंश, कनिष्क और इनके परिवार के सभी लोग। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, बटिंडा रोड डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग, परी महल कासगंज से आवाद खान, गजाला खान, अल्ताफ नवील, एम असलम सैफी, गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, महादेव घाट अमलेश्वर से इसी गीत को सुनना चाहते हैं डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति और यांश ठाकुर। आप सभी को सुनवाते हैं आपके अनुरोध पर फिल्म सिलसिला का ये गीत।

श्रोताओं रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में बुधवार दिनांक 17 जून 2026 यानी कल साय 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है डायबिटीज और हाइपरटेंशन का दिल की बीमारियों से संबंध, शंकाएं एवं समाधान। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे मंगलवार दिनांक 16 जून 2026 यानी आज साय 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 2517200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के कार्डियोलॉजिस्ट एवं फिजिशियन डॉक्टर आशीष शंखदार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लें, विषय है डायबिटीज और हाइपरटेंशन का दिल की बीमारियों से संबंध, शंकाएं एवं समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, मंगलवार दिनांक 16 जून 2026 यानी आज साय 4 बजे से, और हमारा टेलीफोन नंबर है 2517200। सूचना समाप्त हुई। कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीमा अली, जुनैद अब्बासी। आप हैं मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली से बेनी सिंह, सागर, पन्नीलाल, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश, राजेश कुमार, रूबी भारती, एकता, दिव्या, रचना, ओमवती भारती, खनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रताप सिंह। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। आप हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन, परवीन, मोहम्मद रेहान, माहिरा नूर। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म कुदरत का ये गीत जिसको गाया है परवीन सुल्ताना ने। गीत के बोल मजरू के हैं और संगीत निर्देशन राहुल देव बर्मन का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी के अनुरोध पर बरेली जंक्शन से है हमारे नियमित श्रोता गरीब भाई, नासिर भाई, सादिक भाई, विक्की भारद्वाज, पदम भारद्वाज, वीरेश सिंह चौहान, सोनू मिश्रा और प्रदीप पाल नमन। आप हैं डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये। मोहल्ला कढ़िया बरेली से मोहम्मद कैसर शमसी, अजीम शमसी, सलीम शमसी, नवेश शमसी, रजिया शमसी। और ये पत्र हम तक पहुंचा छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और जावेंद्र कुमार वर्मा का। आप हैं नखासा रोड उसेत बदायूं से मसरूर खान, सरफराज खान, विकास सक्सेना, करमवीर गोस्वामी, प्रवीण रावत, अनिल नागर, सागर बख्शी और भरत यादव। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म मासूम का ये गीत, जिसको अपनी आवाज़ दी है अनूप घोषाल ने। गीत के बोल गुलजार के हैं, संगीत निर्देशन RD बर्मन का।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत, और कार्यक्रम अनुरोध गीत का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से हमारे श्रोता अनोखीलाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य। आप हैं हम दोस्त रेडियो लिसनर्स क्लब जसपुर उत्तराखंड से, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत रानी, तबस्सुम रुखसार और मोहम्मद आसिफ। मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू, साजदा रानी और हिना कौसर। इसी गीत को सुनना चाहते हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रंजल राय, शेरपुर कलां गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति और नवनीत राय, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, सायमा खान, मुस्तफा खान, आफिया खान, राउफ भाई, शहीद भाई, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत, जिसको गाया है अलका याग्निक ने, गीत के बोल समीर के, संगीत निर्देशन नदीम श्रवण का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत, और कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से हमारे श्रोता राम प्रकाश सिंह, अद्भुत विनय, रवि, सुलोचना और नेहा सिंह, बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। आप हैं शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से। त्रिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक, सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन, समर राज, आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, इशिका वर्मा और अंजलि श्वेता वर्मा। आप हैं इंदिरा बिहार रायगढ़ से वसीम अकरम, नूरजहां, डब्ल्यू अकरम, वली अकरम, उल्ला अकरम, राजनांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ, इमरान, इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम और आदिबा तिवारी, पश्चिम थोकगंज डंडवारा से मुनव्वर लल्ला, नसरीन मिर्जा, अरवाज खान, शहबाज खान, सूफिया बीबी फातिमा, गजाला फातिमा, नरगेश बानो, कशिश बानो और रजिया शहजादी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। आप हैं शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। ये पत्र हम तक पहुंचा आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत कमांडकर राही, श्रीमती सरिता कमांडकर, प्रिंस एकांश कमांडकर का, और आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से श्रीमती वैशाली, शैलेश कमांडकर, श्वेता, सुमित कमांडकर, कुमारी ध्वनि कमांडकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत कमांडकर, प्रणीता कमांडकर और लाडला टुक टुक कमांडकर, लक्षणपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, मोपका भाटापारा से भिवेंद्र कुमार साहू, लक्की, हर्षित, सुमित्रा साहू। आप हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म मैंने प्यार किया का ये गीत, जिसको गाया है एसपी बालासुब्रमण्यम ने। गीत के बोल राम लक्ष्मण के और संगीत निर्देशन भी राम लक्ष्मण का।

का जवाब दो। श्रोताओं, ये सुहाना सफर अनुरोध गीत का चल रहा था शीशपाल के साथ। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2 बज चुके हैं। लीजिए, प्रस्तुत है रस में डूबा हुआ कार्यक्रम रस रंग।

गुल की चाहत में मिले जख्म ही अक्सर साजिद, गुल की चाहत में मिले जख्म ही अक्सर साजिद, दिल को अब के किसी पत्थर से लगा कर देखो, मेरे नगमे हैं तुम्हारे लिए गा कर देखो। शदाई खूबसूरत सी गजल अभी आपने सुनी चंदनदास की आवाज।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

साथ दिल के न अगर दर्दे मोहब्बत देता, साथ दिल के न अगर दर्दे मोहब्बत देता, देने वाले तेरी सौगात अधूरी रहती, दिल न मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती, बात तो होती मगर बात अधूरी रहती। श्रोताओं, ये गजल भी आपने अभी सुनी चंदन दास की आवाज़।

0: कमल थान मैं हरो घाघरो ना पहनूं।
1: मैं गंगा सिंह रावत।
0: दोस्तों यह भी आपने लोकगीत सुना नीलम वर्मा के स्वर में। इसी के साथ रसरंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
2: ये आकाश सुमन, अब आप संजय मिश्रा से दिल का हाल सुनिए। दिल का हाल ये है कि आकाशवाणी बरेली का स्थापना दिन है और मैं आकाशवाणी की तरफ से, अपनी तरफ से उन तमाम आकाशवाणी सुनने वालों को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, सुनते रहिए। आकाशवाणी हमारा है, हमको इसे बताना है। थैंक यू बरेली।
1: मैं गंगा सिंह रावत रामपुरोड़ हल्द्वानी से आकाशवाणी बरेली को उसकी स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आकाशवाणी बरेली के प्रारंभिक दिनों से, जब से इस केंद्र की शुरुआत हुई, मैं इससे बतौर श्रोता जुड़ा रहा हूं और आज भी जुड़ा हुआ हूं। पहले रेडियो के माध्यम से प्रोग्राम सुना करते थे, आजकल ऐप के माध्यम से प्रसारण सुनाई दे रहा है, काफ़ी साफ सुनाई देता है। बरेली के सारे उद्घोषक बहुत मेहनती हैं, कर्मठ हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, जिसकी वजह से मैं ही नहीं, कई श्रोता भारत से भी और भारत के बाहर से भी बहुत सारे श्रोता से जुड़े हुए हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा उद्घोषक देवेंद्र रावत जी का, जो बहुत अच्छी प्रस्तुति देते हैं, जिनकी आवाज़ में काफ़ी मिठास है। इसके अलावा परवेज भाई, शिप्रा, अमृता जी और हरीश भाई बहुत अच्छे उद्घोषक हैं, जिनकी प्रस्तुति बहुत शानदार होती है। मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा युवाओं का, जो कार्यक्रम आता है 6:30 बजे युवाणी, वो भी बहुत रोचक होता है, जिसमें भेंट वार्ताओं के साथ साथ जो मुलाकात की जाती है हमारे युवा श्रोता से, एंटरप्रेन्योर से, वो बहुत अच्छी होती है, ज्ञानवर्धक, रोचक और प्रेरक होती है। तो जो संगीत के कार्यक्रम हैं, फरमाइशी कार्यक्रम हैं, सोशल मीडिया ऐप के जरिए हम अपनी फरमाइश भेजते हैं, पूरी भी होती है। आकाशवाणी बरेली को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, धन्यवाद।
0: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 MHz पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं, आइए अब हम आपको जोड़ते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
3: कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: ये नजर लौट कर फिर आएगी। आप सुन रहे थे आशा भोसले को इस गीत में। मेरे सनम फिल्म का नाम था। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत।
1: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

गंगा की लहरें, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। चित्रगुप्त ने संगीत दिया था और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा।

गंगा की लहरें, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। चित्रगुप्त ने संगीत दिया था और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे संगम फिल्म से, हसरत जयपुरी ने से लिखा और शंकर जयकिशन की तर्ज थी। और अब लीजिए सुनिए आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, आपको सुनवा रहे हैं गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, आई मिलन की बेला फिल्म का नाम है, हसरत जयपुरी ने से लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सखी सहेली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ है
1: आरती श्रीवास्तव।
0: आप सभी को हमारा
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कैसी हो आरती?
1: बिल्कुल ठीक है। बस इस गर्मी में जितने ठीक हो सकते हैं उतने ठीक है।
0: बिल्कुल सही कहा, इस गर्मी में हम जितने अपने आप को अच्छा रख सकते हैं उतना हमें रख लेना चाहिए, वरना तो तबीयत खराब होती, देर भी नहीं लगती।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से ना बहुत परेशानियां हो रही है, तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अच्छा ध्यान रखिए।
0: हाँ बिल्कुल, ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, अपने पढ़ने का ध्यान रखना है, सोने का, कब सोते हो कब उठते हो,
1: और कोशिश करिए
0: सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। और ऐसे में कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आप घर पर रहें। ठीक है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, वो तो है ही, इसके अलावा फालतू बाजार में जो घूमने की हमारी आदत होती है वो हमें थोड़ा बदलनी है।
1: बहुत जरूरी हो तो ही आप घर से बाहर निकलिए, और पूरे

0: आपने क्या सीखा या क्या
1: हाँ
0: आपको उसमें अच्छा लगा, उस चीज को आप थोड़ा सा नोट्स बनाना शुरू करें,
1: बिल्कुल
0: देखिए आपकी खुद की एक किताब तैयार हो जाएगी।
1: बिल्कुल सही कहा। और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तो हमें कितने मिल गए हैं आजकल, बस
0: जी
1: उसका उपयोग करना हमें आना चाहिए और हमें सीखना भी चाहिए। तो
0: जी
1: चलिए बताइए आज क्या क्या कार्यक्रम आप लेकर आई हैं।
0: आज हम लेके आए हैं मानसिक मजबूती आपको किस तरीके से अजय बना देती है। अजय मतलब ये आप अगर देखिए मन के जीते जीत होती है, अगर आपको आपका मन आपका मजबूत है ना, आप उससे नहीं डिग सकते अगर, तो फिर आपको कोई भी हरा नहीं सकता।
1: सबसे बड़ी बात है हमारा मन
0: बिल्कुल
1: कितना सशक्त है। अगर मन के हारे हारे अगर मन हार गया तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो हम इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। आप भी बताइए किस तरीके से आप अपने
1: मन को
0: बिल्कुल
1: सशक्त बनाते हैं, हमारे
0: हाँ
1: श्रोता बता सकते हैं
0: बिल्कुल,
1: हमारी
0: कि किस तरह से
1: शक्तियाँ।
0: अगर कोई आपको कहीं पे ना कहने का मौका आता है तो आप उसको पूरी अपने शक्ति से ना कह पाते हैं या फिर हिचकिचा जाते हैं
1: और कई बार
0: तो
1: क्या होता है आपके
0: जी
1: घर परिवार में भी जो है बहुत सारी बातें होती है पति पत्नी के बीच में, ऐसे में कई बार स्त्रियां जो है मन कच्चा कर लेती है कि अरे भाई आज तो पति देव ने ऐसे डांट दिया, आज तो सास ने ऐसे कह दिया, ससुर ने ऐसे कह दिया। तो आप अपने मन को कितना मजबूत बनाती हैं और डटकर इन चीजों का इन समस्याओं का मुकाबला कैसे
0: बिल्कुल
1: करती हैं, बताइए अपने जीवन से जुड़े कुछ पहलू।
0: बिल्कुल। और आज हम मुहावरों के दिनों में बात करेंगे, दूर के ढोल
1: हाँ
0: सुहावने
1: हाँ हाँ हाँ ये तो
0: कि
1: होता है।
0: अक्सर होता है ना हम लोगों की दूसरे को सामने देख के हम कहते हैं कि अरे ये कितना अच्छा, ये तो कितनी अच्छी जॉब कर रहा है या कितना अच्छा काम
1: इसके
0: कर रहा
1: मजे
0: है। हाँ
1: हैं।
0: लेकिन हम उसके पीछे का संघर्ष नहीं जान पाते कि
1: बिल्कुल
0: किस तरह से वो वहां तक पहुंचा।
1: बिल्कुल, उसकी
0: तो
1: जिंदगी में क्या
0: बिल्कुल
1: क्या घटा, कैसे घटा, उसने
0: जी
1: कैसे उसका मुकाबला। हमारा मन
0: बिल्कुल
1: कितना सशक्त है। अगर मन के हारे हारे अगर मन हार गया तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो हम इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। आप भी बताइए किस तरीके से आप अपने
1: मन को
0: बिल्कुल
1: सशक्त बनाते हैं, हमारे
0: हाँ
1: श्रोता बता सकते हैं
0: बिल्कुल,
1: हमारी
0: कि किस तरह से
1: शक्तियाँ।
0: अगर कोई आपको कहीं पे ना कहने का मौका आता है तो आप उसको पूरी अपने शक्ति से ना कह पाते हैं या फिर हिचकिचा जाते हैं
1: और कई बार
0: तो
1: क्या होता है आपके
0: जी
1: घर परिवार में भी जो है बहुत सारी बातें होती है पति पत्नी के बीच में, ऐसे में कई बार स्त्रियां जो है मन कच्चा कर लेती है कि अरे भाई आज तो पति देव ने ऐसे डांट दिया, आज तो सास ने ऐसे कह दिया, ससुर ने ऐसे कह दिया। तो आप अपने मन को कितना मजबूत बनाती हैं और डटकर इन चीजों का इन समस्याओं का मुकाबला कैसे करती
0: बिल्कुल
1: हैं, बताइए अपने जीवन से जुड़े कुछ पहलू।
0: बिल्कुल। और आज हम मुहावरों के दिनों में बात करेंगे, दूर के ढोल सुहावने
1: हाँ, ये तो
0: कि
1: होता है।
0: अक्सर होता है ना हम लोगों की दूसरे को सामने देख के हम कहते हैं कि अरे ये कितना अच्छा, ये तो कितनी अच्छी जॉब कर रहा है या कितना अच्छा काम
1: इसके
0: कर रहा
1: मजे
0: है। हाँ
1: हैं।
0: लेकिन हम उसके पीछे का संघर्ष नहीं जान पाते कि
1: बिल्कुल
0: किस तरह से वो वहां तक पहुंचा।
1: बिल्कुल, उसकी
0: तो
1: जिंदगी में क्या
0: बिल्कुल
1: क्या घटा, कैसे घटा, उसने
0: जी
1: कैसे उसका मुकाबला किया, इन सब
0: जी
1: बातों को नहीं जानते हम। केवल जो सामने हमें दिख रहा है वही हमें सच्चा लगता है।
0: जी तो बिल्कुल उसके बारे में बात करेंगे
1: ये भी
0: और
1: बता

0: हाँ, तो आरती बहुत ही सुंदर कव्वाली अभी हमने हमारी सखियों को सुनाई है। उम्मीद करते हैं इस दोपहरी में उन्हें अच्छा भी लगा होगा।
1: बिल्कुल, थोड़ा सा एक ताजगी आ गई होगी।
0: थोड़ा सा एक्टिव हो गई होंगी ये सुनकर, है ना।
1: बिल्कुल
0: तो आज हम बहुत सारे दिवस भी मना रहे हैं, जिसमें एक है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस।
1: जी। तो इस अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस को हम क्यों जब मनाते हैं, इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है।
0: हाँ हाँ
1: तो
0: बिल्कुल
1: जब कोई व्यक्ति अपने घर परिवार से दूर रहकर काम करता है और अपनी कमाई का एक हिस्सा

0: कोई धन भेजता है, पैसा भेजता है हमारे जीविकोपार्जन के लिए, हमारी जरूरतों के लिए, तो सोचिए
1: बिल्कुल
0: हमारी फीलिंग्स कैसी होती हैं।
1: बिल्कुल
0: हमारे परिवार में भी जब हम स्टूडेंट लाइफ में बाहर पढ़ने गए और हमारे माता पिता ने हमारे लिए पैसे भेजे, तो कितनी कितनी खुशी
1: बिल्कुल खुशी
0: होती
1: होती है
0: थी।
1: कि ना कि अब चलो ये जरूरतें हमारी जो थी
0: हाँ,
1: ये
0: हम
1: पूरी हो
0: पूरी कर
1: जाएगी।
0: लेंगे, है ना।
1: बिल्कुल
0: तो कितने उन लोगों को उसकी उम्मीदें जुड़ी होती हैं, और अपने घर परिवार से दूर रहकर अपनों के सपनों को पूरा करने वाले हर प्रवासी श्रमिक को इतनी मेहनत करके अपने परिवार का जो पोषण कर रहा है उसके प्रति भी हमें सैल्यूट करना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं ऐसे लोगों को।
0: बिल्कुल।
1: तो चलते चल के एक सुनते हैं गीत ना।

0: तो आरती महीना तो जून का है।
1: जी हाँ, पसीना भी बहुत आ रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा। और इसी जून के महीने में हमें ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से अपने आप को बचाए रखना
1: इस पसीने
0: है।
1: से भी बचा के रखना है अपने को।
0: तो हमारे श्रोता लिखते हैं, कुछ लोगों ने लिखा भी है, बताओ क्या क्या लिखा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बताइए।
0: ये लिखते हैं कि ये दिन उन मजदूरों के लिए है जो अपने परिवार से दूर रहकर कमाई के लिए बाहर जाते हैं। ये दिन उनके त्याग के प्रति सोचने पर हमें मजबूर करता है कि किस तरह से अपने परिवार से दूर रहकर दुखी हैं, लेकिन फिर भी कमाने के लिए उन्हें अपने परिवार से दूर जाना पड़ रहा है। और ये दिन उनका सम्मान देने, उनके त्याग के बारे में थोड़ा सा सोचने पर ध्यान देने के लिए मनाया जाता है।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतिवर्ष ये दिन इस दिन मनाया जाता है 16 जून को, और ये दिन विदेशों में काम कर रहे प्रवासियों द्वारा अपने मूल देश में रहने वाले परिवारों को भेजे आने वाली धनराशि यानी कि रेमिटेंस और उनके वित्तीय योगदान को सम्मानिता देने और सम्मानित करने को लेकर समर्पित है। और ये दिन 20 करोड़ से अधिक प्रवासी कामगारों के त्याग और प्रयास को सराहता है जो दूर रहकर भी अपने लगभग 80 करोड़ परिवार के सदस्यों की आजीविका और भविष्य का निर्माण करते हैं। और इसका उद्देश्य जो है वो भेजने की जो रेमिटेंस भेजने की लागत को कम करना और प्रवासियों को बैंकिंग तथा सुरक्षित औपचारिक माध्यमों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है।
0: बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि प्रवासियों द्वारा अपने परिवार और मूल देशों के सतत विकास में किए गए महत्वपूर्ण वित्तीय योगदान को मान्यता देना आज के दिन का उद्देश्य है। और प्रवासियों द्वारा भेजा गया धन लाखों परिवारों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास और आजीविका का एक मुख्य आधार है। और यह दिवस पहली बार 2015 में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा घोषित किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत अच्छे विचार हमारे श्रोताओं ने साझा किए हैं हमारे साथ। और आरती, और देखा आपने कि जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है अपने परिवारों के लिए मेहनत करते हैं, है ना, मशक्कत करते हैं और उनके लिए धन जुटाते हैं, दूर रहकर भी अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, सोचिए कितना मानसिक रूप से मजबूत हो जाते होंगे वो लोग।
1: बिल्कुल,
0: और
1: बिल्कुल।
0: कितना शारीरिक रूप से अपने आप को मजबूत बना के रखते होंगे, है ना।
1: और बहुत जरूरी भी है, अगर हम दिमाग से अपने दिमाग का संतुलन बना के चलेंगे और छोटी छोटी जो परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं उनसे घबराने की बजाय उनका सामना करेंगे तो बिल्कुल भी, क्योंकि ना बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारे सामने आती हैं, क्योंकि भाई जीवन है, उसमें कठिनाइयां तो आपके सामने आएंगी। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हमें अलग चलना है या हमारा जीवन बिल्कुल सुखी सुखी क्यों नहीं है, है ना, या उसकी तरह क्यों नहीं। जो सामने वाला जिसको देख के आप कह रहे हैं ना, उसके जीवन में भी कठिनाइयां होंगी, आपको जरूरी नहीं है आपको पता हो उसके।
0: आपने उसकी डार्क साइड देखी नहीं ना, आपने खाली उसका सामने जो जिस तरह से हंसना बोलना और हमें लगता है कितना सुखी जीवन है, कितना मस्त बंदा है ये, लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष है, पीछे के जो दुख है, पीछे की जो कहानियां है, वो हम नहीं जान पाते हैं।
1: बिल्कुल। इसी को लेकर एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगी कि देखिए चील जो होती है ना, कितना बड़ा पक्षी होता है ना, और उस तक पहुंचने की कोई सोचता भी नहीं कोई पक्षी, क्योंकि सब डरते हैं उससे, लेकिन एक पक्षी है जो उसको परेशान करता है, वो है कौआ।
0: बिल्कुल।
1: वो जर उसको चोच मार कर परेशान करने की कोशिशें करता रहता है, लेकिन वो क्या करता है पता है, वो ध्यान नहीं देता उसकी तरफ, क्योंकि वो अपनी एनर्जी है जो है ना वो

0: को विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलित रहने, सही निर्णय लेने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये किसी जादू की, ये मतलब किसी जादू की तरह नहीं आती कि एकदम से किसी ने आपको मंत्र खोल दिया और आपने एकदम
1: कि आपके पास जादू की छड़ी आई, आपने गोल गोल घुमाया, खुल जा सिम सिम और ताला खुल गया।
0: बिल्कुल, ये ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा, बल्कि अनुभवों, धैर्य और सकारात्मक सोच से विकसित होती है। प्रतिस्पर्धा, तनाव, अपेक्षाएं और तेज रफ्तार जीवन कई बार मन को विचलित कर सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, और मानसिक मजबूती का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति कभी दुखी ना हो या उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। इसका जो मतलब है वो ये, दुख, निराशा और कठिनाइयों के बीच भी हम खुद को संभालकर आगे बढ़ते रहें। गिरना जो है जीवन का हिस्सा है आरती, लेकिन हर बार उठकर खड़ा होना मानसिक शक्ति की पहचान होती है।
0: बिल्कुल, और अगर हम धैर्य, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को अपना साथी बना लें तो कोई भी कठिनाई हमें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। क्योंकि अजय वो नहीं होता जो कभी हारता नहीं, बल्कि वो होता है जो हर हार के बाद फिर से खड़ा हो जाता है। जी, और एक बात का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए कि जिस भी चीज से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है वो ही हमारे ऊपर हावी होकर हमें अंदर से कमजोर बनाती है। क्योंकि वो हमारी कमजोरी का हमारा वीक पॉइंट बन जाती है ना, कि और वो अगर किसी को पता भी चल जाए ना
1: तो उसका फायदा उठाया जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि अपनी कमजोरी मत बताइए किसी को। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं
0: तो इतने कमजोर बनिए ही मत, किसी भी कमजोरी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए।
1: बिल्कुल,
0: उसका सामना करिए डट के, तो वो कमजोरी आपकी कमजोरी रहेगी ही नहीं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए आरती कि कोई कितना भी उकसाए, कोई कितनी भी कोशिश क्यों न करे, हमें शांत रहना चाहिए। उकसाने वाला हमारी बुरी प्रतिक्रिया चाहता है और हमें वो बिल्कुल नहीं देनी है, शांत रहना है। और अगर किसी को किसी भी बात के बारे में बताना है तो उसे बहुत विस्तार मत दीजिए, बल्कि जो सच है उतना बताइए, क्योंकि ज्यादा बोलना भी जो है फिर उसमें झूठ मिलाना पड़ता है, झूठ की मिलावट सी लगती है। तो आप दो टुक बात करें, जो सच है वो कह दें, फैक्ट्स जो है, और नहीं तो चुप रहें।
0: बिल्कुल, बहुत ज्यादा आप विस्तार से उसे बताने की कोशिश
1: मत करें, अपनी सफाई देना।
0: हाँ, उसको वही सफाई अपनी। और साथ ही अगर हम किसी बात से सहमत नहीं है तो सीधे ना कहना जरूरी है। उसके लिए बहुत ज्यादा तर्क देने की भी जरूरत नहीं है कि इसलिए उसलिए, है ना। तो सिर्फ ना कहना काफी है, ये हमारे अंदर की मजबूती को दिखाता है। अगर कभी कोई बहस हो जाए या किसी बड़ी बात पर प्रतिक्रिया देनी है तो आपको तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए।
1: होता क्या है, हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। हाँ, वहीं पर हम गलत हो जाते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया हमारे गुस्से की वजह से आ सकती है या हमारे अंदर जो इमोशंस हो रहे हैं, जो भावनाएं आ रही ना, उसकी वजह से हो सकती है। हम जब ठंडे दिमाग से प्रतिक्रिया देते हैं तो वो बिल्कुल अलग होती है,
1: शांत हो जाते हैं। कई बार तो प्रतिक्रिया देने का मन भी नहीं करता है। जब आप शांत रहते हैं, अपने आप को थोड़ा टाइम देते हैं ना आरती, तो लगता है अरे जाने दो ना, क्या पड़ा इन बातों में। और आपने तुरंत प्रतिक्रिया दी नहीं तो चार बातें गलत आपके मुंह से निकली नहीं, क्योंकि उस वक्त आपके भीतर बहुत सारी भावनाएं जो है घूम रही होती हैं और आपको समझ नहीं आता कि आप क्या कहने जा रहे हैं। तो थोड़ा रुक कर सही होकर बोलना जो है वो आपकी आंतरिक मजबूती को दिखाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कभी कोई मुश्किल परिस्थिति में हो, अपने को बचाव की स्थिति में लाकर घबराने की बजाय हमें चाहिए कि हम बिना घबराए सामने वाले से प्रश्न करें और खुद को मजबूती के साथ प्रस्तुत भी करें।
0: बिल्कुल, क्योंकि जहां हम थोड़ा सा भी पीछे हटने लगते हैं ना, वो एक हिसाब होता है ना कि आप आक्रमण की मुद्रा में रहे हैं, ना कि डिफेंस में। जहां हम डिफेंस में अपने को बचाव की स्थिति में ले आते हैं ना, वहीं हम पे लोग हावी होने लगते हैं। तो आप ऐसा स्थिति अपने आपको कभी अपने लिए मत लेकर आइए। तो आप प्रश्न पूछिए, अगर आप हम पे ऐसा कुछ कह रहे हैं, हमारे लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं, ये क्यों, कैसे, ये जरूर आप पूछिए।
1: बिल्कुल, सवाल पूछने, प्रश्न खड़े करने बहुत जरूरी हैं।
0: बिल्कुल,
1: और उसके बगैर अगर आपने अपने आप को अपना कदम पीछे खींच लिया तो लोग आपको कमजोर समझकर बस वहीं पर आप पर वार भी कर देते हैं।
0: बिल्कुल, फिर हम अगर सही भी होंगे ना तो भी कोई नहीं,
1: गलत माने जाते हैं। इसलिए किसी की बात पर आंख बंद करके एक तो विश्वास नहीं कीजिए, और अपनी बात को मतलब ये सोचिए कि मैं क्या कह रहा हूं और सामने वाला क्या सुन रहा है। हमें धोखेबाजी से भी बचाना है और कभी भी अपनी भावनाएं हर किसी के साथ साझा नहीं करनी, क्योंकि हर बार हर कोई हमारी भावनाओं को।
2: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, 100.4 MHz पर। 3:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का उमंग।

0: तो हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
2: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे कल बहुत सुख पाओगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी आराध्या साहू लिखते हैं,
2: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए, मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए NCERT की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
1: और कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
2: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
1: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारी।

0: और कमला देवी गुप्ता।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
0: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
1: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
0: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
1: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
0: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
1: श्रोताओ, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओ, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी, आपको बताते हैं। तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें, तो प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फुम्दी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है, और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं? जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या हैं? तो आपको बताते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुम्दी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओं, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यहाँ लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओं, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आए तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरण की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरण कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरण भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरण यही मिलता है और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुम्गी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IBS नंबर भी नोट कर दें।

0: 8800-44-5559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों।
1: साथियों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
2: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
1: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
2: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
1: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
3: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
4: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
3: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
4: यस।
2: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
1: उसकी मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
2: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
5: सू
3: जी,
5: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
3: जी हाँ
5: भाई, मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
3: जी डॉक्टर साहब।
5: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
3: मैं पूछती हूँ।
1: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
2: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
6: 15, 14,

0: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
1: 13, 12, 11, ओह
2: जॉन्सी,
1: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। सू
3: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
1: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9। ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू, अब वो बहुत कम हो गए हैं।
2: क्या कम हो गए हैं?
1: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ। सू,
0: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था, जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा। बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
2: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
1: 6, now it's 6, 5, 4। ओह
2: जॉन्सी, जॉन्सी, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
1: Only 4।
2: मेरी तरफ देखो
1: सू, ओनली 4। ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
2: क्या 3 बचे हैं? What's 3, dear?
1: 3 पत्तियां।
2: पत्तियां?
1: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
2: हाँ हाँ,
1: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
2: क्या लगता है?
1: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
2: क्या जॉन्सी?
1: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
2: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
1: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी। जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
2: हाँ हाँ,
1: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
2: क्या लगता है?
1: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
2: क्या जॉन्सी?
1: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
2: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
1: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी। सू,
2: हाँ
1: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
2: ओह जॉन्सी,
0: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
3: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
0: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
3: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
4: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ, जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
0: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुड्ढा आ रहा है।

0: जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
1: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
2: टू, ओह, अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
0: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
3: जॉन्सी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
0: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
1: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थी। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
2: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
0: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
1: जैसे ही सुबह हुई जॉन्सी ने सू से कहा,
2: सू, मेरी दोस्त।
4: हाँ जॉन्सी।
2: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
0: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। पर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
2: सू।
4: हाँ जॉन्सी।
2: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
4: हाँ बिल्कुल,
2: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
4: बिल्कुल जॉन्सी।
2: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
4: पत्ता?
2: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
4: हाँ, हाँ। मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
2: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
4: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है।
2: हाँ।
1: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी।

0: डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
1: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
0: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
2: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
3: बेहतर।
2: ये लो, कॉफी पियो।
3: थैंक यू
2: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
3: क्या हुआ?
2: वो मिस्टर बेरमन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
3: कौन बेरमन? वही बुरे कलाकार?
2: हाँ।
3: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
2: हाँ, वही।
3: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
2: हाँ, वही मिस्टर बेरमन।
3: ओह गॉड,
2: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
3: क्या?
2: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
3: क्यों नहीं गिरा?
2: हाँ,
3: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
4: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
2: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
3: पेंटिंग?
2: हाँ।
3: कैसी पेंटिंग?
2: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
3: ओह, तो वो पेंटिंग है?
2: हाँ।
3: असली पत्ता नहीं है?
2: नहीं।
3: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
2: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना, मास्टरपीस?
3: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
2: हाँ जॉन्सी,
3: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
2: हाँ, उन्होंने बना दिया।
3: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
2: हाँ,
3: मास्टरपीस।
2: हाँ,
3: मास्टरपीस। वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
0: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
4: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रही हूं।

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बनें। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का उमंग। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 MHz पर। यानी आकाशवाणी बरेली आपके सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई न कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है AIR@bareilly.cbs.gmail.com।
4: FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है AIR@bareilly.cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए AIR@bareilly.cbs.gmail.com।
5: ये आकाशवाणी, अब आप संजय मिश्रा से दिल का हाल। दिल का हाल ये है कि आकाशवाणी बरेली का स्थापना दिन है और मैं आकाशवाणी की तरफ से, अपनी तरफ से उन तमाम आकाशवाणी सुनने वालों को धन्यवाद। थैंक यू। सुनते रहिए आकाशवाणी, हमारा है, हमको इसे बताना है। थैंक यू बरेली।
6: मैं गंगा सिंह रावत, रामपुरोड़, हल्द्वानी से।

0: आकाशवाणी बरेली को उसकी स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आकाशवाणी बरेली के प्रारंभिक दिनों से, जब से इस केंद्र की शुरुआत हुई, मैं इससे बतौर श्रोता जुड़ा रहा हूं और आज भी जुड़ा हुआ हूं। पहले रेडियो के माध्यम से प्रोग्राम सुना करते थे, आजकल ऐप के माध्यम से प्रसारण सुनाई दे रहा है, काफ़ी साफ सुनाई देता है। बरेली के सारे उद्घोषक बहुत मेहनती हैं, कर्मठ हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। जिस
1: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 100.4 आकाशवाणी का बरेली केंद्र। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त मुनव्वर जहां आपके इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और आज का विषय है बहुत खास, क्योंकि आकाशवाणी के स्थापना दिवस पर है और इस दिवस पर आप लोग साझा करेंगे अपने आकाशवाणी के साथ अनुभव जो है उनको हमारे साथ। तो आइए सुनते हैं ये पहले कॉलर हमारे कौन है और क्या विचार साझा करते हैं। हेलो जी, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन और कहाँ से बात कर रही है?
2: जी, मैं मावरा बात कर रही हूँ, रामपुर से।
1: मावरा रामपुर से, कैसी है मावरा?
2: जी मैं ठीक हूँ, और आप कैसी हैं?
1: सब लोग बढ़िया हैं। और ये बताइए कि क्या करती हैं मावरा आप?
2: जी मैं पढ़ाई करती हूँ।
1: पढ़ाई करती हैं, बहुत अच्छी बात है। रेडियो से कब से आप जुड़ी हुई हैं?
2: जी मेरी फ्रेंड ने बताया था, मैं अभी कुछ महीनों से ही जुड़ी हुई हूँ।
1: अच्छा, रेडियो सुनना पसंद करती हैं, मतलब रुचि है तब जुड़ी हैं, या फ्रेंड ने बताया तो वैसे ही जुड़ गई हैं आप?
2: मुझे फ्रेंड ने बताया, मुझे इसके बारे में पता नहीं था, फिर मेरी फ्रेंड ने बताया, तब से मैं सुनती हूँ रेडियो।
1: अच्छा, आपको कैसा लगा रेडियो सुनकर?
2: मुझे रेडियो सुन के बहुत अच्छा लगता है
1: जी, क्योंकि हम आपको बता दें कि स्थापना दिवस विशेष पर, क्योंकि 17 जून को यहाँ आकाशवाणी बरेली की स्थापना हुई थी, तो इस चीज को लेकर, इस विषय को लेकर हम अपने श्रोताओं से उनके विचार साझा कर रहे हैं कि जो हमारे श्रोता आकाशवाणी सुनते हैं तो उन्हें कैसा लगता है।
2: जी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं खाली टाइम में अपने घर पे बैठती हूँ तो मैं रेडियो लगा के बैठ जाती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है, उसमें अच्छे अच्छे गाने आते हैं और अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं, इसीलिए मैं रेडियो ज्यादा से ज्यादा सुनती हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये अपने विचार साझा करने के लिए कि वाकई रेडियो, और लेकिन एक बात आपने कही कि जब भी आपको समय मिलता है, रेडियो ऐसा साधन नहीं है जो कि समय मिले तभी इंसान इसको सुने, ये तो ऐसा है आपने लगा दिया, रेडियो चल रहा है, अपना काम भी चल रहा है और रेडियो से जो जानकारी है, आपकी जो गीत संगीत है, आपका मनोरंजन भी हो रहा है।

0: जी, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, आपकी कॉल लग गई है।
1: कौन
0: बात कर रहे हैं?
1: मास्टर राधेश्याम बोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कासगंज से।
0: क्या करते हैं राधेश्याम जी?
1: मैं इंटर कॉलेज में मैथ का टीचर हूँ, लेक्चरर हूँ मैथ का।
0: अच्छा, मैथ के लेक्चरर हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और रेडियो से कब से जुड़े हुए हैं राधेश्याम जी?
1: ये आपकी स्थापना हुई थी 17 जून 1993 को बरेली की, तब जब हमारे यहाँ 5 बजे से स्टार्ट होता था, ये तभी से हम जुड़े हुए हैं।
0: बहुत पुराने श्रोता हैं आप, यानी कि जब से बरेली की स्थापना हुई थी तभी से जुड़े हुए हैं। राधेश्याम जी, फिर तो आपके पास बहुत सारे अनुभवों का पिटारा होगा आकाशवाणी से जुड़े हुए।
1: जी जी, अब कुछ... तो काफी बदला हो गया आकाशवाणी। अब तो जो है पहले जो है कार्यक्रम सीमित थे, अब तो मानरोध गीत और जो है सुबह को नमस्ते बरेली, बहुत सारे कार्यक्रम हो गए अब तो। ये
0: जी, आपको कैसा लग रहा है पहले के तुलना में अब जो कार्यक्रम जा रहे हैं, इनके बारे में कुछ बताइए।
1: अब काफी सुधार है, अब डिजिटल हम लोग सुनते हैं तो एकदम स्पष्ट प्रसारण आता है। पहले हमें सुनने बहुत दिक्कत होती, लेकिन अब स्पष्ट आता है प्रसारण जो ऐप पे सुनने से।
0: सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि कार्यक्रम कैसा भी हो, कोई भी हो, लेकिन अगर उसमें क्लियरिटी है सुनने में वो अच्छा लगेगा, है ना। अगर सरसराहट है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसा होता है। तो आप ये बताइए कि पहले के प्रोग्राम आपको कौन कौन से अच्छे लगते थे?
1: पहले के प्रोग्राम जो है 5 बजे स्टार्ट होता था पहले तो प्रोग्राम।
0: जी बिल्कुल, 5 बजे स्टार्ट होते थे सारे ही प्रोग्राम और आराधना से।
1: बहुत समय अब तो जो है पहले जो है कार्यक्रम सीमित थे, अब तो मानरोध गीत और जो है सुबह को नमस्ते बरेली, बहुत सारे कार्यक्रम हो गए अब तो। ये
0: जी, आपको कैसा लग रहा है पहले के तुलना में अब जो कार्यक्रम जा रहे हैं?

0: के बारे में कुछ बताइए।
1: अब काफी सुधार है, अब जैसे डिजिटल हम लोग सुनते हैं तो एकदम स्पष्ट प्रसारण आता है, पहले हमें सुनने में बहुत दिक्कत होती लेकिन अब स्पष्ट आता है प्रसारण जो ऐप पे सुनने से।
0: सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि कार्यक्रम कैसा भी हो कोई भी हो लेकिन अगर उसमें क्लियरिटी है सुनने में वो अच्छा लगेगा है ना, अगर सरसराहट है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसा होता है। तो आप ये बताइए कि पहले के प्रोग्राम आपको कौन कौन से अच्छे लगते थे?
1: पहले के प्रोग्राम जो है 5 बजे स्टार्ट होता था पहले तो प्रोग्राम।
0: जी बिल्कुल, 5 बजे स्टार्ट होते थे सारे ही प्रोग्राम और आराधना से
1: बहुत समय हो गया।
0: जी जी जी, तो कुल मिला के आप इतने पुराने समय से जुड़े हुए हैं और आपको कैसा लगता है रेडियो के साथ जुड़े हुए?
1: कि कोई ऐसा है जानकारी भी मिलती रहती है और मनोरंजन भी होता रहता है,
0: कोई
1: रेडियो से जो जीएस तैयार करने बहुत हमें मदद मिलती है।
0: ये तो बहुत ही अच्छी बात है और ऐसा फील होता है।
1: मैं बता दूं मैं आपको, जो मैंने जो रेडियो से जीएस करंट जी के तैयार करता था तो मेरा बीएड में जनरल सिलेक्टेड हुआ था मैं।
0: बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही खुशी की बात आपने बताई। और ऐसा लगता है कभी आपको कि रेडियो मेरा एक हम सफर है या मेरा एक साथी है, कभी कोई दुख परेशानी तकलीफ या खुशी में जो इंसान किसी साथी को पुकारता है तो ऐसे वक्त में भी आपने रेडियो को याद किया हो?
1: जी जी, रेडियो हमारा बचपन का साथी है, अभी भी है और रहेगा, ये जब तक रहेंगे तब तक।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। राधेश्याम जी, आपने कॉल की और अपने विचार साझा करे इतने पुराने समय से लेके अब तक के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: फिल्म का नाम है सनम और गाने के बोले आंखों में नींद न जिनमें करार।
0: मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार।
1: जी जी जी मैम
0: जी, सुनिए अपने रेडियो सेट पर अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है। हमारे कौन श्रोता है?
1: करगैना से बात कर रहा हूँ, शाहबुद्दीन।
0: करगैना से बात कर रहे हैं?
1: जी, काम करते हैं सैलून का।
0: सैलून का काम करते हैं?
1: जी।
0: अच्छा, रेडियो सुनते हैं हमारा दिन भर?
1: जी जी।
0: सैलून में तो अक्सर मैंने देखा है शॉप वगैरह पर, तो रेडियो चलता रहता है, खूब तेज आवाज कर लेते हैं आप लोग, है ना? बाहर सड़कों तक आवाज आती है जब हम गुजरते हैं। जी जी जी। ज्यादातर मैंने सैलून में ये देखा है जोश और खरोश के, सड़क पर भी से भी गुजरते हैं तो अंदर से रेडियो की आवाज जो तेज धमकदार आती है वो बाहर सड़कें तक गूंज जाती है। कब से जुड़े हुए हैं श्याम सिंह आप आकाशवाणी बरेली से?
1: जुड़े हुए हैं कम 10-15 साल हो गए।
0: तो आकाशवाणी के साथ आपकी कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसके लिए आपको अच्छा लगता हो वो प्रोग्राम?
1: ये सारे प्रोग्राम पसंद। हेलो बरेली, हेलो फरमाइश।
0: और आप इतने दिनों से जुड़े हुए हैं, कोई याद रेडियो के साथ आपकी जुड़ी हुई हो वो हमसे साझा कीजिए। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है ना, जैसे कि हम जैसे छोटे थे तो अक्सर ऐसा होता था कि हम गली कूचों से गुजर रहे हैं तो देखते थे कि रेडियो बज रहा है लेकिन लोग भीड़ लगाए खड़े हुए हैं सुनने के लिए। इतना क्रेज होता था उस जमाने में रेडियो का, और कई चीजें ऐसी होती थी कि रेडियो का हम वेट करते थे कि रेडियो पे वो प्रोग्राम आएगा तो हम सुनेंगे, अपने सारे काम जल्दी निपटा लेते थे। कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई मौजू आया है कि कोई प्रोग्राम आपको इतना पसंद आया हो जिसके लिए आप वेट करते हो?
1: हेलो बरेली, हेलो फरमाइश का वेट करते हैं, सुनते हैं।
0: मतलब शुरू से लेके जब से आप जुड़े हुए हैं तब से अब तक ये दो प्रोग्राम ही आपको पसंद है। चलिए, आपने कॉल की और हमें बताया कि कौन कौन से प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो।
2: हेलो
0: जी, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है।
2: जी, मैं इकरा बोल रही हूँ।
0: इकरा कहाँ से बात कर रही है?
2: जी, शाहजहांपुर से।
0: क्या करती हैं इकरा?
2: जी, मैंने पढ़ाई की है।
0: पढ़ाई की है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कौन से क्लास में है?
2: जी, मैंने 10th पास कर लिया, अभी छुट्टियाँ चल रही है मेरे स्कूल की।
0: बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आपने 10th पास कर लिया। ज्यादातर बच्चे 10th में ही डरते हैं। आज का हमारा विषय है स्थापना दिवस विशेष पर, क्योंकि 17 जून को आकाशवाणी बरेली की स्थापना हुई थी। तो आप बताइए कब से जुड़ी हुई है रेडियो से हमारे?
2: नहीं, मुझे तो 2-3 साल हो गए, क्योंकि मैं ज्यादा दिन से नहीं सुन रही। मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था तो मैं सुनने लगी, पर ये मुझे एक तो बहुत अच्छा लगता है, चाहे कोई काम करते हो कुछ भी करते हो आप सुन सकते हैं इसे, और ये मूड को फ्रेश कर देता है, जैसे इससे एजुकेशन भी मिलती है और हमारे सॉन्ग भी सुनने को मिलते हैं, ये बहुत बढ़िया है कार्यक्रम।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि आपकी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया कि आप रेडियो सुनिए, तो आपको कैसा लगा कि उसने सही आपको गाइड किया या गलत गाइड किया उसने आप?
2: सही गाइड किया मुझे।
0: अच्छा, उसने सही मार्ग दिखाया आपको?
2: जी जी
0: जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इतना सराहते हैं रेडियो को, इतना चाहते हैं और इतने चाव से सुनते हैं। आज आपकी कॉल लगी है इकरा, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
2: हिंदुस्तान की कसम।
0: ठीक है इकरा, हम भेजते हैं आपके रेडियो सेट पर आपकी पसंद का ये गीत।

0: गणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
2: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
3: हेलो, सुल्तान रजा, कैसे हैं? आपने एड्रेस तो बताया नहीं।
4: कुतुब खाना सब्जी मंडी, बरेली से।
3: अच्छा,
4: होता
3: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमने पहचान लिया था, लेकिन रेडियो पे नाम और पता दोनों जाना जरूरी होता है।
4: जी जी
3: जी। और कैसे हैं सुल्तान रजा?
4: जी अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए ना, दुकान पर आइए ना हमारी एक बार।
3: इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर आएंगे। जब भी कुतुब खाना जाना होगा तब आएंगे। और
4: चुन्नियाँ मिलेंगी आपको, देंगे हम चुन्नी।
3: अच्छा, चुन्नियाँ देंगे, तब तो लालच दे रहे हैं आप हमें।
4: जी
3: चलिए, चुन्नी का लालच दिया तब जरूर आएंगे हम।
4: तो जरूर आइएगा।
3: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सुल्तान से एक बात बताइए, आप कब से जुड़े हुए हैं आकाशवाणी बरेली से?
4: मैम मैं तो फिलहाल जो है करीब 2000 ऐसी तो 8-9 से।
3: 2008-09 से, तब तो काफी पुराने श्रोता है आप, है ना?
4: जी जी जी, बस थोड़ा सा कुछ कर नहीं पाता था इसके अंदर, लेकिन 2015 से तो मैंने इसको जानना चालू कर दिया था कि इसमें होता क्या है, कैसे बोलते हैं, कैसे है।
3: अच्छा,
4: इसमें आवाज आती है वो हमने खुद आकर देखा था।
3: तो 2015 से आप नियमित श्रोता बने हैं?
4: और पहले सिर्फ सुनते थे।
3: अच्छा, इससे पहले सिर्फ सुनते थे,
4: पहचानते हैं,
3: अब पहचानने लगे हैं। और आपकी भी एक पहचान बन गई है आकाशवाणी बरेली में, ऐसा नहीं है कि आप ही पहचानते हैं और

0: आकाशवाणी बरेली भी आपको पहचानने लगा है, और जैसे कि कल मना रहे हैं हम 17 जून को आकाशवाणी बरेली का। जी जी बिल्कुल, हैप्पी वाला बर्थडे बन रहा है। तो आप बताइए, इस शुभ दिन के लिए आप अपने विचार क्या साझा करना चाहेंगे?
1: तो ये कहना चाहते हैं इनसे कि ये हमारा 100.4 FM जो है, ये खूब ऐसी तरक्की करे, और इसमें जो लोग काम कर रहे हैं ये हमें सलामत रहे।
0: बिल्कुल, आमीन। आपके कोई विचार हो, ऐसा कुछ अनुभव हो कि जो आपका आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हो, कोई ऐसी बात हो जो आकाशवाणी से जुड़ी हुई हो, जो आप साझा करना चाहेंगे?
1: सबसे अच्छा आकाशवाणी का ये लगता है कि हम जो काम वाम करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा इसका ये हमारे साथ रहता है, दोस्ती का रिश्ता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ये छोड़ता नहीं साथ हमारा
0: जी।
1: और लोग धोखा दे देते हैं, ये हमारा एक कंटिन्यू दोस्त रहता है,
0: सच्चे साथी की तरह साथ निभाता है।
1: तो ये सच्चा साथी बहुत ही कमी से मिलते हैं, लेकिन जो आकाशवाणी है ये हमेशा हमारे साथ रहेगी, ये हमें उम्मीद है।
0: और इंशाल्लाह आकाशवाणी बरेली आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी।
1: खरी जी। तो कल इनका 17वां जो है, 17 जून को बर्थडे होता है, तो इसके लिए हम मुबारकबाद देते हैं आकाशवाणी बरेली को, जैसे फूले फले और खूब तरक्की करे।
0: थैंक यू सो मच, और हमारे सारे लिसनर भी फले फूले तरक्की करें और आकाशवाणी बरेली से जुड़े रहें, है ना?
1: जी, एक शेर भी लिखा है इनके लिए मैंने।
0: जी बिल्कुल, इरशाद।
1: हम वो नहीं जो मतलब से याद करते हैं, हम वो नहीं जो मतलब से याद करते हैं, हम वो हैं 100.4 FM को दिल से प्यार करते हैं। आपका पैगाम आए या ना आए, आपका पैगाम आए या ना आए, हम रोज 100.4 FM को दिल से प्यार करते हैं।
0: बहुत अच्छी शायरी है। आपने शायरी सुना दी, अब आप बताइए हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं?
1: आपको सुना दीजिएगा, गीत मूवी का नाम है प्रेम रतन धन पायो, जो गाना है इसमें, आज उनसे मिलना है।
0: लीजिए सुल्तान रजा, आप सुनिए कुतुब खाने में अपनी दुकान पर बैठकर ये गीत।

0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, आप कौन बात कर रही हैं?
1: मैं मैडम दीक्षा पाठक बात कर रही हूँ।
0: दीक्षा पाठक कहाँ से बात कर रही हैं?
1: ग्राम बंधार से बात कर रही हूँ, जिला शाहजहानपुर से।
0: क्या करती हैं दीक्षा पाठक?
1: मैडम मैं कुछ नहीं करती हूँ, रेडियो सुनती रहती हूँ, दिखाई नहीं दे रहा, घर पे रहते हैं।
0: अच्छा, घर पर ही रहती हैं, रेडियो सुनती हैं, और काफी नियमित श्रोता है, काफी पुरानी श्रोता है आप हमारी।
1: जी मैडम मैं बचपन से ही सुनती हूँ रेडियो।
0: जी जी, कोई अनुभव अपना साझा कीजिए आज हमारे साथ, क्योंकि कल 17 जून है और 17 जून को आकाशवाणी बरेली का स्थापना दिवस है, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे आकाशवाणी बरेली के लिए?
1: हम तो मैडम यही कहना चाहेंगे कि आकाशवाणी बरेली के लिए कि जैसे कई लोग हैं मैडम, बहुत लोग हैं सर मैडम मोबाइल से, मतलब मोबाइल चलाते हैं, रेडियो कम सुनते हैं, टेलीविजन देखते हैं, लेकिन हमें मैडम जितनी जानकारी रेडियो से मिलती है, रेडियो से कितना मनोरंजन होता है, हमारा पुराना आकाशवाणी ही है।
0: जी बिल्कुल, और ये चीज एक मिसाल है कि आपको दिखाई नहीं देता है लेकिन तब भी आप ज्ञान, सूचना, मनोरंजन सारी चीजों का भरपूर आनंद लेती हैं, है ना? कोई आपको
1: मैडम मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कार्यक्रम सुनते हुए आकाशवाणी।
0: कोई कुछ ऐसा तो नहीं लगता है आपको कि आकाशवाणी बरेली या फिर रेडियो से हम प्रोग्राम सुन रहे हैं तो इसमें ये इम्प्रूवमेंट और होता तो और अच्छा लगता, ऐसा कभी फील हुआ है आपको?
1: नहीं नहीं मैडम, ऐसा मुझे नहीं फील हुआ, आप लोग जैसे पेश करते हैं मैं वैसे ही सुनूं।
0: और वही आपको अच्छे लगते हैं?
1: वही अच्छे लगते।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो मैडम ये है कि आप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं आप सभी लोग मैडम, इसके लिए मैं आप सभी लोगों के लिए मैडम धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी लोग इतनी मेहनत हमारे लिए करते हैं।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का भी कि आप लोग टाइम निकाल कर हम लोगों के लिए कॉल करते हैं, सुनते हैं और हमें इतना सराहते हैं। आज आपकी कॉल लगी है दीक्षा पाठक, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: मैडम मुझे सुनवा दीजिए आकाशवाणी के ऊपर ही गीत सुनवा दीजिए, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा।
0: बहुत प्यारा गीत है ये, और लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: जी मैं दीप्ति बात कर रही हूँ।
1: दीप्ति बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं?
0: जी मैं बदायूं से बात कर रही हूँ।
1: क्या करती हैं दीप्ति?
0: मैं इस समय पढ़ाई कर रही हूँ, 8th क्लास में हूँ, मेरा एडमिशन हुआ, अभी छुट्टियाँ हो रही हैं।
1: अच्छा,
0: मैं घूमने जा रही हूँ।
1: अच्छा, तब तो आप बहुत ही छोटी हैं। आकाशवाणी बरेली से कब से जुड़ी हुई हैं बताइए?
0: मैं ज्यादा दिनों से नहीं हूँ, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर थी वो इसको फॉलो करती थी, लेकिन मैं उनके साथ सुनती थी, फिर बाद में जरा पढ़ाई वढ़ाई का हो गया
1: जी,
0: फिर बाद में फिर अब मैं खुद फॉलो करती हूँ 3-4 महीनों से।
1: बहुत
0: मुझे ये नंबर मिला, आप लोग बताते हो नंबर किस में कॉल करो, तो फिर मैंने ये नंबर नोट करके रखा था, तो आज मैंने लगाया ये नंबर।
1: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी, जो आपने अपनी दादी की परंपरा को आगे बढ़ाया है ना।
0: जी हमारे यहाँ ये पुराना रेडियो पहले होता था, उसको फॉलो करती थी मेरी ग्रैंड मदर
1: जी,
0: और फिर बाद में उनका पुराना रेडियो था उससे पहले के बारे में बताते थे, अब थोड़ा न्यू हो गया तो मैं इसको फोन

0: फॉलो करती हूँ।
1: अच्छा, ऐसा है ना, जब कोई चीज किसी को पसंद आती है, बड़े लोग कोई काम करते हैं और अगर बच्चों को वो पसंद आता है तभी वो चीज अपनाते हैं, है ना। इसका मतलब आपको
0: जी
1: बचपन
0: जी
1: से ही रेडियो

0: धड़कता जाए सॉन्ग है गजो, मेरा दिल ये धड़कता जाए, दुपट्टे को संभाल सोनिए, हुआ है बेकरार दिल सोनिए, ऐसे करके कुछ लिरिक्स है, मूवी है अखियों से गोली मारे।
1: आप सुनिए अपने रेडियो सेट पर अपनी पसंद का ये गीत।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: हेलो
2: हेलो
1: जी, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन बात कर रही है?
2: जी मैं रिफा बात कर रही हूँ बरेली से।
1: रिफा कैसी है रिफा जी?
2: जी मैं ठीक हूँ, और आप कैसी हैं?
1: सब बढ़िया है। क्या करती है रिफा?
2: जी मैं अभी तो बस पढ़ाई करती हूँ।
1: किस क्लास में है आप?
2: जी मैं इंटर में हूँ अभी।
1: इंटर में है, बहुत बढ़िया। और जैसे कि आकाशवाणी बरेली 17 जून को अपना स्थापना दिवस मना रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
2: जी मैं बस यही कहना चाहूंगी कि सब लोग रेडियो जरूर सुने, क्योंकि कम से कम मुझे हो गए 7-8 साल मैं रेडियो सुनती हूँ, और रेडियो बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि जब मैं सैड होती हूँ तो मैं गाने चला के सुन लेती हूँ तो मेरा मूड सही हो जाता है।
1: ये आपके दुख का साथी है ना?
2: जी जी जी। जैसे मैं सैड मूड में होती हूँ तो मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, बस रेडियो चला के बैठ जाती हूँ और रेडियो सुनती हूँ।
1: अच्छा, मतलब दुख का साथी रेडियो को बना रखा है, जब भी कभी परेशानी या टेंशन में होती है तो अपने रेडियो पास ले लेती है ना?
2: जी जी।
1: अच्छा रिफा, कोई इतने 7-8 सालों से आपने बताया जुड़ी हुई हैं, तो 7-8 सालों में कोई ऐसी बात जो रेडियो से जुड़ी हुई है ना?
2: जी जी जी। जैसे मैं सैड मूड में होती हूँ तो मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, बस रेडियो चला के बैठ जाती हूँ और रेडियो सुनती हूँ।
1: अच्छा, मतलब दुख का साथी रेडियो को बना रखा है, जब भी कभी

0: परेशानी या टेंशन में होती हैं तो अपने रेडियो पास ले लेती हैं, है ना?
1: जी जी।
0: अच्छा रिफा, कोई इतने 7-8 सालों से आपने बताया जुड़ी हुई हैं, तो 7-8 सालों में कोई ऐसी बात जो रेडियो से जुड़ी हुई हो, जो आपको कभी ऐसा होता है कि बच्चे हैं या बड़े हैं रेडियो से लगे हुए हैं, या कोई अपना शौक पूरा कर रहे हैं तो बड़े लोग डांट देते हैं, उन्हें डपट देते हैं बिना

0: जी जी मैं अपने बचपन से सुनती हूँ रेडियो।
1: अच्छा, आकाशवाणी बरेली का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है 17 जून को, तो आप कोई अपना साझा करना चाहेंगी अनुभव?
0: हेलो बरेली तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, काफी टाइम हो गया।
1: अच्छा, इसके अलावा
0: हम लोग रात के 10-10, 11-11 बजे तक सुनते रहते थे। अच्छा, सभी प्रोग्राम सुनते थे, एक नहीं सभी।
1: इसके अलावा कोई बात आपकी आकाशवाणी के साथ आपका कुछ जुड़ा हुआ हो, कोई अनुभव हो आपका?
0: इससे हमें नॉलेज मिलता है, इससे हमें अगर जैसे बाई चांस हमारे दिमाग में कोई बात नहीं आ रही है या हमें कोई सुझाव नहीं आ रहा है तो इससे हमें हर बात का सलूशन मिलता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद नेहा, आपने कॉल की है। कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आप?
0: जी मैं अर्पण फिल्म का गाना सुनूंगी, आशा हूँ मेरा है टूट जाए दिल रह गए थोड़े।
1: हम भेजते हैं आपके रेडियो सेट पर आपकी पसंद का ये गीत।

देते हैं और बेपना स्नेह, बेपना मोहब्बत, बेपना प्यार भी मिलता है। आगे ये लिखते हैं कि यहाँ के जितने भी साथी हैं वो सारे लोग प्यार बांटने वाले हैं और हमारी दुआ है आकाशवाणी बरेली यूं ही निरंतर चलता रहे, मोहब्बत बरकरार रहे। साधु शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ है ये। अगला कमेंट हमारे पास आया है अनोखे लाल मौर्य कटरा चांद खां बरेली से। इन्होंने भी हमें शुभकामनाएं दी हैं और कहते हैं 1993 17 जून से मैं लगातार सुन रहा हूं। अगला कमेंट आया है तिगड़ी कस्बा शीशगढ़ से शाहरुख खान, हाशिम खान, अरहम बाबू और किशबा नूर का। लिखते हैं आकाशवाणी बरेली की स्थापना 17 जून को हुई थी। केंद्र की स्थापना दिवस के अवसर पर आकाशवाणी अपने श्रोताओं के लिए विशेष कार्यक्रमों, गीत संगीतों का प्रसारण करता है और इसकी 14 सालों से ये सुनते चले आ रहे हैं प्रोग्राम्स और तहे दिल से शुक्रिया करते हैं ये। और लिखते हैं कभी हमारे पसंदीदा गीत, कभी हमारी पसंद के गीत, तो कभी दूसरे दोस्तों के गीत सुनवाए जाते हैं और हमें आकाशवाणी बहुत ही पसंद आता है। कभी समाज की जानकारी तो कभी किसान भाइयों के लिए जानकारी। अगला हमारे पास ये कमेंट आया है लाल मोहम्मद अंसारी का, हमारे नियमित होता है ये भी। श्रोताओं ये लिखते हैं आकाशवाणी बरेली को सुनते हुए 33 साल हो गई है, बहुत सी यादें हैं आकाशवाणी बरेली से जुड़ी। 7 सितंबर 1998 को आकाशवाणी बरेली ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया था जिसका नाम था युवा मंच। उसकी रिकॉर्डिंग के लिए जब हमने पहली बार आकाशवाणी बरेली को अंदर से देखा था उस दिन हमें बहुत खुशी हुई थी। उस दिन हमने श्री बशीर आरिफ और राजेश गौड़, विनय वर्मा, प्रवीण कुमार, सीमा आर्य को फेस टू फेस देखकर बहुत खुशी महसूस हुई थी। तब से लेकर आज तक आकाशवाणी बरेली से जुड़े हुए हैं, सभी कार्यक्रमों को बदस्तूर सुन रहे हैं। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी हैं, लालू मिस्त्री अंसारी। आप लोग आकाशवाणी को इतना प्यार देते हैं और इतने सालों से जुड़े हुए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया।

श्रोताओ, इसी के साथ आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अपने रेडियो दोस्त मुनव्वर जहां को दीजिए इजाजत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। शाम के 5 बज चुके हैं। आइए अब हम आपको आज की सभा और कल की सभा में रिलेवा प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी दे दें।

श्रोताओं, आज शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नारी संसार। इसमें होगी वार्ता पर्यावरण सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी। वार्ताकार होंगी आरती। युवाणी की एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर आपके रेडियो सेट पर आकर हर रोज की तरह शाम 6 बजे रुकेगी। कुछ खास है आज सेगमेंट में, आप जानेंगे परिवार प्रेक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी शाम 6:30 से। आज की बात होगी खेत बचाओ अभियान से। शाम 7 बजे का समय रहेगा ग्राम जगत का। चर्चा होगी सेहत का रखें ध्यान। आज शाम 7:31 पर होगा रेडियो हेल्पलाइन। आज का विषय होगा प्री टर्म अथवा समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की गंभीर बीमारियों और उनके इलाज में वेंटिलेटर एवं अन्य मशीनों की भूमिका। आज के विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कुलदीप गंगवार। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों को आप सुन सकेंगे रात्रि 8 बजे से। कल सुबह की शुरुआत होगी कार्यक्रम यंग बरेली से। दोस्तों, इस कार्यक्रम में एनर्जी से भरपूर बरेली की खबरों से आपकी सुबह होगी 8:15 पर आप सुनेंगे। 8:45 पर लोक धुनों पर आधारित कार्यक्रम लोकगीत। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को आप सुन सकेंगे सुबह 9 बजे से। आपकी पसंद कार्यक्रम में आप सुनेंगे अपनी पसंद के फिल्मी गीत सुबह 10 बजे से। सब रंग कार्यक्रम के बिखरेंगे रंग कल पूर्वाहन 11 बजे से आपके रेडियो सेट पर। 11:30 से आप सुनेंगे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला। 12:05 से सुनिए आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों को। आपके पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत कल दोपहर 1 बजे से। कल 2 बजे से सुनिए कार्यक्रम रस रंग। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग कल 3:30 से। कल शाम 4 बजे होगी आपकी बात आकाशवाणी के साथ एक नए विषय को लेकर। शाम 5:05 पर होगी भजन संध्या। नारी संसार शाम 5:30 पर। वार्ता होगी स्वयं सहायता समूह का योगदान। वार्ताकार होंगी कुसुम। कल शाम 6 बजे सुनना न भूले युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवाणी। कुछ खास है आज सेगमेंट में।

0: कल आप जानेंगे विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस के बारे में। कल शाम 6:30 पर आप सुनेंगे ICC वुमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत हेडिंगले लीड्स से भारत और नीदरलैंड के मध्य खेले जाने वाले मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 7:31 का समय रहेगा कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन का। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी आज की सभा और कल की सभा में रिलेवा प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 MHz पर।
1: ये आकाशवाणी, अब आप संजय मिश्रा से दिल का हाल सुन। दिल का हाल ये है कि आकाशवाणी बरेली का स्थापना दिन है और मैं आकाशवाणी की तरफ से, अपनी तरफ से उन तमाम आकाशवाणी सुनने वालों को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, सुनते रहिए। आकाशवाणी हमारा है, हमको इसे बताना है। थैंक यू बरेली।
0: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 100.4 आकाशवाणी का बरेली केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है भजन संध्या।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भजन संध्या, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 MHz पर।
1: ये आकाशवाणी, अब आप संजय मिश्रा से दिल का हाल सुन। दिल का हाल ये है कि आकाशवाणी बरेली का स्थापना दिवस है और मैं आकाशवाणी की तरफ से, अपनी तरफ से उन तमाम आकाशवाणी सुनने वालों को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, सुनते रहिए, आकाशवाणी हमारा है, हमको इसे बताना है। थैंक यू बरेली।
0: दोस्तों, आपने ट्यून किया है 100.4 आकाशवाणी का बरेली केंद्र। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी संसार।

नमस्कार सखियों, और एक बहुत खूबसूरत सी शाम एक बार फिर हमारी सखियों के नाम। मैं हूं आपकी सखी, आपकी हमराज शिप्रा श्रीवास्तव। आपने ट्यून किया है 100.4 FM और सुन रही है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम नारी संसार। सखियों, आज जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सच सच खुद को बताइएगा कि आज सुबह की चाय से लेकर रात के डिनर के बारे में सोचते समय आपको अपने बारे में कितनी बार ख्याल आया। देखिए, सच बोलिएगा, सच तो यही है कि बच्चों के स्कूल बैग से लेकर बड़ों की दवाइयाँ, तो इन सब के बीच में आपकी दुनिया जो है वो सिमट के रह गई है। लेकिन आज कम से कम अगले 10 मिनट आपको बस किसी और के लिए नहीं, अपने लिए जीने हैं। तो बस एक कप गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी हाथ में थामिए, आराम से बैठिए और सुनिए वो बात जो मैं आपसे करने जा रही हूँ। सखियों, वैसे तो हम महिलाएं भी कमाल की होती हैं, हर समय खुद को परफेक्ट साबित करने के चक्कर में भूल जाती हैं कि भाई हम भी तो एक इंसान ही हैं, रोबोट नहीं। घर को हमेशा प्रेजेंटेबल रखना है, बच्चों को टॉपर बनाना है, हर किसी को घर में खुश रखना है, पर इन सब में हम और हमारी खुशियां कहीं दूर पीछे छूट जाती हैं। और हाँ, जब बात निकली है तो मुझे एक बात याद आ रही है जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैं अपनी बहुत पुरानी सहेली से सालों बाद मिलना हुआ, उसके घर गई और हम बैठे पुरानी बातें यादें ताज़ा कर ही रहे थे कि तभी बातों बातों में उसने अपनी अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाल कर दिखाई। खोल कर देखा तो उसमें बेहद खूबसूरत कविताएं लिखी हुई थी। देखकर मुझे हैरानी हुई और जब मैंने उससे पूछा कि तुम इतना अच्छा लिखती हो, कभी किसी को बताया क्यों नहीं, कभी किसी को तुमने ये कविताएं सुनाई क्यों नहीं, तो जानती हैं उसने मुझे क्या जवाब दिया? उसने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, शौक तो कॉलेज के दिनों का था, लेकिन अब तो घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते ये भी भूल गई कि आखिरी बार कविता कब लिखी थी। अब वक्त ही कहाँ मिलता है। बस उसी समय उसकी ये बात मुझे चुभ गई, वक्त मिलता नहीं सखियों, या हम वक्त निकालना ही नहीं चाहते। सखियों, अपने शौक को जिंदा रखना, उसके लिए वक्त निकालना कोई समय की बर्बादी नहीं है, लेकिन जब भी हम ऐसा करते हैं हम एक अलग तरीके का अपराध बोध हो जाता है। अक्सर हम महिलाएं जब भी अपने लिए कुछ करती हैं, जैसे थोड़ी देर बस शांति से बैठकर अपनी पसंदीदा किताब पढ़ना, पेंटिंग करना, गार्डनिंग करना, या कुछ नहीं बस यूं ही हेडफोन लगाकर पुराने गाने सुनकर कुछ यादों को दोहराना, तो बस उसी पल हमें लगता है कि लो मैं यहाँ बैठी ये काम कर रही हूँ और किचन में बर्तन पड़े हैं या फिर बच्चों का होमवर्क बाकी।

है या फिर कोई और काम, लेकिन वो काम जो हमें शायद पहले नहीं महत्वपूर्ण लग रहा था, लेकिन जैसे ही हमने अपने लिए समय निकाला वो हमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगता है। लेकिन सखियों, आप सच ही बताइए, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि अपने लिए निकाला गया समय समय की बर्बादी होता है, या फिर अपने शौक के लिए निकाला गया मी टाइम, ये क्या हमें ज़रूरी नहीं?

0: सखियो, आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि ये हमारी सोच, पसंद और खरीदारी के फैसलों को भी प्रभावित कर रहा है। हम में से सब ने कभी न कभी किसी न किसी रील को या किसी इन्फ्लुएंसर की बातों से प्रभावित होकर कुछ न कुछ नया जरूर ट्राई किया है, कुछ न कुछ नया जरूर खरीदा है। और आज हमारे कार्यक्रम के इनसे मिले सेक्शन में हम इसी रोचक और तेजी से बढ़ते हुए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। और इसके लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठा चौधरी जी, जो कि इसी विषय पर शोध करेंगे। तो वरिष्ठा जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम नारी संसार। वरिष्ठा जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपने अपना विषय चुना है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग शोध के लिए, इसकी कोई खास वजह?
1: सभी सखियों को और आपको भी मेरा नमस्कार। जहाँ तक बात मेरे शोध के विषय की है, तो जैसे कि अब डिजिटल युग में लोग खरीदारी करने के लिए अब विज्ञापनों पर कम और इन्फ्लुएंसर्स के रिकमेंडेशंस पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, AI के इस युग में अब कंपनियां ह्यूमन इन्फ्लुएंसर्स के साथ साथ वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स जो AI द्वारा बन रही हैं, इनके द्वारा भी मार्केटिंग कर रही हैं। मेरे इस शोध से हमें ये पता चलेगा कि जो कस्टमर की डिसीजन मेकिंग है, यानी खरीदारी संबंधित निर्णय है, इन पर इन इन्फ्लुएंसर्स का कितना प्रभाव पड़ता है। और साथ ही में हमें ये भी पता चलेगा कि इन इन्फ्लुएंसर्स का प्रभाव पुरुषों और महिलाओं दोनों पर समान रूप से पड़ता है या नहीं।
0: वरिष्ठा जी, क्या आपको सच में लगता है कि आज जो इन्फ्लुएंसर द्वारा जो प्रमोट किए जाते हैं प्रोडक्ट, उनका महिलाओं की खरीदारी और उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है, और अगर पड़ता है तो कितना?
1: हाँ, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। देखिए, महिलाएं इन्फ्लुएंसर्स को एक सेलिब्रिटी के बजाय अपने दोस्त या सच्चे सलाहकार के रूप में देखती हैं। इनके द्वारा प्रोडक्ट रिव्यूज महिलाओं को खरीदारी करने में मदद करते हैं, और आज की मॉडर्न वुमेन्स पर समय के अभाव के कारण भी इन इन्फ्लुएंसर्स का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। खासकर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स जैसे कि ब्यूटी और फैशन, इन पर इन इन्फ्लुएंसर का प्रभाव सबसे ज्यादा है। लगभग 60-70% महिलाएं प्रोडक्ट रिव्यूज को देखने के बाद ही खरीदारी संबंधित निर्णय ले।
0: अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, तो कोई ना कोई किसी ना किसी वस्तु या किसी सेवा या किसी ना किसी चीज का प्रचार कर रहा है, तो ऐसे में हमारी सखियों के लिए आपकी क्या सलाह है कि वो सही और गलत प्रचार के अंतर को कैसे पहचाने?
1: देखिए, भारत में किसी भी ब्रांड का प्रचार करते समय इन्फ्लुएंसर्स को स्पॉन्सर्ड, कोलैब, पेड प्रमोशन जैसे शब्दों का प्रयोग करना अनिवार्य है। महिलाएं विज्ञापन देखते वक्त इन शब्दों के प्रयोग से पहचान सकती हैं कि यह विज्ञापन भ्रामक हो सकता है, या किसी भी ब्रांड की अत्यधिक तारीफ भी एक संकेत है कि प्रोडक्ट भ्रामक हो सकता है। हमें खरीदारी करने से पहले अपने आसपास के लोगों का फीडबैक लेना चाहिए जो असल जिंदगी में प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हों। यह सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय तरीका है प्रोडक्ट खरीदने का।
0: अच्छा, अगर करियर की दृष्टि से देखा जाए, तो हम आज देखते हैं कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो बहुत सफल हैं, और बहुत साधारण पृष्ठभूमि से शुरुआत करने के बावजूद भी आज वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। तो ऐसा देखकर हमारी बहुत सारी सखियों को भी लगता होगा कि वो कुछ इस क्षेत्र में कदम बढ़ाएं या करियर बनाएं, तो आपकी क्या सलाह है कि अगर वो इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहें तो क्या संभावनाएं हैं, या क्या ये क्षेत्र किसी के लिए भी सही हो सकता है, या कुछ खास योग्यता होनी चाहिए?
1: इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक उभरता हुआ क्षेत्र है, और कई लोग इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों में

0: बातचीत की कला होनी चाहिए। रचनात्मकता के साथ आकर्षक प्रेजेंटेशन स्किल्स होना बहुत जरूरी है। अपने प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए और प्रोडक्ट में आने वाले नए नए बदलावों के बारे में भी इन्हें मालूम होना चाहिए। प्रोडक्ट की बिक्री के लिए इनका दर्शकों से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है और ईमानदारी व निष्पक्षता के साथ जानकारी देने की इनमें क्षमता होनी चाहिए। तो ये कुछ खूबियां हैं जो हर एक इन्फ्लुएंसर में होनी चाहिए।
1: वरिष्ठा जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारी सखियों के साथ साझा की, उनका मार्गदर्शन किया और सबसे बड़ी बात कि आपने अपना इतना कीमती समय हमारे कार्यक्रम के लिए निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मेरे विचार सुनने के लिए आपका, साथ ही में सभी श्रोताओं का और आकाशवाणी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद।

सखियों, हम जहाँ रहते हैं, जिस पर्यावरण में हम सांस लेते हैं, आपको नहीं लगता कि हम कई बार उसे बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बहुत नज़रअंदाज कर देते हैं? और किस लिए? सिर्फ अपनी छोटी छोटी सुविधाओं के लिए। तो पर्यावरण सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी एक की नहीं, बल्कि हम सब की है। और आज इसी विषय पर हम लेकर आए

0: हैं आपके लिए वार्ता, पर्यावरण सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी, और वार्ताकार हैं आरती। तो सखियों आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: पर्यावरण हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें जीवन जीने के लिए आवश्यक संसाधनों, ऊर्जा और सामग्रियों को प्रदान करता है। पर्यावरण का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे कर्मों का पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण की साफ सफाई हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रदूषण स्रोतों जैसे कि वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण का सामना करना हमारे स्वास्थ्य तथा पर्यावरण संतुलन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए हमें उन सभी उपायों को अपनाना चाहिए जो पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखें। पर्यावरण से हमें वह हर संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं जो किसी सजीव प्राणी को जीने के लिए आवश्यक हैं। पर्यावरण ने हमें वायु, जल, खाद्य पदार्थ आदि उपहार के रूप में दिया है। हम सभी ने हमेशा से पर्यावरण के संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल किया है, और हम आज हमारे लिए इतना विकास करने के पीछे पर्यावरण का ही योगदान रहा है। पर्यावरण का मतलब हमारे चारों ओर का वातावरण होता है जिसमें हम सब निवास करते हैं। हमारे आसपास का वातावरण जितना शुद्ध होगा, हमारा जीवन उतना ही ज़्यादा खुशहाल होगा। हमारे ही लापरवाही से वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है। अपनी तरक्की में पर्यावरण का ध्यान रखना भूल जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषित होने के कई कारण होते हैं, जैसे कि पौधों को काटना, वृक्षारोपण न करना मतलब पेड़ न लगाना, कारखानों से निकलने वाली धुआं तथा सही तरह से निस्तारण नहीं हो पाना, प्लास्टिक का अधिक उपयोग करना आदि पर्यावरण के संतुलन में गड़बड़ी के कारण मौसम में बदलाव, भूकंप, बाढ़ जैसी आपदाएं उपलब्ध हो जाती हैं। अतः इसके संरक्षण के लिए हमें कई बातों पर रख कर पालन करना चाहिए। पर्यावरण दूषित न हो इसके लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पर्यावरण को स्वस्थ व साफ सुथरा रखना चाहिए। पेड़ पौधों को काटने से रोकना चाहिए। इसके साथ ही पर्यावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए। हम सभी को अपना कर्तव्य समझना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ वातावरण में रहकर ही हम स्वस्थ मनुष्य और एक विकसित देश का निर्माण कर सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने तथा पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह दिन पर्यावरण की रक्षा और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। यह पर्यावरण दिवस 5 जून 1972 से हर वर्ष मनाना घोषित किया गया, जिसके 2 वर्ष बाद 5 जून 1974 को प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। पर्यावरण के असंतुलित होने से हमारा पूरा वातावरण गंदा होता जा रहा है, जो हम सबके लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन जाता है। परंतु कुछ प्रयासों के द्वारा हम अपने अमूल्य वातावरण की रक्षा कर सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल दुनिया के प्रत्येक इंसान के मन में जागरूकता पैदा करता है। हमें सदैव ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही अधिक से अधिक पेड़ लगाकर इस दिन को सार्थक बनाना चाहिए। पर्यावरण दूषित होने से नुकसान बहुत हो रहा है। चिमनी कारखानों से निकलने वाले धुआं तथा प्लास्टिक के जलने से, वाहनों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषित होती जाती है, जिससे फेफड़ों की बीमारी और क्षय रोग जैसे अनेकों समस्याएं बढ़ रही हैं। नदियों और तालाबों में प्लास्टिक और रासायनिक पदार्थों के प्रभाव करने से जल दूषित हो रहा है, जिससे बहुत गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं। अधिक संख्या में पेड़ काटने से मिट्टी का कटाव हो रहा है, मिट्टी की उर्वरता घटती जा रही है। इसलिए इस पर्यावरण को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए हम संकल्प लें कि एक पौधा अवश्य लगाएंगे, पानी की बचत करेंगे, प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे, स्वच्छता बनाए रखेंगे, दूसरों को भी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करेंगे। जलवायु पर्यावरण

0: जलवायु परिवर्तन के प्रभाव आज स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। कभी अत्यधिक गर्मी, कभी सामान्य वर्षा, कभी सूखा तो कभी बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं लगातार बढ़ रही हैं। इस परिस्थितियों का सबसे अधिक प्रभाव किसानों, ग्रामीण समुदाय और गरीब वर्गों पर पड़ता जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस हमें यह सोचने का अवसर देता है कि हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या योगदान कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों या संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। हम अपने दैनिक जीवन में कुछ छोटे छोटे कदम उठाकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। श्रोताओं, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करें। विद्यालयों, महाविद्यालयों, स्वयं सहायता समूह, युवा संगठनों और सामाजिक संस्थाओं को भी पर्यावरण जागरूकता अभियान में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। बच्चों में पर्यावरण के प्रति और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना समय की मांग है। इसी में दो लाइन में और कहूँगी, बेहद मुश्किल हो गया पेड़ों का श्रृंगार, बेहद मुश्किल हो गया पेड़ों का श्रृंगार, प्रतिदिन हम सब कर रहे हैं वृक्षों का संहार। दूषित हो रहा पर्यावरण धरा हुई बीमार, दूषित हो रहा है पर्यावरण धरा हुई बीमार, बुखार इतना बढ़ रहा, कर लो कुछ उपचार। अगर हम सभी से सही से प्रयास नहीं करेंगे तो भविष्य में जीवन मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की रक्षा करे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करे। एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण ही हमें एक स्वस्थ जीवन दे सकता है।
1: इस कार्यक्रम के
2: सखियों, अभी आपने सुनी वार्ता पर्यावरण सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी। वार्ताकार थी आरती और अब हमारी जिम्मेदारी है आपके मनोरंजन की। तो उसके लिए आइए सुनवाते हैं आपको ये खूबसूरत सा गीत।

सखियों, अब वक्त है उस सवाल का जो हमने आज आपसे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पूछा था। बात शौक की चल रही थी तो हम जानना चाहते हैं कि क्या है हमारी सखियों या श्रोताओं की मी टाइम की सबसे पसंदीदा गतिविधि, और हमें जवाब भी मिला है लेकिन मात्र दो लोगों से। एक हमारे श्रोता हैं प्रवीण चौहान जी, जिन्होंने लिखा है कि चुपचाप शांत जगह आराम से बैठकर सोच विचार करना। जी हाँ, ये भी आपके मी टाइम की गतिविधि हो सकती है, क्योंकि शांत बैठकर जब हम बिल्कुल मनन करते हैं, किसी बात पे चिंतन करते हैं, तो भी हम अपने आप को काफ़ी हद तक रिलैक्स करते हैं। और एक और हमारी सखी हैं भावना जी, इन्होंने लिखा है बालकनी में बैठकर कॉफ़ी पीना और पेड़ों को निहारना, ये इनकी गतिविधि है। तो आपकी क्या है, ये सवाल हमने अपनी सभी सखियों और श्रोताओं से पूछा था लेकिन जवाब हमें सिर्फ दो से मिला है। बाकी और श्रोताओं ने अपने नाम भेजे हैं लेकिन ना तो फरमाइश है ना तो हमारा

जवाब है। तो हमें उम्मीद है कि हमारे अगले कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोता बढ़ चढ़ कर इस सेक्शन में हिस्सा लेंगे और मुझे सबके जवाब मिलेंगे। और अब जैसा कि आपसे वादा है किचन टिप्स का, तो आज हम एक किचन टिप जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो ये कि जब भी हम बचे हुए आटे को फ्रिज में रखते हैं और जब निकालते हैं तो देखते हैं उस पर एक हल्की सी काली लेयर पड़ जाती है। तो सखियों याद रखें, फ्रिज में आटा रखने से पहले उसमें थोड़ा सा घी लगा के रखें ताकि वो काला ना पड़े। और इसी तरह चावल बनाते समय पानी में कुछ बूंदे नींबू के रस की या फिर एक चम्मच घी डालने से आपके चावल चिपकते नहीं बल्कि बिल्कुल खिले खिले और सफ़ेद बनते हैं। और अब घड़ी इशारा कर रही है कि वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का। तो दीजिए अपनी रेडियो सखी शिप्रा श्रीवास्तव को अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी संसार। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बज चुके हैं। लीजिए, प्रस्तुत है युवाओं का एनर्जी से भरपूर कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी श्रोताओं का प्रोग्राम युवावाणी में। और आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी रेडियो दोस्त माधुरी। दोस्तों, आज का प्रोग्राम होगा आपकी पसंद का, तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी पसंद से ही। और दोस्तों, प्रोग्राम की ये पहली फरमाइश हमें मिली है मंसूरी रेडियो क्लब मुंगीसापुर से। हमारे श्रोता हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसी, पलक लुबना और यश मंसूरी। तो आइए सुनते हैं आप सभी दोस्तों की पसंद पर ये कार्यक्रम का पहला गीत।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: नमस्कार, मैं राजेंद्र प्रसन्ना। आज बहुत खुशी की बात है कि
5: दोस्तों, आज परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों द्वारा अपने परिवारों को भेजे जाने वाले प्रेषण के योगदान को सम्मानित करना है। साथियों, हम आपको बता दें कि विश्व भर में लगभग 200 मिलियन से भी अधिक प्रवासी श्रमिक अपने परिवारों को धन भेजते हैं और यही धनराशि उनके परिवारों की जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करती है। तो साथियों, ये जो दिवस है यह उन श्रमिकों को ही समर्पित है, उन लोगों को समर्पित है जो अपनी फैमिली की खुशहाली और बेहतर भविष्य के लिए इतनी मेहनत करते हैं और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उनके लिए घर भेजते हैं। तो ये थी बातें इस दिवस की और अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत, जिसे सुनना चाहा है राम सिंहपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से अशोक बब्बर, पवन, राजेश, अजय, राहुल और मनु ने।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
4: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
5: दोस्तों आइए अब बात करते हैं छात्रा सुधा से और जानते हैं उनके विचार।
6: आपका नाम?
7: सुधा देवी।
6: जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या करती हैं?
7: पढ़ाई कर रहे हैं।
6: जी, तो आप अभी पढ़ाई करती हैं, आपने बताया, तो कौन सा कोर्स आप कर रही हैं?
7: अभी MA कर रही हूँ।
6: जी, किस सब्जेक्ट से और कहाँ से?
7: हिंदी से, बरेली कॉलेज।
6: तो आप MA कर रही हैं, तो आगे आप क्या करना चाहती हैं?
7: आगे तो अभी देखो, नेट का पेपर देंगे, अगर वो क्लियर हो जाए तो PhD कर लेंगे।
6: जी अच्छा, तो आपको किस तरह की पढ़ाई ज्यादा पसंद है? आप ऑनलाइन पढ़ना पसंद करती हैं या ऑफलाइन?
7: ऑनलाइन, नोट्स बनाते हैं, टाइम टेबल बना हुआ है, उसके हिसाब से पढ़ते हैं डेली टाइम पे।
6: जी जी अच्छा, जो हमारी युवा छात्राएं हैं और अगर वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं तो पढ़ाई उनके लिए बहुत जरूरी है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
7: हाँ, सभी को मतलब पढ़ना बहुत जरूरी है, लड़कियों को खासकर जरूर पढ़ना चाहिए, घर पे नहीं बैठना चाहिए।
6: तो जैसे आप MA कर रही हैं और इसके अलावा आप क्या करती हैं, जैसे सिलाई है कढ़ाई है, क्या करती हैं?
7: सिलाई कर लेते हैं।
6: जी सिलाई आप कर लेती, कहाँ से सीखी आपने सिलाई?
7: मॉम से सीखी है।
6: जी ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी मॉम से सिलाई सीखी है, तो क्या क्या सिल लेती हैं आप?
7: सूट बना लेते हैं, फ्रॉक बना लेते हैं।
6: जी जी अच्छा, आप घूमने कहाँ कहाँ गई हैं?
7: अभी गए थे थोड़े दिन पहले पूरागिरी, नानक मट्टा, हाँ वहाँ घूम के आए।
6: जी जी, इसके अलावा आपकी हॉबीज क्या क्या है, आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है?
7: मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता है, खाना बनाना अच्छा लगता है, सिलाई करना अच्छा लगता है।
6: जी, और ऐसी कोई बात जो आप हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहें या कोई मैसेज उन्हें देना चाहें?
7: हाँ, अगर एक बार इंसान को

0: असफलता मिलती है तो उसे दोबारा अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, जिससे आगे वो उससे भी अच्छा बेहतर कर सके। एक
1: जी
0: बार हार के मतलब हार नहीं माननी चाहिए, इंसान को प्रयास करते रहना चाहिए, कभी ना कभी सफलता जरूर मिलेगी।
1: जी बहुत अच्छी बातें आपने की। आकाशवाणी के बरेली केंद्र से कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: अभी आपने सुनी है बातचीत, और अब बारी है आपकी पसंद के गीत की। और इस गीत को पसंद किया है आप सभी साथियों ने। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया ने। तो आप सभी दोस्तों की पसंद पर आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों अब बारी है आज के सवाल की। हमने आपसे पूछा था कि जादू घोड़ा खाने किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर है यूरेनियम भंडार के लिए। और सही जवाब देने वाले हमारे श्रोता हैं दिनेश कुमार, सुदर्शन शाह, प्रवीण चौहान, हीरामणि वर्मा, राजेश वर्मा, शेख लवक्ष और अनोखेलाल मौर्य। तो ये था सवाल और जवाब। और अब आपको फिर से लिए चलते हैं आपकी पसंद की ओर। और इस गीत को पसंद किया है ग्राम पोस्ट लहुआ जिला खीरी से विजयपाल यादव, शुभम यादव, शिखा यादव, ऋचा यादव, गुड़िया यादव और सुरभि यादव ने। इसी गीत को पसंद किया है कटरा चांदखा पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि मौर्य और मानवी मौर्य ने। तो आइए आप सभी दोस्तों की फरमाइश पर सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग।

दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम युववाणी माधुरी के साथ, सेगमेंट है आपकी पसंद और आपकी चॉइस पर भी। दोस्तों ये है प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। इस गीत को सुनना चाहा है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर यूपी से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, रितिक और बलवीर सिंह ने। तो आइए सुनते हैं और आनंद लेते हैं इस प्यारे से गीत का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 हो चुके हैं। अब किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: कार्यक्रम किसानवाड़ी सुनन बारे सब भैया बहनन को आपकी बहन पूनम
2: और आपके भैया कृष्णा की
1: राम राम। कैसे हाल चाल है कृष्णा भैया आपके?
2: पूनम बहन हमारे हाल चाल तो बढ़िया है, अपने सुनाओ कैसे हाल चाल आपके हैं और खेती बाड़ी कैसी चल रही है?
1: भैया सही चल रही है खेती बाड़ी, मक्का उक्का टूट रही है, भुंटा चब रहे हैं, काव तुम उनको ले आए थोड़े थैला भर के?
2: हाँ हाँ, वो थैला जो तुम्हारा रखो इसीलिए फूलों को दिखाई दे रहा हूँ, थैला नजर आ रहा है और जहाँ मैं जानकारियों है और वहाँ मैं मक्का के भुंटो लेके आई हूँ।
1: भैया और बाकी संग संग थोड़ी सी मूंगफली लाए हैं, हम तो खेत में उखर के आई गई बारी।
2: अरे तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन पूनम बहन देखो मूंगफली और जो भुंटा लेके आई हो वे तो हम बाद में ले जाएंगे जब जाएंगे तो, लेकिन जो जानकारी है कार्यक्रम में आज के तो बे जानकारी अपने भैया बहन तक पहुंचाई जाए, क्योंकि हमारे भैया बहन बिल्कुल अपने रेडियो सेट पर तैयार हैं, कुछ भैया कुट्टी काट रहे हैं, कोई भैया और काम में लगे हुए, लेकिन रेडियो पर उनको ध्यान है कि भैया आज पूनम बहन और कृष्णा भैया कार्यक्रम में नई नई जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आपको मालूम है कि कार्यक्रम के शुरू में अपने भैया बहनों के समक्ष लेके आते हैं एक सवाल।
1: हाँ तो पूछ लो भैया, कौन सा सवाल लेके आए हो आज?
2: आज अपने भैया बहनों के लिए सवाल लेके आए हैं, बाग लगाने को उचित समय का है? हाँ किसान भैया बहनों, सवाल एक बार फिर सुन लियो, बाग लगान को उचित समय का है? जा सवाल पर आप सबको करने हैं मंथन और जाको जवाब हम बतावेंगे कार्यक्रम के आखिर में, उस समय आप मिलान कर सकते हैं। पूनम बहन देखो अपने सब खेतीबाड़ी करते हैं।
1: हाँ भैया और तो करता
2: है, अपने जैसे सोचते हैं कि जो खेतीबाड़ी में फसल लगा रहे हैं वहां से हमको अच्छी पैदावार मिले,
1: सब सोचा था, क्योंकि अगर उनकी पैदावार अच्छी होगी भैया तभी तो उनकी जो घर को खर्चा है वो आसानी से चल पावे वो।
2: बिल्कुल, लेकिन ध्यान हमें ये भी रखने पड़ेगा कि जो हम पैदावार अपने खेतन से ले रहे हैं उतनों हम खेत के लिए दे नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए आपको मालूम है खेत बचाओ अभियान भी चलाओ गए है, मृदा स्वास्थ्य की रक्षा, रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को कम करने के लिए और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में चलाओ जा रहे हो, जो एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है।
1: हाँ भैया जब बात आपने सही की, आप जान बताइए रहे कि हमारी जो खेत की मिट्टी है अब उतनी सही ना रही है।
2: सही रही का ना है, देखो पहले फसल चक्र अपनाते देसी खाद देते हरी खाद देते खेतन में भी, अब हम देना रहे हैं और उत्पादन ले रहे हैं अंधाधुंध।
1: हाँ भैया आपने देखी है कि लगातार फसलें कही रही है, लगातार कोई

0: चीज लगा रहे हैं, कहो कोई चीज लगा रहे हैं, पर ना फसल को आराम मिल पा रहा है और ना बाहर पूरी तरीका से पोषक तत्व तो जो मिलने चाहिए भी मिल पा रहे हैं।
1: सही बात है। तो जब बात को हमें ध्यान रखने हैं, अपनी भूमि की सेहत को विशेष कर ध्यान रखने, और ध्यान तो पूनम बहन अब ये भी रखने हैं क्योंकि आज दिन है मंगलवार को, और आज अपने भैया बहनों को हम सुनवाते हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। तो आज हमारे बीच में जो हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर कौशलेंद्र प्रताप सिंह जी, जो कि

0: इंद्र प्रताप सिंह जी जो कि पशु चिकित्सा अधिकारी हैं देवरनिया बरेली में कार्यक्रम में उपस्थित हो चले हैं। तो सुनवा दें अपने भैया को। हेलो किसान।
1: हाँ भैया सुनवा दो।
0: किसान साथियों, आज के कार्यक्रम किसानवाणी में आज का जो कार्यक्रम है हेलो किसान, उसको विषय है सरकार के 12 वर्ष पशुओं में टीकाकरण समस्या और समाधान। समाधान करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में हैं डॉक्टर कौशलेंद्र प्रताप सिंह। आप पशु चिकित्सा अधिकारी हैं पशु चिकित्सालय देवरनिया बरेली में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद। और सभी पशुपालक एवं किसान भाइयों को सादर नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब, जैसे कि पशुओं में टीकाकरण कराना बहुत जरूरी होता है बरसात से पहले, तो टीकाकरण को क्या महत्व है
2: जी,
0: ये जानना चाहेंगे आपसे।
2: सबसे पहले पशुओं को टीकाकरण का महत्व, जो कि पशुपालक भाइयों के लिए बहुत ही लाभकारी प्रश्न है आपका। टीकाकरण घातक बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण किया जाता है। टीकाकरण से उस संबंधित घातक बीमारी की रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है, जिससे पशु उस बीमारी से बीमार नहीं होते हैं। अगर मान लीजिए उसकी इम्यूनिटी कमजोर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, अगर बीमार भी हो गए तो उस बीमारी से संबंधित बीमारी से पशु की मृत्यु नहीं होती है। तो घातक बीमारियों से बचाने का सर्वोत्तम उपाय टीकाकरण है
0: जी। डॉक्टर साहब, हम बातचीत अगले करेंगे, लेकिन अब हमारे साथ में एक हमारे किसान साथी जुड़ गए हैं, कॉल कर रहे हैं। आइए देखते हैं कौन किसान साथी हैं
2: जी।
0: हेलो,
3: मनोज कुमार सिंह कटेरिया बोल रहा हूँ
0: जी। हमारे साथ कार्यक्रम में है डॉक्टर कौशलेंद्र प्रताप सिंह, जो कि टीकाकरण के विषय में जो जानकारी आप तक पहुँचाई जा रही है। अगर कोई आपकी पशुओं से संबंधित कोई समस्या हो तो आप अपना सवाल रख सकते हैं
3: जी।
2: बताएं।
3: हाँ, तो अभी एक भैंस हमारे पास जैसे ब्याई हुई है, 10 दिन हो गए लगभग
2: जी,
3: तो उसके लग जाएगा।
2: अभी 10 दिन हुआ है, 5 दिन आप रुक जाइए। इस समय गर्मी का महीना है, जून का महीना चल रहा है। इस समय जो गलघोटू टीकाकरण का अभियान चल रहा है, जो राजकीय पशु चिकित्सालयों द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क घर घर जाकर के पशुपालकों को टीकाकरण कार्यकर्ता द्वारा वैक्सीनेटर द्वारा टीकाकरण किया जा रहा है। तो पशु आपका 10 दिन पहले ब्याया हुआ है, 15 दिन हो जाए, यानी बच्चा देने से 15 दिन हो जाए। 15 दिन तक क्या होता है कि पशु बच्चा देने के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी जो है कम होती है, इम्यूनिटी कम होती है। तो 15 दिन के बाद आप उसमें टीकाकरण करवा लीजिए, बच्चा देने से 15 दिन बाद, यानी अभी से 5 दिन बाद। और टीकाकरण गलघोटू का होना है, गलाघोटू का टीकाकरण, एचएस बीमारी जिसको कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, उसका टीकाकरण किया जाना है गर्मी के महीने में, चूंकि आने वाले बरसात में ये बीमारी होती है। तो अभी आप 5 दिन बाद उसमें टीकाकरण करवा सकते हैं।
3: अच्छा, एक है वो हमारे पास पड़ी है, वो 3 महीने की गाभिन है साहब
2: जी। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि गाभिन पशुओं में टीकाकरण किया जा सकता है या नहीं। तो 3 महीने का पशु गाभिन है, उसमें बिल्कुल टीकाकरण कराया जा सकता है। सिर्फ हम लोग जो पशु लास्ट के महीने में, यानी गाय है तो उसमें 9 महीना 10 दिन का जो जेस्टेशन यानी प्रेगनेंसी का समय होता है, गर्भकाल होता है 9 महीना 10 दिन, और भैंस में होता है 10 महीना 10 दिन। तो अंतिम महीने में अवॉइड करना चाहिए, टीका नुकसान नहीं करता है, लेकिन अंतिम महीने में अवॉइड करना चाहिए, बच्चा देने के 15 दिन बाद करा लेना चाहिए। गर्भकाल में पशुओं को टीकाकरण करने में कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आप 3 महीने की गाभिन है उसमें आप टीकाकरण करवा सकते हैं।
3: अच्छा सर, ये बताइए ये टीके का जो असर है वो कितने दिनों तक रहता है?
2: अब ये बहुत आपका समसामयिक प्रश्न है और बहुत अच्छा सवाल है। हमारा विभाग जो पशुओं में टीकाकरण अभियान जो चलाया जाता है, अलग अलग बीमारियों में टीकाकरण किया जाता है, जैसे आपकी भैंस या गाय जो पशु हैं, इन पशुओं में 3 तरीके का टीकाकरण हम लोग करवाते हैं। वर्तमान में एचएस का टीकाकरण चल रहा है, जो एक बार टीका लगने के बाद इस बीमारी की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो काम करने की बात आप कह रहे हैं वो 1 वर्ष के लिए होती है। साथ ही हम लोग टीकाकरण करते हैं खुरपका मुंहपका का। खुरपका मुंहपका साल में 2 बार उस बीमारी का टीकाकरण कराया जाता है, साल में 2 बार लगाया जाता है। 2 बार लगाने का मतलब है कि एक बार टीका लगने के बाद खुरपका मुंहपका बीमारी में जो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो 6 महीने की होती है, और 6 महीने बाद दोबारा लगाया जाता है। इसी तरीके से हम एक टीका और लगाते हैं जिसको हम ब्लैक क्वार्टर लंगड़िया बुखार कहते हैं, इसमें साल में 1 बार टीका लगता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता 1 वर्ष की होती है। और ध्यान रखना है आपको कि जो पशु हमारा बछड़ा बछिया 4 महीने से ऊपर का हो गया है, उसमें दोनों गलघोटू और एचएस यानी खुरपका मुंहपका, इन दोनों बीमारियों का टीकाकरण जब अभियान चले तो उसमें टीकाकरण कराना अनिवार्य होता है। यानी 4 महीने के ऊपर के बछड़ों को, बच्चियों को, पड्डे पड़ियों को टीकाकरण किया जा सकता है। और जैसे हमारे बकरी पालक पशुपालक भाई हैं बकरी पालन वाले, उसमें पीपीआर का टीका लग

0: बताता है पीपीआर का टीका 3 साल तक उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो बकरियों में मृत्यु दर बहुत होती है इस बीमारी से, जिसमें फेफड़े में इन्फेक्शन होता है यानी निमोनिया हो जाती है, साथ में डायरिया हो जाती है। तो इस बीमारियों से बचने के लिए पीपीआर का जो टीकाकरण होता है वो एक बार लग गया तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता 3 साल तक बनी रहती है।
1: तो मनोज कुमार जी, हम समझते हैं कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो गया होगा और आपने कई प्रश्नों के माध्यम से समस्या का समाधान चाहा है। जो हमारे किसान साथी और कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनकी भी समस्या अगर इस प्रकार की कोई होगी तो उनका भी समस्या का समाधान हो गया होगा। आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपको भी जानकारी देने का बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए साहब
1: जी।
2: ठीक है, नमस्कार।
1: नमस्कार डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे पशुओं में टीकाकरण की। तो जो आपने अभी एक बात कही थी कि सरकार द्वारा टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है
0: जी,
1: तो ये टीकाकरण अभियान का क्या उद्देश्य है?
0: सरकार द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है मूल रूप से वर्तमान समय में गर्मी का महीना चल रहा है तो हम इस समय गलघोटू का टीकाकरण करवाते हैं। गलघोटू एक संक्रामक घातक बीमारी है जिसमें पशुओं के गले में सूजन आ जाती है, पशु निमोनिया से ग्रसित होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, सांस नली में सिलिस्मा भर जाता है और घर घर की आवाज आती है, तेज बुखार होता है, खाना बंद कर देता है और पशु की मृत्यु हो जाती है। तो इस बीमारी से बचने के लिए सबसे पहले सरकार द्वारा माह जून में गलघोटू टीकाकरण निःशुल्क पशु चिकित्सालयों द्वारा पशुपालक के दरवाजे पर कराया जा रहा है, जिससे इस बीमारी से पशुओं को हानि न हो। पशुओं के खुर और मुंह में छाले पड़ जाते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, खुर पक जाते हैं, गाभिन है तो बच्चा फेंक सकती है, तेज बुखार होता है। ये जो खुर पका मुंह पका बीमारी है ये विषाणु जनित बीमारी होती है
1: जी।
0: एक और बताना चाहूंगा, अभी भारत सरकार ने नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाया है जिसमें एक बीमारी और शामिल कर लिया है जिसको कहते हैं ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें सामूहिक गर्भपात पशुओं गाभिन पशुओं में एडवांस यानी 6, 7, 8 महीने में 9 महीने में एडवांस प्रेगनेंसी में सामूहिक गर्भपात हो जाता है। इस बीमारी से बचने के लिए इसमें जो टीका लगता है वो सिर्फ और सिर्फ जो बढ़िया होती है उनको 6 से 8 महीने में एक बार टीकाकरण यानी 8 महीने में जीवन पर्यंत टीका काम करता है, एक बार टीकाकरण किया जाता है
1: जी।
0: जिसको हम काफुट वैक्सीनेशन के नाम से जानते हैं, फीमेल कॉप में लगता है
1: जी।
0: वो सर बढ़िया।
1: तो जो टीकाकरण अभियान की बात चल रही है डॉक्टर साहब, तो इसमें जो टीकाकरण करने के लिए जो पशु चिकित्सालय से जो कर्मचारी हैं वो घर घर जाते हैं
0: जी, घर घर जाकर के अभियान चला करके टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है
1: जी। डॉक्टर साहब हम बात करेंगे लेकिन हमारे एक कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं जी। कौन कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम और पता बताइए।
3: हम जिला बदायूं ग्राम दूनेनगर के ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया बोल रहे हैं सर
1: जी। आज समस्या का समाधान करने के लिए हमारे कार्यक्रम में हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर कौशलेंद्र प्रताप सिंह। तो क्या जानना चाहते हैं आप आज?
3: हम चाहते हैं कि पशुओं के टीकाकरण के बारे में जानकारी चाहते हैं। जैसे हमारे पास एक भैंस है वो 8 महीने की गाभिन है
0: जी,
3: तो उसके टीकाकरण कराने से कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा?
0: बहुत अच्छा आपका प्रश्न है कि भैंस 8 महीने की गाभिन है, गलघोटू का टीकाकरण अभी अभियान चला करके लगाया जा रहा है। बिल्कुल गाभिन पशुओं में टीकाकरण का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए टीकाकरण चलाया जाता है। और गाभिन पशु दुधारू पशु इसमें टीकाकरण कराना अनिवार्य है, कोई विपरीत प्रभाव नहीं है। और इसमें पशुपालन विभाग पशु चिकित्सक की टीम उनके द्वारा निर्धारित व्यक्ति जो है टीकाकरण अभियान जो घर घर पे हो रहा है, आप टीकाकरण अपने पशुओं का जरूर करवा लिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है
1: जी। और कुछ जानना चाहते हैं?
3: बस यही जानना चाहते हैं
1: जी। आपने कार्यक्रम में कॉल की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी धन्यवाद सर, आपने टीकाकरण के बारे में उचित जानकारी दी
1: जी। तो डॉक्टर साहब हमारी बात चल रही थी पशुओं के टीकाकरण के बारे में, तो चूंकि अब हल्के हल्के अगले आने वाले समय बरसात का मौसम आने वाला है, तो आप बता रहे थे कि जो पशुओं में जैसे खुरपका है, गलघोटू है और ये टीके लगाए जाते हैं, हमारे किसान साथी जो फोन कर रहे हैं वो भी इस बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं और जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो भी ये चाहते होंगे कि पूरी विस्तार से जानकारी दी जाए। तो जो टीका लगाए जाते हैं
0: जी,
1: पहली बात तो ये अभियान के तहत घर घर जाके लगाए जा रहे हैं, अगर किसी कारणवश कोई पशु छूट जाता है, जैसे कोई टीकाकरण के लिए कर्मचारी जाते हैं और कोई पशुओं का मालिक घर पे नहीं होता है, तो क्या उसके लिए क्या व्यवस्था होगी?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है कि अगर कोई पशु रह जाता है तो आप नजदीकी पशु चिकित्सालय पे वो व्यक्ति संपर्क कर ले और पशु को टीकाकरण भेज करके कर्मचारी निःशुल्क टीकाकरण दोबारा करा दिया जाएगा। मान लीजिए कोई घर पे नहीं है, कोई पशु रह गया है, या हम दोबारा भी अभियान के तहत करते क्या है कि जैसे हम लोगों ने टीम भेजी गाँव में, जब टीकाकरण की टीम जाती है, वैक्सीनेटर जाते हैं, टीकाकरण कार्यकर्ता जाते हैं, तो कुछ पशु ऐसे होते हैं जो 4 महीने के नीचे हैं
1: जी,
0: कुछ पशु ऐसे होते हैं कि जो एडवांस प्रेगनेंसी में है, तो उनको छोड़ दिया जाता है और दोबारा टीम भेज करके महीना 15 दिन बाद दोबारा टीम भेज दी जाती है और दोबारा टीकाकरण करा दिया जाता है। उसके बाद भी अगर रह जाता है तो राजकीय पशु चिकित्सालय पर संपर्क कर लें, निःशुल्क टीकाकरण दोबारा फिर

0: से करा दिया जाएगा।
1: जी बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ चुके हैं।
0: जी
2: हेलो
1: जी, कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं?
2: हम लाल मोहम्मद अंसारी, ग्राम करेली, पुरानी मस्जिद परेली से बोल रहे हैं।
1: जी लाल मोहम्मद जी, कैसे हैं आप?
2: बहुत बढ़िया है सर, आप बताएं आप कैसे हैं?
1: बस सब बढ़िया है, पूरी आकाशवाणी बरेली की टीम एकदम बढ़िया है। और देखिए आज हमारे साथ हमारे आज के मेहमान जो हैं डॉक्टर कौशलेंद्र प्रताप सिंह जी कार्यक्रम में उपस्थित हैं समस्या का समाधान करने के लिए। अगर पशुओं से संबंधित कोई समस्या हो तो आप अपना सवाल रख सकते हैं।
2: जी हाँ सर, मैं डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहूंगा, जैसे कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, कुछ दिनों बाद बारिश होगी,
0: जी
2: ऐसे मौसम में पशुओं में खुरपका और मुंहपका की बीमारी आम हो जाती है, तो उसके बचाव के लिए हम क्या करें, कोई उपाय हो तो बताएं सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। इस समय बरसात के मौसम में ज्यादातर जो आप कह रहे हैं खुरपका मुंहपका बीमारी भी होती है, साथ में इससे पहले गलघोंटू, जो कि हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी यानी जो जीवाणु जनित बीमारी होती है, गलघोंटू जिसको घुरका रोग कहते हैं, ये बीमारी ज्यादा होती है बरसात महीने में, क्योंकि ये बीमारी हाई टेम्परेचर बहुत गर्मी और नमी जब ज्यादा होती तो बीमारी होती है। अभियान चला करके इसका टीकाकरण कराया जा रहा है अपने दुधारू एवं गाभिन पशुओं में इस बीमारी का, पहले गलघोंटू का टीकाकरण करवा लीजिए। आने वाले सितंबर के महीने में, चूंकि जो खुरपका मुंहपका बीमारी होती है ज्यादातर जाड़ों के महीने में होती, बहुत तेजी से फैलती है, विषाणु जनित बीमारी होती है, तो इसका अभियान हम लोग सितंबर के महीने में चलाते हैं। सितंबर के महीने में जरूर अपने पशुओं को इस बीमारी से बचने के लिए, यानी खुरपका मुंहपका बीमारी से बचने के लिए, उसमें भी टीकाकरण अभियान दरवाजे पे जाकर के पशुपालन विभाग द्वारा कराया जाता है, बिल्कुल करवाइएगा। अभी आप गलघोंटू का टीकाकरण करवा सकते हैं, गलघोंटू की वैक्सीन जनपद में हर पशु चिकित्सालय पर उपलब्ध है, आप टीकाकरण उसका करवा लीजिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद
1: जी। डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि जो टीकाकरण की जो टीम है वो घर घर जाती है और जो पशु छूट जाते हैं उसके बाद आप बता रहे हैं कि 15-20 दिन बाद फिर
0: दोबारा,
1: और किसी कारणवश अगर इसके बावजूद भी कोई पशु छूट जाता है तो आप जो निकटतम जो पशु चिकित्सालय है वहाँ संपर्क
0: कर लें।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जब तो ये खुरपका मुंहपका की बात है, लेकिन जो बरसात का मौसम होता है उसमें और कौन कौन सी समस्याएं पशुओं में आ जाती है जिसके लिए टीकाकरण बहुत जरूरी है?
0: जी जी बिल्कुल, टीकाकरण तो हम लोग मुख्य रूप से गलघोंटू का लगाते हैं और बरसात का मौसम आने वाला है, पशुओं को 2-3 चीजों का बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले टीकाकरण के पहले राजकीय पशु चिकित्सालयों पर कीड़े की दवाइयां उपलब्ध हैं
1: जी,
0: तो पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करके पशु चिकित्सालय पर जाकर के अपने पशुओं को डिवर्मिंग जरूर यानी कीड़े की दवाई दे दें। पशुओं के पेट में कीड़ा होगा तो पशु का पेट फूलेगा, गोबर पतला करेगी और पशु अनेक तरीके की बीमारियां वो उत्पन्न कर सकती है, तो कोशिश करिए बरसात के पहले यानी गर्मी का महीना चल रहा है इस समय पशु को कीड़े की दवाई देना बहुत जरूरी है। जैसे किलनियों की समस्या इस समय बहुत ज्यादा हो गई
1: जी, जी
0: तो पशुओं को किलनी की दवाइयां लगानी भी है, खिलानी भी है, और जहां पे आप पशुशाला जो आपकी है वहां पे उसको स्प्रे भी करना है, क्योंकि किलनियां जो होती दरारों में रहती हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने की बात है, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पशुओं को सुपाच्य भोजन देने की आवश्यकता है। वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान समय में लू के थपेड़े चल रहे हैं
1: जी, जी
0: अभी बहुत तेज गर्मी है, कोशिश करें पशुपालक भाई इस मौसम में, गर्मी का मौसम चल रहा है, एक तो आपको गलघोंटू का टीकाकरण करवाना है, पशुओं को टीकाकरण से 1 हफ्ते पहले कीड़े की दवाई देनी है, और साथ में कोशिश ये करिए अपने पशुओं को सुबह 9 बजे के बाद जब जैसे जैसे धूप बढ़ती जाती है और शाम 5 बजे तक पशुओं को छाया में ही रखें और दिन में 2-3 बार साफ ताजा पानी पिलाएं।
1: जी डॉक्टर साहब हम बात करेंगे और, लेकिन एक कॉलर हमारे एक जो किसान साथी हैं वो फोन के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए जुड़ चुके हैं। जी हेलो, किसान से बोल रहे हैं, कौन कहाँ से बोल रहे हैं भैया, नाम पता बताइए।
2: हम से बोल रहे हैं मध्यानगला।
1: जी नाम आपका क्या है भैया?
2: संत स्वरूप नाम हमारा।
1: जी तो आज देखिए हमारे कार्यक्रम में जो डॉक्टर साहब आए हुए हैं कौशलेंद्र प्रताप सिंह जी और जो समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, अगर पशुओं से संबंधित कोई आपकी समस्या है तो अपनी समस्या डॉक्टर साहब के समक्ष रख सकते हैं।
0: जी
2: समस्या है,
0: हाँ बताएं जी।
2: हाँ साहब, पशुओं में
0: टीका ना लगने से परेशानी ये होगी, देखिए जो घातक बीमारियां हैं, जिस बीमारियों में मृत्यु दर अधिक होती है, जिसका इलाज बहुत खर्चीला होता है और जिसमें मृत्यु दर अधिक होती है, उन्हीं बीमारियों का टीकाकरण जैसे गलघोंटू का टीकाकरण, खुरपका मुंहपका का टीकाकरण कराया जाता है। इस बीमारी में होता क्या है कि पशु की मृत्यु की संख्या बहुत अधिक होती है, दूध चला जाता है, अगर आप अपने पशुओं का टीकाकरण नहीं कराएंगे बीमारी हो जाएगी, तो पशु का एक तो ट्रीटमेंट बहुत महंगा पड़ेगा, जाएगा, दूसरा बीमारी घातक होती है। और अगर मान लीजिए पशु आपका बच भी गया, गाभिन पशु बच्चा फेंक सकते हैं, एबॉर्शन हो सकता है, साथ ही दुधारू पशु हैं उनमें दूध काफी कम हो जाएगा, एक बार अगर बीमारी हो जाएगी शरीर कमजोर हो जाएगा। तो

0: बेहतर है, बीमारी से बचने के लिए टीकाकरण ही सबसे उत्तम तरीका है।
1: और कुछ जानना चाहते हैं?
2: पशुओं में जैसे टीका लगाने से कोई नुकसान तो नहीं?
0: नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होगा। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ पशुपालक भाइयों के मन में आता है कि पशु हमारा दूध तो नहीं कम कर देगा, पशु बच्चा तो नहीं फेंक देगा, इस तरीके से कोई समस्या नहीं आती है। आप पशुओं का टीकाकरण कराइए, पशु को एक दो दिन तक सुपाच्य भोजन दीजिए। कोशिश ये करिएगा आप लोग की दिन में दोपहर के समय नहीं नहलाना है, दिन में दो बार नहलाइए लेकिन सुबह शाम नहलाइए, और कोई नुकसान नहीं होता है, कोई समस्या नहीं है।
1: जी, आपने कॉल समाधान पाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी पशु प्रबंधन के बारे में कि लू चल रही है और गर्मी का मौसम है, तो ऐसे में जो सुपाच्य भोजन की बात कर रहे हैं, तो भोजन की अगर हम बात करें तो क्या क्या हमारे किसान साथी सुपाच्य भोजन देने के लिए ध्यान रखें?
0: जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका कि लू चल रहा है, कोशिश ये करें पशुओं को ज्यादा से ज्यादा हरा चारा दें। हरा चारा जैसे मक्का अवेलेबल उपलब्ध है इस समय, मक्का दे सकते हैं। और हरा चारा देने से क्या है कि उसमें 70-80% उसमें जो नमी होती है यानी पानी होता है, साथ में अगर भूसा देना है पशुओं को तो भूसा पानी में भिगो करके दें जिससे उसमें नमी बनी रहे। और साथ ही पशुओं में गुड़ अगर मिल जाए, थोड़ा सा गुड़ दें 30 ग्राम, और नमक 30-50 ग्राम, आप 30 ग्राम नमक अगर कोशिश करिए गर्मी के महीने में 15 दिन जो पैकेट वाले नमक होते हैं यानी आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन एक ऐसा तत्व है जो पशुओं को बेसल मेटाबॉलिक रेट को इसको कंट्रोल करता है। और हरा चारा दोनों मिला करके दें, 3/4 भूसा 1/4 हरा चारा, कभी कभी आप उसको 2/3 तक ले जा सकते हैं, और जो भूसा दें उसको पानी में भिगो करके दें।
1: जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ थे और जुड़ चुके हैं।
3: हेलो
1: जी, कौन किसान भाई बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम और पता बताओ।
3: हम बंटू भाई प्रजापति बोल रहे हैं, गांव पतरा चला।
1: जी बंटू भाई, कैसे हैं आप?
3: बढ़िया हैं, आप सुनाइए कैसे हो?
1: बस सब बढ़िया हैं। और हम आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर कौशलेंद्र प्रताप सिंह, और जो पशुओं के विषय में जानकारी दे रहे हैं टीकाकरण के विषय में। अगर आपकी पशुओं से संबंधित कोई समस्या हो, टीकाकरण के बारे में कुछ आपका सवाल हो, तो आप डॉक्टर साहब के समक्ष जो है अपनी समस्या रख सकते हैं।
0: बताइए। जी जी
3: डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, बताएं जी।
3: रंजे कर रहे हैं, ये पशुओं में मतलब ये टीका लगते हैं तो ये भैंस जो बरवा धान है उसमें भी लग सकते हैं क्या?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। मान लीजिए जैसे आपने आज गर्भधारण करवाया है पशु को, तो कोशिश करिए 1 हफ्ते तक उसमें टीकाकरण मत करवाइए। 1 हफ्ता आप उसका बचाव कर लीजिए, लेकिन 1 हफ्ते के बाद पशुओं में टीकाकरण कराना जरूरी है। गाभिन पशु को, गर्भित पशु को टीकाकरण किया जा सकता है, और उसको पूरे गर्भकाल में भी टीकाकरण किया जा सकता है। बस एक चीज की सावधानी आपको रखनी है कि पशु जो आपका अगर गर्भकाल के अंतिम महीने में है, नुकसान नहीं करेगा टीका, लेकिन अगले महीने करा लीजिए, बच्चा देने वाला पशु है तो उसको अगले महीने करा सकते हैं। गाभिन पशुओं में टीकाकरण कराया जा सकता है, टीके से किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं होगा। वर्तमान में HS बीमारी का यानी गलघोटू बीमारी का टीकाकरण किया जा रहा है, बिल्कुल आप करा सकते हैं। जिस दिन आप कृत्रिम गर्भाधान करवाए हैं उससे लेकर के 1 हफ्ते तक नुकसान नहीं है, लेकिन कोशिश करिए, चूंकि पशुओं में इम्यूनिटी डेवलप होती है उस संबंधित बीमारी से, रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है, तो कोशिश करिए 1 हफ्ते तक आप बच लीजिए।
3: और डॉक्टर साहब ये जानकारी लेना चाह रहे हैं, जैसे हमने गर्भाधान करवाया वो तो 1 हफ्ते बाद आपने बता दिया करवा
0: दीजिए, ठीक
3: है? अब जब जैसे हमारी भैंस जो मतलब 8 महीने की हो चुकी है या 7 महीने की हो चुकी है, टीका हम उसको लगवा सकते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल लगवाइए, बिल्कुल लगवाइएगा। खान पान का उचित प्रबंधन रखिएगा, टीकाकरण से पशु को कोई समस्या नहीं है। गाभिन पशुओं में टीकाकरण कराया जाता है, गाभिन एवं दुधारू दोनों पशुओं में टीकाकरण से कोई समस्या नहीं है।
3: हमारे गाँव के लोग मतलब गाभिन के लगवाते नहीं थे, तो हमने
0: नहीं, वो इसीलिए ये कार्यक्रम जो आज आकाशवाणी द्वारा चलाया जा रहा है, इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए, भ्रम है, भ्रांतियां हैं, इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए कार्यक्रम लाया जा रहा है। और लोगों को भी जागरूक करिए, टीकाकरण गाभिन पशुओं को भी लगाया जा रहा है, और टीके की गुणवत्ता इतनी अच्छी होती है किसी भी गाभिन पशु को कोई नुकसान नहीं होता है।
3: ठीक है डॉक्टर साहब, नमस्कार, जानकारी देने के लिए
0: नमस्कार।
1: तो डॉक्टर साहब देखिए, बंटू सिंह भी यही भ्रांति में थे कि गाभिन पशु को टीका लगवाना चाहिए नहीं चाहिए, उसका समस्या का समाधान आपने कर दिया है। और हमारे बहुत से किसान साथियों के बीच में भी ये समस्या रहती है, भ्रांति रहती है।
0: जी जी,
1: तो हम समझते हैं कि अगर हमारे कार्यक्रम को ध्यान पूर्वक सुना होगा उन्होंने, तो उनकी ये भ्रांति दूर हो गई होगी। डॉक्टर साहब, चूंकि अब कार्यक्रम का समय भी हल्के हल्के समाप्ति की ओर है, तो चलते चलते हमारे किसान साथियों को लिए क्या संदेश के रूप में कहना चाहेंगे?
0: बिल्कुल, मैं सिर्फ संक्षेप में 5 प्रमुख बातों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। वर्तमान में गर्मी का मौसम है, अपने पशुओं को लू से बचाएं, ताजा पानी पिलाएं, साफ पानी पिलाएं, दिन में खान पान पे ध्यान दें, दूसरा गलघोटू का टीकाकरण करवाएं। और जो अभी ज्यादातर पशुपालकों के मन में जो भ्रांतियां हैं कि टीकाकरण से दूध खत्म हो जाता है या

0: गाभिन पशुओं को नुकसान होता है। तो ना तो बच्चे को ना तो पशु को, ना प्रेग्नेंट यानी गाभिन पशुओं में भी टीकाकरण कराएं, साथ ही दुधारू पशुओं में भी टीकाकरण कराएं। और एक विशेष रूप से ध्यान दें, जो बछड़ा बछिया पैदा होता है 4 महीने का अगर हो गया है
1: जी
0: तो टीकाकरण जरूर कराएं उसमें भी।
1: डॉक्टर कौशलेंद्र प्रताप सिंह जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने बड़े ही विस्तार से हमारे जो किसान साथी हैं उनका समाधान किया आपका कार्यक्रम में, और समस्या का समाधान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
0: धन्यवाद।
2: भैया बहनों, अभी आप सुन रहे थे हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम, विषय हो पशुओं का टीकाकरण समस्या एवं समाधान, और आज के विशेषज्ञ थे डॉक्टर कौशलेंद्र प्रताप सिंह। तो आप सबने देखी कि हमारे जो भैया बहन ने फोन करो हो बिन्ने कितने अच्छे तरीका से उनकी जो समस्या ही बाको समाधान पाओ हो। तो भैया बहनों, आप भी कार्यक्रम में फोन करके अपनी जो समस्या है बाको समाधान पा सकते हैं।
1: बिल्कुल पूनम बहन, और जो अगर ऐसी कोई और हमारे जो किसान भैया बहन उनकी भी ये समस्या हुई, पशुपालक भाई हैं, तो अगर कार्यक्रम उन्हें ध्यान पूर्वक सुनो हो तो उनकी भी समस्या दूर भई हुई। और जो किसान भैया बहन सोचते कि हम फोन करके कॉल कर लेते तो हम उनको बता दें कि हर मंगलवार को कार्यक्रम जाता है हेलो किसान, जिसको नंबर है 2517200 और जो बरेली कोड है 0581, जिसमें आप दिन में 12:30 बजे फ़ोन करके अपनी समस्या को समाधान पा सकते हैं। और हर मंगलवार को अलग अलग जो एक्सपर्ट विशेषज्ञ होते हैं वो कार्यक्रम में शामिल होते हैं, जिसकी जानकारी हम सोशल मीडिया के माध्यम से पहले से ही आप तक पहुंचा देते हैं। और पूनम मैम, देखो आपको मालूम हुई कि कार्यक्रम के शुरू में हमने एक सवाल अपने भैया बहनों के समक्ष रखो, तो सवाल को जवाब अपने भैया बहनों को बताएंगे, लेकिन बात से पहले हम अपने भैया बहनों को बता दें कल के मौसम के बारे में कि कल को मौसम कैसे रहने की संभावना है। तो कल के मौसम के बारे में पूर्व अनुमान है कि कल बादल साफ रहने की संभावना है। कल अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की उम्मीद जताई गई है। वहीं कल 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा से हवा चलने को अनुमान भी लगाया गया है। वहीं कल दिन में आर्द्रता 46% रहने की उम्मीद जताई गई है। तो जो तो हो कल को मौसम को हाल। और पूनम बहन, अब बारी है उस सवाल के जवाब की जो कि कार्यक्रम के शुरू में अपने भैया बहनों के समक्ष रखो हो।
2: हाँ, तो भैया आज को सवाल हो, बाग लगाने का उचित समय क्या है? तो जब सवाल को हमारे भैया बहनों ने जवाब जरूर ढूंढ कर रख लो हो, आप भी जा उनके जवाब से मिलान करवा दो।
1: बिल्कुल, देखो जो बाग लगाने को उचित जो समय है वो है तो वो है जुलाई और अगस्त को माह। और जो हमारे किसान भैया बहन सोच रहे हैं कि हम अपने खेत में आम के बाग लगा लेते, अमरूद लगा लेते, नींबू करौंदा लगा लेते, तो बहुत ही बढ़िया समय जो अगले आ रहे हो बहुत बढ़िया समय है, बरसात को समय होते हैं। लेकिन बाकी लिए ये है पूनम बहन की बाग की तैयारी हम पहले से ही खोद कर लें, जो गड्ढा है उनको खोद लें, उनमें देसी खाद को अच्छी तरीके से खाँप कर भाव में मिला दें, उसकी मिट्टी को निकाल कर, तो ये तैयारी हमें पहले करनी पड़ती है। और जो कौन सा पौधा लेकर आने, किस तरीके का कलमी लाने हैं या कौन सा लाने हैं, तो अच्छी नर्सरी से उसको चयन भी हमको पहले ही कर लेना चाहिए।
2: हाँ भैया, और इनसे अगर भैया बहन हमारे जो बाग लगावेंगे तो उनसे फायदा भी बहुत होता है।
1: फायदा की बात कर रही हो, फल भी लेंगे और जो छाई तो मिलता है, और बाकी हम जो शुद्ध वातावरण में अपनी सांस लेने में भी सफल हो पाते हैं। फिलहाल पूनम बहन, अगर बात करें आज की नसीहत की, तो कार्यक्रम से हम सबको क्या नसीहत मिली?
2: भैया बहनों, आज के कार्यक्रम से जय नसीहत मिली कि खेती बाड़ी के साथ साथ अपने पशुओं का विशेष ध्यान रखें और उनकी देखभाल अच्छे से करें।
1: बिल्कुल, और बात ये सही है कि जो खेती है और पशुपालन है ये एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। खेती के बिना पशु अधूरे हैं और पशुओं के बिना हमारी खेती अधूरी
2: है।
1: हाँ
2: भैया,
1: तो बहुत जरूरी है कि खेती बाड़ी के साथ साथ हम पशु पालें और उनकी देखरेख सही तरीके से करें। और फिलहाल पूनम बहन, देखो अब जो है कार्यक्रम किसान वाड़ी को समय जो है वो हल्के हल्के समाप्ति की ओर, लेकिन चलते चलते हम अपने भैया बहनों जय कहेंगे कि आप सब स्वस्थ रहें और जो खेती बाड़ी काम उनको समय से करते रहें, ताकि हम अपनी फसलों से अच्छे उत्पादन अच्छी पैदावार लेने में सफल हो सकें। फिलहाल अगले कार्यक्रम में नई नई जानकारियों के साथ हम दोनों बहन भैया फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कार्यक्रम किसान वाड़ी से हम दोनों को देव अनुमति। भैया बहनों,
2: राम राम, राम।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के पूरे 7:23 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: कार्यक्रम ग्राम जगत में एक बार फिर सब भैया बहनों को बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत स्वागत है हमारे सब भैया बहनों को। और पूनम बहन देखो अपने गांव में रहते हैं, गांव में रहकर जो खेती बाड़ी काम है और जो खेती जुड़े व्यवसाय है उनको करते हैं, लेकिन काम कोई होए पूनम बहन, जब हमारा शरीर सही होए वो तभी हम कोई काम सही तरीका से कर पाओगे।
0: हाँ बिल्कुल सही कही भैया, जब आता हूँ आपने, लेकिन एक बात बताओ, शरीर सही की बात कर रहे हो, हमारे भैया बहन समझदार इतने हैं कि तो ध्यान रखते हैं अपनों की भी ठीक ठाक रहता है और खेती बाड़ी के काम करते रहता है।
1: अब ठीक ठाक न रहेंगे तो देखो जो काम धंधो वो कैसे हो वो, इसीलिए तो कहते हैं कि सेहत को हमें अपने ध्यान रखना चाहिए। वैसे गाँव में तो अपने देखो भैंसियाँ पल रही है, दूध अपने खूब पेल कर खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, घी अपने है ना,
0: और शुद्ध हो।
1: और अब तो पूनम बहन आम चलने लग रहे हैं, आम अपने पराठे बनाए नमकीन रोटी पई और अपने आम चूस ले नमकीन रोटी से और पेट भर के खूब अपने खाए ली रोटी।
0: हाँ भैया,
1: और दो गिलास पानी पियो सोई काम टन हो जाता।
0: हाँ
1: है ना, तो सेहत को तो ध्यान रखने पड़ेगा, क्योंकि सेहत जब हमारी सही होगी तभी हम अपने काम कोई भी सही वो सही तरीका से कर पाएंगे।
2: करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य,
3: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
1: और पूनम महेंद्र को बात अपने स्वास्थ्य की कर रहे हैं, सेहत की कर रहे हैं, तो सेहत के लिए बहुत जरूरी है कि जो हम खेती बाड़ी कर रहे हैं उसको भी हम जैविक पद्धति से कर रहे हैं, जैविक विधि से कर रहे हैं, क्योंकि जब हम शुद्ध खाएंगे तभी हम शुद्ध रह पाएंगे।
0: हाँ भैया बिल्कुल है ना।
1: तो हम तो ये देख रहे हैं कि आपने जो बातचीत करी है क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता जैविक खेती के संबंध में, जो कृषक हैं संत स्वरूप जी, उनसे क्या क्या बातें करी हैं आपने, जो जानकारी जुटाई अपने भैया बहनों तक पहुँचा दीजिए।
0: हाँ हाँ भैया जरूर पहुँचा दो।
1: तो आओ भैया बहनों सुना जे क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता।
0: आज क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता के अंतर्गत हमारी बात हुई है, जानते हैं उनसे ही उनका नाम। आपका नाम?
4: संत स्वरूप।
0: आप कौन से गांव में रहते?
4: मटिया नंगला हरी बरेली।
0: काफी सालन से खेती बाड़ी कर रहे हो?
4: हाँ काफी सालन से कर रहे हैं।
0: कितनी साल है की हुई?
4: 40 साल करती खेती।
0: अच्छा, तब तो आपको खूब अच्छा अनुभव हो है खेती में।
4: अनुभव है खूब।
0: कौन कौन सी फसलें मुख्य रूप से आप उगाते हो?
4: अब जो है इस समय पे मूंगफली तैयार कर रहे हैं, मूंगफली खड़ी है उसको खोद के और खनवा लेंगे।
0: अच्छा,
4: खनवा के बकाया जो रह गई है खेती खाली हो गई। अच्छा। फिर हम उर्द बोएंगे।
0: लेकिन जब बताओ और मूंगफली के अलावा अब कोई और फसल ना आए?
4: मक्का खड़ी है अब।
0: अच्छा, मक्का भी खड़ी है?
4: मक्का भी खड़ी है, मक्का कट रही है, खन रही है, बिक रही है।
0: अच्छा।
4: अच्छी बढ़िया क्वालिटी की मक्का हो रही है, 4 महीने में तैयार हो जाती है।
0: खेती में जो आप फसल लगाते हो तो किन बातों को ध्यान रखा तो कि आपकी फसल अच्छी हो?
4: हमने ध्यान रखा है कि हमने फसल बोई और उसकी देखभाल करते रहे, देखभाल करके फिर उसमें कीटनाशक बहुत जरूरी देखना है।
0: अच्छा, हाँ वो तो है,
4: है?
0: हाँ।
4: और बाजार से दवा ला के स्प्रे करते हैं, वो कीटनाशक खत्म हो जाता है।
0: जवाब तो सही है कि आपने कीटनाशक वाली दवाई लगाई, वो लगाने जरूरी है। हाँ। लेकिन क्या आप जो कीटनाशक कुछ ऐसी भी तो होती हैं जो जैसे घर के नीम उम की पत्तियों से जो बनती हैं
4: उससे भी खत्म हो जाता है?
0: अच्छा।
4: तो डॉक्टरी लोग बता सकते।
0: आपने जब जब मक्का लगाई ही तो खेत कैसे करके तैयार करो?
4: खेत परेवा करा, परे के फिर उसको गोड़ा,
0: अच्छा,
4: जोता और जोत के तैयार करके फिर मक्का गड़बादी में।

0: मशीन से।
1: क्या
0: हाँ
1: मशीन से गड़वाई?
0: मशीन से गड़ती है मक्का।
1: तो कितने खेत में कितनी गड़ जाती?
0: 1.5 बीघा की मक्का गड़ती।
1: अच्छा
0: हाँ
1: 1.5 बीघा।
0: 1.5 बीघा।
1: फिर वहाँ कैसे आपको ध्यान रखने में होता है?
0: फिर अपने देख लेते हैं जम रहा हो सही दानो, सब बकाया जमयाओ, जम के आएगो।
1: अच्छा।
0: फिर एक फिटकी भाई, फिर पानी लगा कर उसमें नराई लगा दी।
1: अच्छा, अच्छा।
0: गुड़ाई लगा दी, फिर उसकी देखभाल करते रहे। देखभाल करके अपने कीटनाशक को कोई अगर है प्रयोग तो अपने बाजार से लाके दवा लगा दी।
1: अच्छा, अब धान लगाओगे?
0: आप धान लगाएंगे?
1: लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनों खेतन में खूब घूरो लगाता है, तो आप अपने खेतन में का घूरे को इस्तेमाल करे? तो
0: घूरे को इस्तेमाल जब अगर व्यवस्था है तो घूरे को इस्तेमाल कर लो, और नहीं अगर व्यवस्था है तो हम बाजार से ढेंचा ला के बह देते हैं।
1: अच्छा, तो ढेंचा कितने दिन में तैयार होता है?
0: 3 महीने में ढेंचा तैयार हो जाता है।
1: अच्छा अच्छा, तो बबू है आपने जाता?
0: हाँ हमने बबू है। अब जो 5 फुट को ढेंचा हो जाएगा तभी इसमें पलट देंगे।
1: अच्छा,
0: हल से पलट के और हैरो से खंदवा के पानी भर के गलवा दें, गला के उसमें पौध लगा दें
1: खेत।
0: तो
1: जहाँ से का फायदा होता है? अच्छा,
0: से बहुत लंबा फायदा होता है। कोई भी हरी खाद हो, घास गला दो, ढेंचा गला दो, तो ये जो बाहर की खाद है उनसे ज्यादा बढ़िया फसल होती है।
1: हर फेरा करता है?
0: फेरा हम करते हैं, और बाईस साल नहीं भी हो घूरो डाल दो। और हम जो है जो रासायनिक खाद है जिनको कम प्रयोग करते हैं, जो घर की देसी खाद है उनसे ज्यादा लाभ लेते हैं।
1: बेड़ का डाल दीजिए खेत?
0: हाँ बेड़ डाल दीजिए।
1: कितने दिन की डाल दी?
0: अब जो 15 दिन में गड़ाई चालू हो जाएगी। 10-12 दिन की होगी, 25 दिन बाद बेड़ डालने लायक हो जाएगी।
1: आपने तो इतनी साल ही खेती करी है और अब भी खेती आप कर रहे हो, तो आपको पहले और अब में क्या बदलाव लगा था? खेती में, उपज में, जो पैदावार होती है बाम है और जो लागत लगती है बाम, कितना अंतर मालूम पड़ता है? अच्छा, अगर आपके नजरिए से
0: लागत ज्यादा आ रही है उतनी पैदावार बढ़ रही है, और पहले जो कम रसायन लगाओ पैदावार बढ़ रही
1: है, और आपकी मिट्टी में तो अंतर है,
0: बहुत अंतर पड़ गए हैं। भूरो ना पड़े या हरी खाद ना बही जाए तो बाम कुछ ना हो। जो यूरिया लगते है यूरिया से सब पोषक तत्व सब खत्म हो जाए।
1: जब आज सही की आपने, आप पहले जब खेती करते है और आप जब खेती करते हैं तो क्या बदलाव लगता है आपको इनमें?
0: बदलाव तो बहुत है, पहले से अब बहुत बदलाव हो गया।
1: अच्छा,
0: अब जो है जब रसायन बढ़िया खाद लगाओ DAP वगैरह हरी खाद तो उपज ज्यादा होती है। तब यूरिया लगाते तब यूरिया से फसल जो गल जाती है।
1: अच्छा,
0: अब आदमी जो है DAP और हरी खाद का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है।
1: कि अब बीच में कतई कम ही गो, लेकिन अब तो लोग खूब कर रहे हैं।
0: अब खूब कर रहे हैं, हजारों बीघा ढेंचा हमने देखो कोई बहु 2-4 बीघा जैसी जैसी जैसी जिसकी जमीन है वैसे अपने ढेंचा बह दिया। 20 बीघा है तो 10 बीघा बह रहा हूँ, 10 बीघा में दूसरी फसल तैयार कर दी।
1: है एक बात बताओ, आप खेती बाड़ी तो करता हो, जाके संग संग का जानवर भी पालता हो?
0: खेती के साथ साथ तो जानवर पालते हैं।
1: अच्छा,
0: बिना खेती बाड़ी को जानवर नहीं पाल मिलेगा।
1: क्यों ऐसा कारण है कि वो ना पाल पावेंगे?
0: क्यों उसके पास चारा नहीं होगा।
1: हाँ बिल्कुल सही कही आप,
0: हरियाई नहीं होगी। अब वो कहाँ से मोल लेगो, कहाँ से का करेगो?
1: अच्छा, भूसा उसा की भी परेशानी रहा है।
0: भूसा 1000-1500 रुपया क्विंटल को भूसा बिकता है, बेचारो मजदूर आदमी कैसे खवा ले।
1: हाँ बिल्कुल सही कही आपने।
0: हाँ, जमीन को और पौए को साथ।
1: हाँ।
0: जब हमारे पास 20 बीघा जमीन है तो 10-4 बीघा कबार बैदा और 4 पौए अपने आराम से खवा रहे हैं।
1: हाँ।
0: हम मोल लाके ना खवा मिलेगी हमें।
1: अब गर्मी बहुत ज्यादा है, आप अपने जानवर को का खवा रहे हो?
0: घास खवा रहे हैं वह, और चरी फरी है, और हंधवा धुआ रहे हैं डेली, दूध फेरा हंधवा रहे हैं तो पौए पल रहे हैं।
1: साफ सफाई को कैसे ध्यान रखा था?
0: साफ सफाई को 2 टाइम नहवाते हैं, सुबह को नहवाए संजा नहवा में तो पौए का शबल सेवर है, का मोटर लगी है, नहला रहे हैं आराम से, किसी के पास ना है मजबूरी।
1: जानवर दूध दे रहा हुआ का?
0: भैंस दूध दे रही है
1: तो दे देती है।
0: अब दूध है खवाई गुप
1: बेचे तो चाहता का थोड़ा
0: बेची लेता है लीटर दो लीटर।
1: कितने रुपए लीटर जा रहा हूँ आपके यहाँ?
0: 60-50 रुपए जा।
1: हमारे बहुत से भैया बहन ऐसे हैं जो आज कार्यक्रम के माध्यम से आपकी और हमारी बातचीत सुन रहे होंगे, उन सबको संदेश के रूप में आपका?
0: भैया सुन रहे हैं, वे भाई अपनी खेती बाड़ी बढ़िया तरीका से करें, रासायनिक खाद कम लगाएं, हरी खाद ढेंचा है तिली है घास गलाम है तो इससे बढ़िया प्रयोग है। खाद बह दे तो बाम ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि उतने पैसा बचेगा तो उतने हरी खाद तुम्हारा जोर लगा देगी।
1: आप कार्यक्रम से जुड़े, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे भैया बहनों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया बहनों, कितनी अच्छी तरीका से संत स्वरूप जी ने अपनी जो खेती बाड़ी में जैसे तरीका से वे काम करता है बाके बारे में हमारे भैया बहनों को बताई। हमें उम्मीद है वो सुनकर अपने ऐसे ही काम करेंगे तो उनकी भी जो खेत की मिट्टी है वह अच्छी होगी।
2: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
3: नौकरी की 100%

0: गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
1: और पूनम महन, देखो जानकारी को सिलसिला जो है अपने भैया बना तक पहुँच ही रहो है, और अब भैया जो मन हिरो वो हिरो गोने बजनई को।
2: हाँ भैया, तो गोने ही बजनई तो बाद में सुनवाइयो, पहले जो भैया बहन ने सोशल मीडिया के माध्यम से कमेंट्स करे हैं और कुछ पत्र भी मिले हैं उनके तो बता दो। देखो भैया, एक पत्र तो हमें मिलो है जो है जिला बदायूं ग्राम दूने नगर से, ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार, सत्येंद्र कुमार, गुड्डू, विशाल, वैभव, आदर्श, आदित्य, अमित, रेणु, कुमकुम, निव्या, सरता और अंतमा।
1: और जे सोशल मीडिया के माध्यम से फरमाइश हमको भेजी है कटरा चांद का पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि मौर्य, मानवी मौर्य, और आप हैं सिकलापुर बरेली मौर्य मंदिर से रतनलाल मौर्य, मुकेश मौर्य, प्रिंस मौर्य, इनके परिवार के सभी सदस्य,
2: और जे हैं
1: विजयपाल यादव, शुभम यादव, शिखा यादव, ऋचा यादव, ग्राम पोस्ट ललहुआ, जिला खीरी से।
2: अब ग्राम करेली बरेली से हैं मोहम्मद आमिर अंसारी, समीम, माहेनूर,
1: नसरीन अंसारी,
2: समा अंसारी
1: जी। और जे फरमाइश हमको भेजिए धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू ने।
2: और जी हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर से मुकेश कुमार कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा, मानवी, तनवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह।
1: तो आप सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं जो प्यारो सो लोकगीत।

0: तो भैया मैंने देखो अभी आप सबने सुनो जो प्यारा सुलोगी पंखा गर्मी में लगवाए थे मेरे भरतार जिसको सोदो लांग गोपाल सत्यार्थी ने। और भैया बहनों अब बिल्कुल समय आया है कि हम आपसे कोई और बात करें। फिलहाल अगले कार्यक्रम में नई नई जानकारी के साथ हम दोनों बहन भैया फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने भैया कृष्णा
1: और अपनी बहन पूनम को दे अनुमति। भैया बहनों
0: राम राम, राम, राम।

श्रोताओं, खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना सुनिए। मंतशा पुत्री जलील अहमद, उम्र 20 वर्ष, ग्राम जादवपुर, थाना भोजीपुरा, जिला बरेली से 15 मई 2026 से लापता है। इनका कद 5 फीट 1 इंच, रंग गेहुआ, इकहरा मजबूत जिस्म, ये शलवार सूट पहने हुए हैं। जिस किसी को भी इनके बारे में कोई भी सूचना मिले तो कृपया प्रभारी निरीक्षक थाना भोजीपुरा बरेली को सूचित करने का कष्ट करें। श्रोताओं, खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित एक और सूचना सुनिए। जाबिर हुसैन, पुत्र साबिर हुसैन, निवासी ग्राम अहमदाबाद, थाना हाफिजगंज, जिला बरेली से 18 मई 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र लगभग 26 वर्ष है, कद 5 फीट 7 इंच, रंग गोरा, चेहरा पतला है, ये पैंट और शर्ट पहने हुए हैं। जिस किसी को इनके बारे में कोई भी सूचना मिले तो कृपया प्रभारी निरीक्षक थाना हाफिजगंज बरेली को सूचित करने का कष्ट करें। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
2: भारत सरकार का लक्ष्य।

0: सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। घर सूर्य घर।
3: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा, पिछले एक दशक में बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड स्तर पर हुआ उन्नयन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान है आधुनिक अवसंरचना। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाया प्रतिबंध। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 19 जून को पूर्वांचल को देंगे 3 रेल सेवाओं की सौगात। छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का मऊ के रास्ते होगा संचालन। और भारत और अफगानिस्तान के बीच कल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा दूसरा एक दिवसीय मैच। स्टेडियम के आसपास सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले दशक में बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड स्तर पर उन्नयन हुआ है। उन्होंने देश के लोगों के लिए अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि विकसित भारत के स्वप्न को साकार किया जा सके। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आधुनिक अवसंरचना किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान होती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के यशस्वी नेतृत्व में भारत ने बीते 12 वर्षों में इस दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धियां अर्जित की हैं। इस उपलक्ष्य में प्रदेश भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश के संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज लखनऊ में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5,37,00,000 आवास का आवंटन किया है, जिसमें से 62,00,000 से अधिक परिवार यूपी के शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
1: 2014 से पहले हमारे देश में इतने मेडिकल कॉलेज नहीं थे, इतने डॉक्टर्स नहीं थे कि हम ठीक प्रकार से सभी लोगों को इलाज की सुविधा दे सकें। तो उसके पहले उन्होंने ये मन बनाया कि हम ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स पैदा करेंगे, और डॉक्टर्स पैदा होते सिर्फ मेडिकल कॉलेजों में 818 मेडिकल कॉलेज, जिसमें से 431 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का उन्होंने मन बनाया। और MBBS में कुल 1,28,976 सीटें थी, जिसमें से 77,628 सीटों की वृद्धि की गई।
0: केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज मिर्जापुर में जिला प्रशासन और सूचना और जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा लगाई गई विकसित भारत प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की 12 वर्ष की योजनाओं की उपलब्धियों और प्रदेश सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों और मिर्जापुर के विकास कार्यों को दिखाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की

0: सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आगामी 19 जून को पूर्वांचल को रेलवे की तरफ से कई रेल सेवाओं की सौगात प्रदान करेंगे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में रेल मंत्री बिहार के छपरा से ऑनलाइन जुड़कर जनता को संबोधित करेंगे। प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए आज बताया कि हाल ही में उन्होंने पूर्वांचल की रेल सेवाओं के विस्तार और यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए रेल मंत्री से कई महत्वपूर्ण मांगे की थीं, जिसे मंजूर कर लिया गया है। इन सुविधाओं में दोहरी घाट और यहां नई मेमो ट्रेन का वाराणसी तक संचालन, मऊ आनंद विहार स्पेशल ट्रेन का मऊ से नियमित संचालन शामिल है। इसके अलावा छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन मऊ के रास्ते किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का परिणाम आज घोषित किया गया, जिसमें वंदना सिंह ने प्रदेश में टॉप किया है। परिणाम में कुल 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को रैंक जारी की गई है। इनमें महिला अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे से 17 जून को पहला कार्गो विमान उड़ान भरेगा। पहले दिन एक कार्गो उड़ान होगी। 1 जुलाई से एयरपोर्ट से वाणिज्यिक और कार्गो सेवाएं नियमित रूप से उपलब्ध हो जाएंगी। कार्गो सेवा शुरू होने से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रदेश के साथ उत्तर भारत की आर्थिक को भी गति मिलेगी। प्रदेश के कई जिलों में 7वें बड़े मंगल के अवसर पर भक्त हनुमान जी के मंदिरों में सुबह से ही दर्शन पूजन कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ है। अयोध्या में भी भक्त हनुमान गढ़ी सहित कई अन्य मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: अयोध्या में आज ज्येष्ठ माह के 7वें बड़े मंगल पर हनुमानगढ़ी में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने बजरंगबली के दर्शन पूजन कर अपनी श्रद्धा निवेदित किया, साथ ही सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। शहर के कई स्थानों पर विशाल भंडारों का आयोजन किया जा रहा है, जहां हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए हैं। भक्ति, सेवा और श्रद्धा के इस पावन माहौल से अयोध्या पूरी तरह राम और हनुमानमय नजर आ रही है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच कल लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
3: इकाना क्रिकेट स्टेडियम में कल 17 जून को होने वाले श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय मैच के लिए दोनों टीमें लखनऊ पहुंच चुकी हैं। आज मैदान पर पहले अफगानिस्तान की टीम ने अभ्यास किया और इस समय भारतीय टीम पसीना बहा रही है। भारतीय टीम अभी श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इस अंतर्राष्ट्रीय मैच के मद्देनजर स्टेडियम के अंदर और बाहर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने स्टेडियम के आसपास कई मार्गों पर यातायात डायवर्जन भी लागू किया है, जो कि सुबह 9 बजे से रात में मैच की समाप्ति तक लागू रहेगा। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: और अंत में

मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा, पिछले एक दशक में बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड स्तर पर हुआ उन्नयन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान है आधुनिक अवसंरचना। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाया प्रतिबंध, संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 19 जून को पूर्वांचल को देंगे 3 रेल सेवाओं की सौगात, छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का मऊ के रास्ते होगा संचालन। और भारत और अफगानिस्तान के बीच कल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा दूसरा एक दिवसीय मैच, स्टेडियम के आसपास सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो। महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
1: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:31 और 17 सेकंड हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन। आज का विषय समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की गंभीर बीमारियों और उनके इलाज में वेंटिलेटर एवं अन्य मशीनों की भूमिका। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कुलदीप गंगवार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
3: गंगवार हॉस्पिटल, निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
4: समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के इलाज की विशेष सुविधा,
3: अविकसित फेफड़ों के उपचार के लिए सर्फेक्टेंट थेरेपी,
4: टेम्परेचर नियंत्रण के लिए विशेष इंक्यूबेटर जिराफ ओमनी बेड,
3: सांस नियंत्रण के लिए सीपैप वेंटिलेटर, HFNC और ईयर वो मशीनें,
5: बच्चों के जन्म के समय होने वाली जटिलताओं के लिए
6: बिना खून निकाले पीलिया की जाँच,
3: खास तरह के वेंटिलेटर HFO ऑक्सीलेटर, थेरेप्यूटिक हाइपोथेरेमिया बाय क्रिटिकूल,
4: ब्रेन मॉनिटरिंग के लिए CFM, बेड साइड इको, अल्ट्रासाउंड की सुविधा,
3: साथ ही बच्चों में पीलिया, सेप्टिक इन्फेक्शन, निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की विशेष सुविधा।
5: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक चैरिटेबल OPD,
3: बरेली का अत्याधुनिक बाल चिकित्सालय
4: गंगवार हॉस्पिटल,
3: निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
5: इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 9457096487।
7: रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मुकेश कुमार पांडे का नमस्कार। श्रोताओं, आज रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बरेली के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
8: सभी श्रोताओं को और पांडे जी आपको मेरा नमस्कार।
7: जी डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता हमेशा उत्सुक रहते हैं कि कब डॉक्टर साहब स्टूडियो में आए और कब उन्हें कोई नई जानकारी मिले। हालांकि विषय हमारा पुराना ही है आज भी, लेकिन हमारी उम्मीद यह है कि हमारे श्रोता कुछ नया जान पाएंगे आज कार्यक्रम के माध्यम से। डॉक्टर साहब, आज का विषय हमने एक बार पुनः रखा है समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर एवं अन्य मशीनों की उपयोगिता। चूंकि समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की बात है तो ये भी जान लेना बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब कि समय से पूर्व पैदा हुए बच्चे किन्हें कहा जाए।
8: जी देखिए, जो नॉर्मल गर्भ पीरियड है,
7: जी गर्भकाल,
8: गर्भकाल है 37 वीक से,
7: यानी 37 सप्ताह से 42 सप्ताह का जो समय है,
8: जी वो नॉर्मल एक गर्भकाल का इंसान का है
7: जी।
8: तो लेकिन जो 37 सप्ताह से पहले बच्चे पैदा हो जाते हैं,
7: अच्छा,
8: वो प्रीमेच्योर बच्चे कहलाते हैं।
7: जी जी।
8: तो प्रीमेच्योर में भी अलग अलग कैटेगरी है
7: जी,
8: जैसे कि लेट प्रीटर्म जो 37 से 32 सप्ताह के बीच में है ना,
7: अच्छा,
8: जो 32 सप्ताह से और पहले पैदा हो जाते हैं वो प्रीटर्म,
7: अच्छा,
8: और जो मान लीजिए 28 वीक्स या उससे पहले पैदा हो जाते हैं वो वेरी प्रीमेच्योर।
7: तो क्या डॉक्टर साहब ये संभव है 28 सप्ताह से पहले जो बच्चा पैदा हो रहा है वो स्वस्थ जीवन जी पाएगा?
8: देखिए, इन बच्चों को जो परेशानी है वो इस वजह से है कि ये समय से पूर्व पैदा हुए।
7: जी,
8: समय से पूर्व पैदा होने में क्या होता है, हमारे शरीर के जो अंग है
7: जी
8: वो उतने विकसित नहीं हो पाते जितने विकसित हो जाने चाहिए।
7: अच्छा अच्छा।
8: तो इसलिए हर अंग शरीर का अपने आप में एक कठिनाई पैदा करता है।
7: जी जी।

0: जब बच्चा समय से पूर्व पैदा है, जो सर्वाइवल संभव है आज की तारीख में
1: जी, अच्छा।
0: और वो बच्चे हमारे यहाँ बच जाते हैं 25 वीक्स एंड 26 वीक्स के
1: जी जी,
0: तो उससे कम जो और पहले के पैदा हुए बच्चे हैं उनमें अभी परेशानी आती है, लेकिन कुछ जगह रिपोर्टेड है कि 24 वीक्स ऑनवर्ड्स बच्चे बच जाते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जो गर्भकाल 9 महीने का कहा जाता है, 9 महीने 9 दिन 10 दिन इस तरह से, उसकी जगह आप बता रहे हैं कि 6 महीने यानी जो 26-24
0: 9 महीने 7 दिन गर्भकाल नॉर्मल माना जाता
1: है। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो आप गर्भकाल बता रहे हैं तो 6 महीने 6.5 महीने का ही बच्चा।
0: जी जी जी, 6.5 महीने के जो बच्चे, 6 महीने के बच्चे जैसे 24-25 वीक्स के जो बच्चे पैदा होते हैं
1: जी,
0: तो उनमें एक तो सबसे अधिक जो कॉमन समस्या आती है कि लंग्स उतने मेच्योर नहीं होते।
1: अच्छा, फेफड़े उतने मजबूत नहीं,
0: मजबूत नहीं होते कि वो ऑक्सीजनेशन कर

0: अच्छा, फेफड़े उतने मजबूत
1: हाँ मजबूत नहीं होते कि वो ऑक्सीजनेशन कर जब जी. तक बच्चा या प्रीटर्म बेबी माँ के गर्भ में है
0: जी.
1: तो उसको ऑक्सीजन हुआ, बाकी सारी न्यूट्रिशनल सप्लाई हुई या जो कुछ भी उसको चाहिए वो सब माँ से मिलता है थ्रू ब्लड. लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसको उसके लंग्स काम करना शुरू करते हैं और वो उसको ऑक्सीजन अपने आप उतनी बनानी पड़ती शरीर में कि जो उसका काम चल सके.
0: जी, जी.
1: जब लंग्स इमेच्योर होते हैं खासतौर से प्रीमेच्योर बच्चों के जिसको कि हम लोग बोलते हैं हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज या न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम.
0: अच्छा,
1: तो न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो बच्चा प्रीमेच्योर पैदा होता है तो उसकी सांस तेज चलना शुरू करती है क्योंकि बच्चा कंपनसेट करने की कोशिश करता है उस प्रीमेच्योरिटी को या लंग्स की उस इनसफिशियंसी को जल्दी जल्दी सांस लेके.
0: यानी जो फेफड़े के सिकुड़ने और फैलने की क्षमता है वो नेचुरली
1: नहीं, क्षमता तो कम है ही
0: जी,
1: जिसको हम बोलते हैं कंप्लायंस कम है. दूसरा, उस चीज को बच्चा पूरा करने की कोशिश करता है उससे जल्दी जल्दी टैकिपनिया करके.
0: अच्छा,
1: मतलब सांस की गति बढ़ा के
0: ऑक्सीजन की जो जरूरत
1: रिक्वायरमेंट पूरा करने की कोशिश करता है
0: जी.
1: लेकिन अगर सर्फेक्टेंट कम है जिसको कि बोलते हैं न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी एनआरडीएस या एचएमडी हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज, अगर प्रीमेच्योर बच्चे में वो है तो आपको सर्फेक्टेंट एक दवाई होती है या एक पदार्थ या मटेरियल है जो कि आपको उसके फेफड़ों में डालना होता है जिससे कि वो जो उसकी कमी है उस सब्सटेंस की उसको बाहर से पूरा किया जा सके.
0: डॉक्टर साहब, क्या कुदरती तौर पर ये फेफड़े में मौजूद होता है सर्फेक्टेंट?
1: ये सर्फेक्टेंट कुदरती तौर मौजूद होता है. अच्छा, लेकिन जब बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं तो
0: उनमें
1: कम होता है. ये 28 वीक ऑनवर्ड्स बनना शुरू होता है अच्छे से.
0: अच्छा,
1: और जो बच्चे 30 वीक्स या 32 वीक्स के ऊपर निकल जाते हैं उनमें इतना जरूरत नहीं रहती
0: जी, जी.
1: लेकिन जो बच्चे 32 वीक्स हैं उनमें हमेशा एक डर रहता है. मतलब ये पता लग चुका है कि अगर इन मदर्स को जिनके बच्चे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि समय से पूर्व पैदा होंगे
0: जी.
1: उनको एंटीनेटल स्टेरॉइड यानी बिटामेथासोन या डेक्सामेथासोन दिया जाए.
0: अच्छा,
1: प्रॉपर डोजेज में
0: जी.
1: तो लंग्स की मेच्योरिटी बढ़ जाती है.
0: ये जो आप बता रहे हैं दवाइयां बिटामेथासोन या डेक्सामेथासोन, तो ये माँ को दी जाती है?
1: ये माँ को इंजेक्शन द्वारा दी जाती है. अगर जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसको ये अंदेशा होता है कि बच्चा समय से पूर्व पैदा हो सकता है तो डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन इंजेक्शन 2 दिन का कोर्स है उसको करके, तो उसमें लंग्स की मेच्योरिटी बढ़ जाती है और इस बात के चांस कम हो जाते हैं कि बच्चे को एनआरडीएस यानी हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज हो या सर्फेक्टेंट की कमी पड़े.
0: यानी जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं वो ये फैसला लेती है?
1: वो फैसला लेती है.
0: अच्छा,
1: कि अगर उनको ये रहता है कि इसमें जल्दी डिलीवरी हो सकती है तो वो माँ को ये लगाते हैं.
0: अच्छा,
1: और इसके लगाने के ये तो फायदा है ही लंग्स की मेच्योरिटी, और भी फायदे हैं जैसे कि गट की मेच्योरिटी बढ़ती है और ब्रेन की भी मेच्योरिटी बढ़ती है. और ब्रेन पूरी तरह से मेच्योर नहीं होगा तो हमेशा एक डर रहेगा कि ब्रेन को इंसल्ट ना हो जाए. दूसरी चीज, ब्रेन में हेमरेज होने का जिसको बोलते हैं IVH इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, वो होने का डर बहुत ज्यादा रहता है.
0: जी जी, जी. डॉक्टर साहब, जो आप दवाइयां बता रहे हैं ना स्टेरॉइड कहा जाता है, और स्टेरॉइड ये कहा जाता है कि बहुत नुकसानदायक होता
1: है? नहीं, ये तो कोर्स ही ना, पर्टिकुलर डोजेस दी जाती. अच्छा, है वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए.
0: अच्छा,
1: तो ऐसे जैसे स्टेरॉइड नुकसान करते हैं ब्लड प्रेशर में शुगर में
0: जी.
1: लेकिन ये स्टेरॉइड बच्चे को आपको हेल्प करने जा रहे हैं, और अगर माँ को शुगर है या माँ को ब्लड प्रेशर है तब भी ये स्टेरॉइड दिया जा सकता है और देना चाहिए.
0: अच्छा,
1: जिससे कि बच्चे को फायदा दे सके.
0: यानी अगर स्त्री रोग विशेषज्ञ ये तय करती है कि जो गर्भवती माता है उसे स्टेरॉइड के रूप में बीटामेथासोन डेक्सामेथासोन दिया जाना है तो ये उचित है
1: जी,
0: ये बच्चे के हित में.
1: अभी एक दवाई जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट
0: जी जी,
1: वो भी एक्लेम्सिया के मदर्स को पहले देते थे. अब जहाँ पे हमें सस्पेक्ट हमें डाउट अंदेशा रहता है कि बच्चे को ब्रेन इंसल्ट हो सकती है, बच्चे को बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है या बच्चे को बर्थ एनोक्सिया हो सकता है, ये डर है कि बच्चा पैदा होने के बाद सांस लेने में कोई दिक्कत करे, तो उन मदर्स को मैग्नीशियम सल्फेट भी दिया जाता है जिससे कि बच्चे में जब पैदाइश होती है तो उनके दिमाग को नुकसान कम होता है.
0: अच्छा, ये बर्थ एस्फिक्सिया और ये जो नाम आप ले रहे हैं डॉक्टर साहब, अगर हमारे श्रोता जानना चाहें इसका मतलब क्या होता है?
1: देखिए, बर्थ एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया का मतलब दम घुटना.
0: अच्छा,
1: है ना. तो बच्चा पैदा होते समय किसी कारण से अगर ठीक से सांस नहीं ले पाया, जैसे कि पैदाइश में ज्यादा टाइम लग गया
0: जी.
1: या गर्भ में वो एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया, पानी कम हो गया
0: जी.
1: या बच्चे ने कई बार पॉटी पेट में कर ली
0: जी,
1: लैट्रिन पेट में कर ली तो वो सांस में ले ली, या बच्चे को ब्लड सप्लाई कम हो गई, फीटल डिस्ट्रेस होने लगा
0: जी. डॉक्टर साहब, ये वाकई में बड़ी महत्वपूर्ण बात है. अगर हमारे श्रोता

0: बात को ध्यान से सुन रहे होंगे।
1: बच्चों को रखने के लिए जो हमें मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि जो इंक्यूबेटर्स हैं, जो ऐसी मशीन है जिनमें कि हम लोग केयर करते हैं, ह्यूमिडिफाई जो आद्रता है उसको कंट्रोल करते हैं और टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं,
0: यानी जो नमी
1: ह्यूमिडिटी, हाँ, नमी को और टेम्परेचर तापमान को, दोनों को कंट्रोल करते हैं। और इंक्यूबेटर के बाद एक और दो मशीन है जिनमें डुअल सिस्टम होता है।
0: जी, आकाशवाणी बरेली से आपकी बात हो रही है, डॉक्टर कुलदीप गंगवार हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। जी जी जी मुन्ना लाल जी, आपकी कॉल का इंतजार रहता है हमें भी और हमारे श्रोताओं को भी हमारे इस कार्यक्रम में।
1: बड़ा रेगुलर श्रोता है ये आपके?
0: जी,
1: नियमित श्रोता।
0: जी जी, आज क्या प्रश्न है आपका?
2: हमारा सवाल ये था, जो प्रीमैच्योर जो बच्चा है वो किसे कहेंगे जी, प्रीमैच्योर बच्चा है, पहली बात तो।
0: जी जी
1: जी, चलिए एक सवाल।
2: दूसरा सवाल ये सर, प्रीमैच्योर बच्चों की देखभाल के लिए किन किन मशीनों की आवश्यकता पड़ती है?
1: अच्छा, इसके अलावा और कोई सवाल आपका?
2: सर एक और जानकारी लेना चाह रहे, प्रीमैच्योर बच्चों में नाइट्रिक ऑक्साइड मशीन की आवश्यकता पड़ती है, कहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है?
1: चलिए चलिए, देखिए आपके तीन सवाल आपने पूछे हैं। तो प्रीमेच्योर बच्चा कब कहते हैं? जब बच्चे का जो जन्म है वो अगर गेस्टेशनल टाइम है या गर्भा पीरियड है वो 37 वीक से यानी 37 वीक से कम का है, तो उस बच्चे को प्रीमेच्योर यानी समय से पूर्व पैदा हुआ बच्चा कहते हैं। दूसरा सवाल था इनका पांडे जी कि क्या क्या समस्याएं आती हैं,
0: मशीन कौन
1: जो, हाँ, मशीनें कौन सी आती हैं? वो तो ही समस्याएं इन बच्चों को इसलिए आती हैं कि इनके जितने अंग हैं वो उतने विकसित नहीं हो पाते जितने समय के साथ हो जाने चाहिए। अब जब ये विकसित नहीं हो पाते तो हर अंग अपनी दिक्कत देता है, जैसे कि फेफड़ों में दिक्कत आती है सांस लेने में, जिसको कि HMD बोलते हैं। ब्रेन के अंदर दिक्कत आती है, कई बार हेमरेज होने का डर रहता है। ऐसे आंतों में दिक्कत आती है दूध पचाने में, खासतौर से अगर माँ का दूध ना दिया जाए, इन बच्चों को ऊपर का दूध दिया जाए तो NEC यानी नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस होने का डर रहता है। ऐसे इन बच्चों का तापमान नियंत्रण करने में दिक्कत आती है, तापमान नियंत्रण करने में इसलिए उन मशीनों में रखा जाता है जिसमें कि बंद जो मशीन होती है जैसे इंक्यूबेटर्स, तो जिनमें कि आप तापमान और नम जो ह्यूमिडिटी है दोनों को, नमी को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इनको आपको जो दवाइयां हैं बड़े लिमिटेड दवाइयां लगानी पड़ती हैं, और दूसरा बहुत स्लोली लगानी पड़ती है, तो आपको और इन्फ्यूजन पंप्स की जरूरत पड़ती है, तो उसमें वॉल्यूमेट्रिक पंप्स हैं सिरिंज में। फिर इनको मॉनिटरिंग की जरूरत होती है और मॉनिटर्स चाहिए होते हैं। इसके बाद इनको अक्सर बच्चों को जॉन्डिस होता है तो जॉन्डिस के लिए फोटोथेरेपी वगैरह जरूरत होती है। फिर बच्चों को इनको आपका अगर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है तो फिर वेंटिलेटर्स की जरूरत, वेंटिलेटर्स भी नियोनेटल डेडिकेटेड वेंटिलेटर, मतलब जो सिर्फ नवजात शिशु में ही इस्तेमाल होते हैं, खासतौर से प्रीमेच्योर बच्चों में ही इस्तेमाल होते हैं, वही वेंटिलेटर्स इन बच्चों को प्रयोग में लाने चाहिए, जैसे कि बेबी लॉक वेंटिलेटर्स है, VN500 है, जिनमें कि 1 ML टाइडल वॉल्यूम आप नापते हो, क्योंकि जो बच्चा 600 ग्राम का पैदा हुआ है उसको टाइडल वॉल्यूम चाहिए आपको 2.5 ML 3 ML का, क्योंकि जो 6 ML पर kg के हिसाब से टाइडल, तो 2.5-3 ML एक्यूरेट एयर को नापना एक मशीन के लिए भी चैलेंज होता है। तो जो मशीन न्यू डेट्स में ही इस्तेमाल होती है वो मशीन की आवश्यकता होती है। फिर इन बच्चों को टेम्परेचर कंट्रोल करने स्पेशल वेंटिलेटर्स जो कि डेडिकेटेड है आपके न्यूनेटल केयर के लिए। और जहां तक आपने सवाल किया है, इनको सर्फेक्टेंट की जरूरत पड़ती है, कई बार आपका इकोकार्डियोग्राफी वो मशीन होना चाहिए बेड साइड, जिसमें कि इन बच्चों को अक्सर समस्या होती है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस की यानी PDA की, तो PDA हुआ, NEC हुआ। फिर अब बाद में इनको जरूरत पड़ती है आंखों के चेकअप के लिए, या हियरिंग की जरूरत पड़ती है, हियरिंग इनकी स्क्रीनिंग होना चाहिए जिससे ये पता लगे कि इनकी हियरिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको ROP होने का डर रहता है, रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी। इनको खून की कमी होने का डर रहता है, इसको बोलते हैं एनीमिया और प्रीमेच्योरिटी। तो इस तरह की समस्याएं आती है इनको कि डिफरेंट मशीन। जहां आपने सवाल किया INO का, INO प्रीमेच्योर बच्चों में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये INO जो इस्तेमाल होती है नाइट्रिक ऑक्साइड थेरेपी, वो परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन एक कंडीशन होती है उसके लिए इस्तेमाल होती है, जो कि टर्म बेबी में खासतौर से उन बच्चों में जो जिनकी पैदाइश मुश्किल से हो, जिसको हम बोलते हैं बर्थ एनोक्सिया, बर्थ एस्फिक्सिया, उन बच्चों में जरूरत पड़ती है, या उन बच्चों में जो कि फेफड़ों में गंदा पानी ले लें, जिसको बोलते हैं मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। तो बर्थ एस्फिक्सिया और मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम के बच्चों में ये मशीन की जरूरत पड़ती है। तो परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन का जो नवजात शिशु वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि फ्लक्चुएटिंग होती है।

0: आप उसे टच करो या उसका सैंपल लो तो उसकी ऑक्सीजन गिरने लगती है, और उसको कई बार ऑक्सीजन उसका SpO2 लेवल मेंटेन करना मुश्किल होता है, क्योंकि जो लंग्स को ब्लड जा रहा है वो बहुत कम जाता है, लंग्स की तरफ इसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से लंग्स को ब्लड कम पहुंचता है तो शरीर को ऑक्सीजन कम मिल पाती। तो ये सिलेक्टिव पल्मोनरी वैसो डायलेटर है, मतलब ये लंग्स को जो ब्लड जा रहा है उन ब्लड वैसो उन धमनियों को और नसों को चौड़ा कर देता है, जिससे कि लंग्स को ब्लड ज्यादा जाता है और बच्चे को ऑक्सीजन बढ़ाने में आसानी होती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड थेरेपी जो अक्सर प्रीमेच्योर बच्चों में कभी जरूरत पड़ती है, वरना ज्यादातर टर्म बेबी में और उन बच्चों में जो पैदा होने के समय जिनको मुश्किल आती है, या उन बच्चों में जो पैदा होने से पूर्व या पैदा होते समय फेफड़ों में गंदा पानी ले लेते हैं।
1: जी, और कोई प्रश्न है मुन्नालाल जी?
2: एक प्रश्न और है सर, जो अखबार में निकलता है ना बगैर खून लिए क्लोरवीन का, वो सर कौन सी मशीन है जो बगैर खून लिए ही सीरम क्लोरवीन हो जाता है?
0: हाँ, वो उसके लिए एक मशीन आती है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्यूटेनियस बिलोनोमीटर। आपका स्किन से या फिर ईयर लोब्यूल से आप उसको अगर रीडिंग वहां से नाप सकते हैं, उससे आपको एक पीलिया कितना ये आइडिया लगता है, लेकिन उस मशीन से ये पता नहीं लगता है कि इसमें डायरेक्ट कितना है इनडायरेक्ट कितना है। अच्छा, और तो प्रीमेच्योर बच्चों की समस्याएं ये होती हैं, और एक बहुत बड़ी समस्या प्रीमेच्योर बच्चों में होती है इन्फेक्शन होने की, खासतौर से सेप्सिस होने का डर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इनकी जो प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो उसकी वजह से तरह तरह के इन्फेक्शन बड़ी जल्दी होते हैं, और कई बार इन बच्चों को फंगल इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है।
1: जी,
0: ठीक है,
1: जानना है।
2: बहुत बहुत जानकारी आने के लिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे प्रश्न हमेशा पूछते हैं जो एक साधारण व्यक्ति के शायद समझ से परे हों, लेकिन आप उनके उत्तर जान लेते हैं, प्रश्न भी बता देते हैं। डॉक्टर साहब, इसी बीच एक और श्रोता लाइन पर है, इनकी समस्या सुन लेते हैं।
0: जी,
1: रेडियो हेल्पलाइन में आपका स्वागत है, अपना परिचय देते हुए अपना प्रश्न बताएं।
0: हेलो,
3: राजपुर कला से बोल रहे हैं,
1: बताइए क्या प्रश्न है आपका?
3: जी, आज हम जानना चाह रहे हैं, जैसे हमने रेडियो पर सुनी ही कि रेडियो हेल्पलाइन में समय से पहले पैदा भाई बच्चन के बारे में बताई जाएगी।
1: जी,
3: तो हम ये जानना चाह रहे हैं, जैसे बच्चा 8 या 7 महीना को जन्म हो जाए,
1: जी,
3: तो बाकी मतलब सही तरीका से घर पे ही जन्म हो और वो मतलब सही सांस वास सही ले रहे हो, लेकिन अच्छी तरीका से जैसे तंदुरुस्ती ना बच्चा एकदम बढ़वार पे सही होता है बना खा रही है, तो जाके लिए अब हमें क्या करने हो, जो डॉक्टर साहब से थोड़ी सलाह लेना चाह रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब लाइन पर है, अगली आवाज डॉक्टर साहब की।
0: जी, ऐसा है, जो आप चाह रहे हो कि आपका बच्चा समय से पूर्व पैदा हो गया है, तो इसका वजन कितना कितना समय से पूर्व पैदा हुआ?
3: लगभग 8 महीना को जन्म है होगा।
0: और वजन कितना है इसका?
3: वजन तो ऐसी हो जा मेरी ना चाहे 120 के करीब।
0: देखो, जो बच्चे 1 किलो 600 ग्राम से कम वजन के होते हैं वो अपने आप दूध पीने में सक्षम नहीं होते हैं, तो इन बच्चों को दूध आपको पिलाना पड़ेगा या तो चम्मच कटोरी से या फिर हम लोग कहते हैं एनजी फीडिंग यानी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से। तो तीसरा तरीका है कि इनको पलैदी से दूध पिला सकते हैं, तो माँ का दूध ही इनको पिलाना चाहिए, अगर ऊपर का दूध पिलाएंगे तो आप संकट में फंस जाएंगे। तो माँ का दूध अगर 1 किलो 1.25 किलो का बच्चा है तो इसको आप करीब कितने दिन का हो गया?
3: लगभग 22 दिन को।
0: 22 दिन का हो गया, तो इसको करीब 1 किलो पे 160-180 ml दूध आपको पिलाना है 24 घंटे में, तो आपको करीब 20-22 ml-23 ml दूध पिलाना है और डेली दूध बढ़ाना है। तो ये बच्चा अपने आप तो दूध पी नहीं पाएगा माँ से डायरेक्ट, तो आपको या तो दूध माँ का निकलवा के चम्मच कटोरी से पिलाना होगा या पलादी से, या आप किसी हॉस्पिटल में तो आपको एनजी डलवा के एनजी फीडिंग करा सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि आप एनजी इसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब पड़वा लीजिए और घर पे फीड करिए, बाकी इसके तापमान का ध्यान रखिए, इसको इन्फेक्शन ना होने पाए उसका ध्यान रखिए, और अगर 20-25 काल ले गया बच्चा तो बच्चा स्वस्थ हो जाना चाहिए।
3: जी डॉक्टर साहब, अब तक तो ठीक है, लेकिन जो गाँव में निप्पल ना आते वो प्लास्टिक वाली
0: ना, उससे दूध नहीं पिलाएंगे, वो निप्पल वाले आप दिक्कत में आ जाएंगे अगर उससे दूध पिलाएंगे तो।
3: शुरू शुरू में साहब रुई से मतलब जो है घर में गांव में प्याय दो, अब वो निप्पल से देना शुरू कर दो है, तो अब पी तो निकलो है, लेकिन समस्या जो है कि वो उतनी तरीका से जैसे ना बच्चा एकदम हिचपुसो चलवाता तंदुरुस्त उस तरीका की।
0: देखिए, निप्पल से दूध पिलाएंगे तो दिक्कत ये आएगी, बच्चा निप्पल से दूध पीने में ताकत का इस्तेमाल करता है, और जो अपनी ताकत वो दूध पीने में लगा देगा तो वो ताकत उसको वजन बढ़ाने के लिए नहीं मिलेगी। अगर आप नली से

0: पिलाएंगे या चम्मच के टुकड़े दूध पिलाएंगे तो उसकी वो ताकत बचेगी और वो ताकत भी उसको वजन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगी। तो आप अगर निप्पल से दूध पिलाएंगे तो कई खतरे हैं। एक तो बच्चे को इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा डर है, दूसरा उसको वजन बढ़ाने में दिक्कत आएगी।
1: अच्छा तो साहब आप की सलाह के अनुसार चलो दूध की बात जो होगी लेकिन बागो सही तरीका से तंदुरुस्ती मिले जागे ले हमें क्या करने पड़ेगा।
0: देखिए दो तीन चीजें हैं, अगर बच्चे का वजन एक किलो आप कुछ बता रहे हैं तो एक तो उसको एक बार डॉक्टर दिखा के एक उसको विटामिन डी, कैल्शियम, फॉलिक एसिड और आयरन ये दवाइयाँ चलनी चाहिए। अच्छा पर्याप्त मात्रा में दूध पिलाना चाहिए। तीसरा उसके बच्चे का तापमान हमेशा आप अगर बच्चे को छुएं तो बच्चा आपको गर्म लगना चाहिए, अगर बच्चे के हाथ पैर आपको छूने पे ठंडे लग रहे हैं तो बच्चे को मतलब तापमान कम हो रहा है, और बच्चे की अगर बॉडी भी ठंडी लग रही है आपको शरीर भी ठंडा लग रहा है तो इसका मतलब तो तापमान बहुत कम हो गया। तो इसके लिए एक तरीका ये भी करते हैं जिसको हम लोग कंगारू मदर केयर बोलते हैं, KMC केयर। तो माँ या घर में कोई और है सदस्य है जो बच्चे को हमेशा अपनी छाती से बिना कपड़े के लगा के रखे, जैसे माँ गाउन पहन सकती है और अपने दोनों छातियों के बीच में बच्चे को लगा के रखे लगातार जितना ज्यादा से ज्यादा समय, तो माँ के तापमान से बच्चे का तापमान नियंत्रित रहता है। तो और दूसरा उसका एक दूसरा फायदा है कि माँ दूध पिलाने में भी उसको दूध कम नहीं होगा कभी। तीसरा आने वाले समय में माँ उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराने में आसानी रहेगी।
1: अरे साहब आप जानना चाह रहे जैसे अभी तो माँ के दूध केल है और बाकी जो हलवा वगैरह आता है और जो मतलब भैंस को या बकरी को दूध है जो आगे चले कितने समय बाद हम बात पिलाना शुरू करें?
0: 6-7 महीने तक, 6 महीने तक आप कुछ नहीं देंगे, सिर्फ माँ का दूध, शहद, गुट्टी, पानी, ऊपर का दूध, बकरी का दूध, शहद या गाय भैंस का दूध, ये कुछ भी नहीं देंगे 6 महीने तक आप।
1: अच्छा हाँ भाई जो पड़ोस में है जैसा कह रहे कि बकरी का दूध दे लेकर कोई बात ना है तो आप अगर देंगे तो नुकसान दे तो
0: नहीं, बकरी का दूध बकरी के बच्चे के लिए है, आपके बच्चे के लिए नहीं है।
2: जी
1: बिल्कुल सही बात है,
2: धन्यवाद कॉल करने के लिए आपका, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई है, 6 महीने तक माँ के दूध की सिफारिश की जाती है, लेकिन एक बात और भी है डॉक्टर साहब, जब अस्पताल में किसी बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के लिए माँ का दूध अमृत तुल्य है, और
0: अमृत तुल्य है, अमृत है
2: जी, वो अमृत ही पिलाना चाहिए।
0: और हर माँ का दूध बच्चे के हिसाब से होता है, जिस माँ का बच्चा 26 वीक का है उसका दूध उसके बच्चे के हिसाब से।
2: अच्छा ये बात,
0: और अगर जिसका बच्चा टर्म बेबी है, जिसका फुल टर्म बेबी है, उस माँ का दूध अलग होता है। अच्छा। तो ये टेलर मेड होता है, जो नवजात शिशु है उसकी जरूरत के हिसाब से उसकी माँ को दूध होता है, और उतना ही होता है जितना जरूरत होती है। तो आप ऊपर का जब दूध पिलाने की कोशिश करते तो माँ का दूध कम हो जाता है। अच्छा। एक चीज, और इसलिए एक माँ दूसरे माँ को दूध, अगर प्रीमेच्योर बच्चा है तो उसको उसी माँ का दूध चाहिए जो उसकी रियल में माँ है।
2: अच्छा,
0: या उसी उतने हफ्ते की डिलीवरी हुई है,
2: यानी जिसके गर्भ से बच्चा उत्पन्न हुआ है उसी माँ का दूध उसके।
0: हाँ वो टेलर मेड है, जैसे आप दर्जी के पास जाते हो तो आपके हिसाब से पैंट शर्ट बनाता है, रेडीमेड नहीं है ये, है ना।
2: डॉक्टर साहब ये और बताइएगा, कई बार महिलाएं कहती हैं जो प्रसव के उपरांत दूध नहीं आता माँ को, तो ये बात वाकई में सत्य है? विज्ञान क्या कहता है इस विषय में?
0: देखिए ये सिर्फ इंसानों की सोच है कि, और कोई प्राणी तो ये सोचता ही नहीं है कि दूध कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, सब माँ के दूध पे पूरी कुदरत चल रही है, कोई ऊपर प्रकृति ने कोई कहीं छेड़छाड़ नहीं करता। इंसान थोड़ा समझदार हो गया वो छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, वो अपने फालतू सोचने की कोशिश करता है कि माँ को दूध नहीं हो रहा, कम हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, लेकिन माँ को दूध पर्याप्त होता है। हर माँ को, जिस माँ के 2 बच्चे होते हैं उसको, उस माँ को 2 बच्चे के हिसाब से दूध होता है
2: जी।
0: और जब बच्चे का जैसे शुरू का दूध अलग होता है तो बोलते हैं कि शुरू के 7-8 दिन जो दूध होता है वो अलग होता है
2: जी।
0: और शुरू के 2-3 दिन बिल्कुल दूध अलग होता है जिसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं
2: जी।
0: और बच्चा जब 15 दिन को जाता है तो वो दूध अलग हो जाता है।
2: अच्छा।
0: तो वो हर दिन के हिसाब से दूध का क्वालिटी बदलती जाती है, उसमें प्रोटीन कंटेंट, मिनरल कंटेंट, वो सब चेंज होते जाते हैं
2: बच्चे की आवश्यकता के
0: अनुसार। जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं उनकी माओ को दूध में प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा होती है क्योंकि उनको ग्रोथ करनी होती है, उनको विकसित होना होता है
2: जी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, चूंकि अभी भी बातें बहुत सी ऐसी हैं जो कि हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते थे, लेकिन समय सीमा हमारे सामने है, फिर भी हम चाहेंगे आज के रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम के माध्यम से कोई खास संदेश, हालांकि कई ऐसे संदेश हैं जो हमारे श्रोताओं को आज जरूर मिले होंगे, फिर भी आप चलते चलते क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, मैं कहना चाहूंगा, एक तो जब भी कोई जो प्लानिंग हो आपकी गर्भ धारण करने की,

0: इट शुड नॉट बी एक्सीडेंटल।
1: अच्छा,
0: ये नहीं कि साहब माँ गर्भ धारण कर लिया मैंने। आपकी एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए
1: जी।
0: माता पिता दोनों को डॉक्टर से अपने मिलके
1: जी
0: प्लान करके बच्चे को आप लाएं दुनिया में
1: जी।
0: दूसरी चीज माँ का रेगुलर चेकअप कराएं, अपने लेडी डॉक्टर को समय समय पर वो जब जब आपको बुलाएं, माँ को समय से टीके लगवाएं, माँ का ब्लड प्रेशर, माँ की यूरिन, माँ की शुगर, माँ का थायराइड और जो भी आवश्यक हो वो जांच कराएं
1: जी।
0: ना, फिर उसके बाद उसका जो जन्म है
1: जी
0: वो एक ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे आपको चाइल्ड स्पेशलिस्ट या पीडियाट्रिशियन तुरंत मिल जाए
1: जी।
0: बच्चा अगर प्रीमेच्योर पैदा होने का अंदेशा है तो माँ को स्टीरॉइड कोर्स के हिसाब से लगना चाहिए, बीटामेथासोन या डेक्सामेथासोन
1: जी।
0: और बच्चा अगर प्रीमेच्योर पैदा हो गया है उसके बाद उसे देखभाल ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे उसे प्रॉपर उचित देखभाल मिल सके
1: जी।
0: सिर्फ नर्सरी में रख देने से किसी बच्चे की परवरिश नहीं होती, उस बच्चे को क्या दिया जा रहा है और उसको जब हम बचा के दे रहे हैं तो उसका सर्वाइवल इंटैक्ट है या नहीं, उसको हम बच्चा अगर जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट यानी कोई विकलांगता नहीं होनी चाहिए, बच्चा हमारी कान सही होना चाहिए, उसकी हियरिंग सुनने की क्षमता ठीक होनी चाहिए, उसकी देखने की क्षमता ठीक होनी चाहिए, उसका आईक्यू सही होना चाहिए, वो फिजिकली मेंटली बिल्कुल फिट होना चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि आप एक ऐसी जगह एक ऐसे सेंटर पे इलाज कराएं जहाँ पे सारी सुविधाएं हो। आप अगर ये सोच के कि नर्सरी में हमने बच्चा रख दिया सब जगह नर्सरी एक सी है सब जगह एक सा इलाज होता है, ये गलत एक धारणा है, इस धारणा से बचें। तो और हर बच्चे को शुरू के 6 महीने सिर्फ माँ का दूध पिलाएं, समय से उसको टीके लगवाएं और उसकी सफाई का ध्यान रखें और कोई घर में अगर किसी को खांसी बुखार है वो बच्चे से दूर रहे।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम शिक्षित हैं तो हमें शिक्षित होने का प्रमाण भी देना चाहिए
0: जी।
1: जो बातें आपने बताई हैं अगर हमारे श्रोता ध्यान रखते हैं तो उनके नवजात शिशु एक अच्छे युवा, हम ये कहेंगे कि
0: देश के लिए एक अच्छे नागरिक,
1: देश के लिए अच्छे नागरिक बन करके आगे आएंगे
0: और माँ का दूध पिलाएं तो 2-4 आइंस्टीन भी पैदा होंगे देश में
1: जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे श्रोताओं को समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर एवं अन्य मशीनों की उपयोगिता के विषय में विस्तृत जानकारी दी। स्टूडियो में आने के लिए, जानकारी देने के लिए डॉक्टर कुलदीप गंगवार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार पांडे जी और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
3: गंगवार हॉस्पिटल, निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
2: समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के इलाज की विशेष सुविधा,
3: अविकसित फेफड़ों के उपचार के लिए सर्फेक्टेंट थेरेपी,
2: टेम्परेचर नियंत्रण के लिए विशेष इंक्यूबेटर जिराफ ओमनी बेड,
3: सांस नियंत्रण के लिए सीपैप वेंटिलेटर, एचएफएनसी और ईयर वो मशीनें,
2: बच्चों के जन्म के समय होने वाली जटिलताओं के लिए बिना खून निकाले पीलिया की जाँच,
3: खास तरह के वेंटिलेटर HFO ऑक्सीलेटर, थेरेप्यूटिक हाइपोथेरेमिया बाय क्रिटिकूल,
2: ब्रेन मॉनिटरिंग के लिए CFM, बेड साइड इको, अल्ट्रासाउंड की सुविधा,
3: साथ ही बच्चों में पीलिया, सेप्टिक इन्फेक्शन, निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की विशेष सुविधा।
2: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक चैरिटेबल OPD,
3: बरेली का अत्याधुनिक बाल चिकित्सालय
2: गंगवार हॉस्पिटल,
3: निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
2: इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 9457096487।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन। आज का विषय था समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की गंभीर बीमारियों और उनके इलाज में वेंटिलेटर एवं अन्य मशीनों की भूमिका। विशेषज्ञ थे डॉक्टर कुलदीप गंगवार। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 MHz पर।
5: ये आकाशवाणी, अब आप संजय मिश्रा से दिल का हाल सुनिए। दिल का हाल ये है कि आकाशवाणी बरेली का स्थापना दिवस और मैं आकाशवाणी की तरफ से, अपनी तरफ से उन तमाम आकाशवाणी सुनने वालों को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, सुनते रहिए। आकाशवाणी हमारा है, हमको इसे बताना है।
4: दोस्तों, आपने ट्यून किया है 100.4 आकाशवाणी का बरेली केंद्र। आइए अब हम आपको जोड़ते हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र के कार्यक्रमों से।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी का, ये लखनऊ केंद्र है। हिंदी कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।

0: में भेंटवार्ता, खाड़ी युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इस विषय पर डॉक्टर अशोक कुमार कैथल से बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी।
1: भारतीय अर्थव्यवस्था को एक पंख लगा 1992 में, जब यहाँ ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, यानी खुली अर्थव्यवस्था का इंतजाम किया गया और उसी के आधार पर हमारी विकास की गति काफी कुछ निर्धारित होने लगी। जो पहले स्वकेंद्रित थी, वह पूरे विश्व के पटल पर आते हुए तमाम तरह के आयाम से गुजरते हुए आगे बढ़ती गई। आज स्थिति हम देख ही रहे हैं कि कहाँ पर हम हैं। कुछ स्थितियां, परिस्थितियां हैं, बातें हैं और शिकायतें भी हैं, जिसके आधार पर हम ये कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है या फिर औसतन है या फिर किसी किसी क्षेत्र में बिल्कुल बुरी है। तो इन तीन तथ्यों के बीच से हम आगे जब सोचते हैं तो निश्चय ही किसी न किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है। और आज आपने सुना कि आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर अशोक कुमार कैथल साहब हैं, जो कि प्रोफेसर हैं यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के। तो बेहतर से बेहतर जानकारी आपके पास है। कैथल साहब, स्वागत करते हैं स्टूडियो में।
2: जी नमस्कार।
1: जानना चाहेंगे आपसे कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था जिसे हम कहते हैं, वह किस रूप में है?
2: जब हम बात करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है, तो हम थोड़ा सा इसका ऐतिहासिक पक्ष देने की कोशिश करेंगे कि इसके बारे में आम जनमानस जान सके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जनसंख्या बहुल राष्ट्र बन चुका है, और अगर आप इसके बारे में बात करें, चाइना को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। 147 करोड़ के लगभग भारतवर्ष की जनसंख्या इस समय भारतवर्ष में निवास कर रही है, और ये बहुत बड़ा चुनौती के रूप में भारतीय जो सरकारें हैं उनके समक्ष एक चुनौती दे रहा है। और दूसरी बात जो जाननी जरूरी है कि हम बार बार बात करते हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी बढ़ रही है, तो वर्तमान में 4.15 ट्रिलियन डॉलर की नॉमिनल जीडीपी भारतीय अर्थव्यवस्था की है, और प्रति व्यक्ति आय 2813 नॉमिनल पर कैपिटा इनकम इस समय लोगों के पास आ रही है, और जीडीपी ग्रोथ रेट का जो प्रोजेक्शन है वो लगभग 6.5% से 7.5% के मध्य देखने को मिल रहा है, जो आने वाले समय में बढ़ने की तरफ रुझान को प्रेरित कर रहा है कि हम लोग शायद विकसित राष्ट्र की श्रेणी में भी सम्मिलित हो जाएंगे।
1: बहुत अच्छी बात है, विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन जो अभी आपने उदाहरण दिया चीन की अर्थव्यवस्था का पॉपुलेशन की दृष्टि से, तो चीन सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हुआ करता था, अब हम हैं, तो ऐसी स्थिति क्या हम खोज सकते हैं कि अर्थव्यवस्था जो हमारी है उसको सुदृढ़ करने के लिए कहीं ना कहीं यह लाभकारी भी है, अगर चीन की दृष्टि से देखा जाए तो?
2: देखिए, चाइना की जो हम बात करते हैं, चीन की अर्थव्यवस्था का जो सकारात्मक पक्ष है वो ये है कि चीन ने अपने जो मानव संसाधन है उसकी स्किल, जिसे बोलते हैं दक्षता, निपुणता, परिपक्वता, उस पे सुधार किया है, टेक्निकल एजुकेशन पे जोर दिया है, इंग्लिश जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको इम्प्रोवाइज किया है। तभी आप देखते हैं कि कभी माना जाता था कि आईटी सेक्टर में इंडिया डोमिनेट कर रहा है, इंडियन लोगों को ज्यादा डिमांड होती है, लेकिन आज वो नजरिया बदलता हुआ आपको दिखता है वैश्विक पटल पे। चाइना के लोगों की जो मांग है टेक्नीशियंस की, आईटी सेक्टर के लोगों की, वो लगातार बढ़ती जा रही है, और भारतवर्ष कहीं पीछे नजर आता है। तो हमें मानव संसाधन की दक्षता, निपुणता, टेक्निकल एजुकेशन पे जोर देने की जरूरत है, उसके बिना हम चाइना को पीछे नहीं छोड़ सकते।
1: शायद इसीलिए कौशल विकास कार्यक्रम जो शुरू किया गया है, संभवतः एक कदम हो सकता है उस तरफ, लेकिन उधर से आगे बढ़ते हुए हम कहेंगे कि किसी भी जगह पर ऊर्जा का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है, चाहे वह परिवार की बात करें, समाज की बात करें या देश स्तर पर बात करें, हर जगह ऊर्जा के बिना विकास उतना तेज गति नहीं पकड़ पाता है जितना कि होना चाहिए। आजकल स्थितियां, परिस्थितियां आप देख ही रहे हैं कि कैसी है, खाड़ी युद्ध को लेकर के। ऐसे में आप क्या एक मूल्यांकन देख पा रहे हैं या फिर संभावनाएं तलाश पा रहे हैं?
2: देखिए, खाड़ी युद्ध वैश्विक प्रभाव डाल रहा है आर्थिक पक्ष पे, और आपने जैसा देखा कि यूएसए के द्वारा और इसराइल के द्वारा जो ईरान पे अटैक किया गया,

0: उसका एक नेगेटिव नकारात्मक जो प्रभाव है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था पे पड़ रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, जहाँ से आपका आवागमन है, जो वाटरवे है, जिसे आप जल डमरू कहते हैं,
1: जी
0: जलमार्ग कहते हैं, वो ओमान और ईरान के बीच का जलमार्ग है, जिससे लगभग जितना भी क्रूड ऑयल का जो संचालन आवागमन है वो लगभग 20% जो वैश्विक पटल पे जाता है, प्रेशर होता है उसका, वो वहीं उसी के थ्रू होता है। तो उसका असर आपको वैश्विक अर्थव्यवस्था पे देखने को मिलेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था भी उससे अछूती नहीं है, उसका दुष्प्रभाव आपको दिख रहा है और लगातार वो बढ़ता जा रहा है। अगर इसको थोड़ा सा और मैं एलाबोरेट करूं तो इसको समझने
1: जी
0: की कोशिश करिएगा। जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि 90% ऊर्जा स्रोत जो क्रूड ऑयल है उसका हम आयात कर रहे हैं, और जब लिक्विफाइड नेचुरल गैस की बात होती है तो हमारी डिपेंडेंसी लगातार कतर जैसे राष्ट्र पे है। और जब हम एलपीजी की या क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो यूएई है, सऊदी अरेबिया है, इन सब का भी प्रभाव है। इसको जरा सा मैं और स्पेसिफाई कर दूं,
1: बिल्कुल
0: 34% जो आयात है वो कतर से कर रहे हैं हम, 26% आयात हम यूएई से कर रहे हैं, 8.3% का जो आयात है कुवैत से हो रहा है, 11% सऊदी अरेबिया से। तो ये जो पक्ष है, हम जब इतना हमारी जो निर्भरता है गल्फ या खाड़ी देशों पे जब बनी हुई है, तो उसका इम्पैक्ट, जो प्रभाव है, चाहे वो दुष्प्रभाव हो चाहे अच्छा हो, दोनों पक्ष आपको देखने को मिलते हैं, और अर्थव्यवस्था उसके प्रभाव से अछूती नहीं रह पाती।
1: लेकिन इस खाड़ी युद्ध के आधार पर अगर हम देखें तो क्या केवल तेल या फिर गैस के क्षेत्र को छोड़ें तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था हमारी जो है केवल इन्हीं दो पर तो है नहीं, क्या इसका असर जो शेष अवयव हैं उस पर भी पड़ रहा है?
0: देखिए, जब भी हम ऊर्जा की बात करते हैं, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, आपको पता है कि जब हम आर्थिक क्षेत्रों की बात करते हैं तो उसमें कृषि क्षेत्र है, उद्यम है, सेवा क्षेत्र है, सभी का अपना रोल है, भूमिका है। और अगर कोई भी पक्ष अर्थव्यवस्था का पीछे रह जाता है तो फिर आप देखेंगे कि उसका दुष्प्रभाव आपको दिखता है, आपको जीडीपी ग्रोथ रेट के रूप में, सोशल सेक्टर के वेलफेयर ओरिएंटेड स्कीम्स के उन्नयन में, उसके विकास में, और जो मेन है, यानी आप अगर देखेंगे कि जो क्रिएशन ऑफ जॉब्स है वो एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी के साथ आता है। अगर अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, यानी कृषि क्षेत्र का विस्तार होगा, उद्यमों का विस्तार होगा, सेवा क्षेत्र का विस्तार होगा, तो साथ ही साथ आप देखेंगे कि रोजगार का सृजन भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, सेवा क्षेत्र भी बढ़ता हुआ दिखेगा, सोशल सेक्टर का एक्सपेंशन होगा, जिससे कि सोशल सिक्योरिटी जैसे प्रावधान आपको दिखते हैं, और वो सकारात्मक ऊर्जा के साथ अर्थव्यवस्था के विकास को आगे बढ़ाता है। और जैसा कि आपने प्रश्न किया कि क्या दूसरे क्षेत्र इस प्रभाव से, जो खाड़ी युद्ध हो रहा है उससे प्रभावित है, तो मैं आपको बताऊं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो सेवा क्षेत्र का है, यानी 75% फूड सर्विसेज इंडस्ट्री है वो एलपीजी पे निर्भर है, और एलएनजी का इंपोर्ट आपका लगातार प्रभावित हुआ है, और 2024-25 में भारत वर्ष के द्वारा 27 मैट्रिक मिलियन टन का लिक्विफाइड नेचुरल गैस का आयात किया गया था, जिसमें से 50% केवल कतर से था, जैसे मैंने बताया। और कतर की जब हम बात करें, ये जो एलएनजी है ये फर्टिलाइजर के प्लांट में उपयोग की जाती है, गैस के नेटवर्क को बढ़ाती है, साथ ही साथ इसकी जो सप्लाई अगर प्रभावित तो होगी तो इसका दुष्प्रभाव आपको हर जगह दिखेगा।
1: कहने का मतलब ये हुआ आपका कि तेल और गैस पर जितनी भी चीजें आधारित हैं वो तो हैं ही, लेकिन तेल का खेल जो कहते हैं कि बहुत व्यापक होता है, वह निश्चय ही प्रत्येक जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन की चीजें हैं उन सब पर पड़ रहा है, तो इससे हमारे ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जितना कुछ मैनेज किया गया है भारत सरकार के द्वारा, उसमें यह देखा जा रहा है कि 6 से 6.5% की ग्रोथ हमारी बनी रह सकती है, जो वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं उसके कारण। और भविष्य में एथेनॉल वगैरह की बात है ही, देखा जाएगा आगे क्या होता है, कैसा होता है, तो फिर से आपसे बात करेंगे। आज आपने समय निकाला, स्टूडियो आया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सर।
2: हिंदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, खाड़ी युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव।

इस विषय पर डॉक्टर अशोक कुमार कैथल से बातचीत कर रहे थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है किशोर चतुर्वेदी के स्वर में कुछ भजन। सबसे पहले प्रस्तुत है सूरदास की रचना किशोर चतुर्वेदी के स्वर में।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं किशोर चतुर्वेदी के स्वर में भजन। आइए सुनते हैं एक और रचना सूरदास की।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे किशोर चतुर्वेदी के स्वर में भजन। ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से हाजिर है। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं बादशाह फिल्म के इस गीत से।

0: माँ सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें।

0: रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
2: पलक मुच्छल और अल्तमश की आवाजों में

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती है। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती है।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: ये जवानी है दीवानी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत तोची रैना और रेखा भारद्वाज।

0: चित्रपट से कार्यक्रम में अभी आपने ये गीत सुना। अब आज का चित्रपट से कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को है। अब दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या प्रसारित होगी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के

0: अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियॉन में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियॉन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
1: जी प्रियंका, देखिए भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती

0: और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जांच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई औद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैंड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
3: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
4: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक

0: सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
1: नो टेररिज्म एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
2: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
3: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
2: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियॉन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आशा भोसले और अनवर के गाये गीत से। निदा फाजली के लिखे इस गीत की धुन बनाई है खयाम ने। फिल्म का नाम है आहिस्ता आहिस्ता।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला

0: तरह रखा था, और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
0: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
0: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अभी आपने किनारा फिल्म में लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह को सुना। गुलजार के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी आर डी बर्मन ने।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: इस समय आप सुन रहे कार्यक्रम आपके लिए, लीजिए अब सुनिए लव स्टोरी फिल्म का गीत लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

0: जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: लीजिए सुनिए जगजीत सिंह और चित्रा सिंह को फिल्म साथ साथ में। कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में गीत की रचना की है जावेद अख्तर ने।

0: इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: यह है विविध भारती।
2: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित मध्य।

0: अनुसार लगती हैं कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा, एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है, एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गायक, संगीतकार और निर्माता की, जिनके बारे में सलील चौधरी ने कहा था, अगर ईश्वर किसी आवाज में गाते तो वो हेमंत कुमार की आवाज में ही गाते।

0: जी हाँ, आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर।
1: देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शो

हेमंत कुमार का जन्म 16 जून 1920 को हुआ था बनारस में। ये जानकर आपको हैरत हो सकती है कि हेमंत कुमार का ताल्लुक बनारस से रहा था। उनके पिता वहां काम किया करते थे। बाद में उनका परिवार कोलकाता चला गया था, लेकिन बनारस से ताल्लुक होने का एक बहुत बड़ा फायदा हेमंत कुमार को किस गाने में मिला, याद है आपको? फिल्म मुनीम जी का ये गाना सुनिए। किस बनारसी अदा के साथ हेमंत कुमार ने इस गाने को गाया है।

हाँ, तो मैं कह रहा था कि हेमंत कुमार का जन्म तो भले बनारस में हुआ था, लेकिन उनका परिवार बाद में चला गया कोलकाता। कोलकाता में हेमंत कुमार को संगीत का शौक लगा और वहां उनकी संगीत की शिक्षा दीक्षा चलने लगी। 12वीं की परीक्षा देने के बाद हेमंत कुमार बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट जाधवपुर आ गए और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, इसलिए वो संगीत की ओर बढ़ गए। हालांकि माता पिता ने इसका घना विरोध किया, लेकिन उन्होंने संगीत की अपनी रुचि को छोड़ा नहीं। बीच में एक दौर ऐसा आया जब उन्होंने लिखने की तरफ भी अपने कदम बढ़ाए। जानी मानी बांग्ला पत्रिका देश में उन्होंने अपनी कहानी प्रकाशित करवाई। सन 1930 के दशक के आखिर में वो संगीत की दुनिया में चले आए। सन 1935 में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने कोलकाता के आकाशवाणी केंद्र पर अपना पहला बांग्ला गीत रिकॉर्ड करवाया। हेमंत कुमार ने उस्ताद फैयाज खां और फणीभूषण गांगुली से भी संगीत की तालीम ली थी। सन 1937 में हेमंत कुमार का पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड आया कोलंबिया के बैनर तले। इसके बाद हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली गई। सन 1941 हेमंत कुमार ने पहली बार फिल्मों में गाया। ये बांग्ला फिल्म थी निमाई संन्यास और इसके संगीतकार थे हरि प्रसन्न दास। हेमंत कुमार ने अपने पहले हिंदी गीत रिकॉर्ड करवाए फिल्म इरादा में सन 1944 में। इस फिल्म के संगीतकार थे पंडित अमरनाथ और गाने लिखे थे अजीज काश्मीरी ने। हेमंत कुमार रवींद्र संगीत के विशेषज्ञ माने जाते थे। सन 1944 में बांग्ला फिल्म प्रिय बंधावी के लिए उन्होंने रवींद्र संगीत रिकॉर्ड किया था पहली बार। बतौर संगीतकार हेमंत कुमार की पहली फिल्म थी अभियात्री। ये बांग्ला फिल्म सन 1947 में आई थी।

1940 के दशक के मध्य में हेमंत कुमार इप्टा में शामिल हो गए और वो जननाट्य करने लगे। यहाँ सलील चौधरी भी उनके साथ शामिल थे। सन 1943 में बंगाल में पड़े अकाल के दौरान जन जागृति का काम किया इप्टा ने, और सन 1947 में हेमंत कुमार ने अपना गैर फिल्मी गीत रिकॉर्ड किया गनेर बंधु, जिसमें संगीत सलील चौधरी का था। हेमंत कुमार इस दौर में बांग्ला फिल्मों में संगीत दे रहे थे। इनमें से कई फिल्मों के निर्देशक हेमेन गुप्ता थे। कुछ समय बाद हेमेन गुप्ता मुंबई फिल्म जगत में पैर जमाने के लिए चले आए और इसके बाद उन्हें मिली फिल्मिस्तान की फिल्म आनंद मठ। फिल्म आनंद मठ का निर्देशन करते समय हेमेन गुप्ता ने कोलकाता से हेमंत कुमार को भी मुंबई बुला लिया। इस तरह से मुंबई में हेमंत कुमार की पहली फिल्म बनी सन 1952 में आई आनंद मठ।

इसी फिल्म में हेमंत कुमार ने लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड किया वंदे मातरम। आनंद मठ ने मुंबई में हेमंत कुमार के पैर जमा दिए। इसके बाद उन्होंने फिल्मिस्तान की फिल्म की

इसी दौरान बतौर प्लेबैक सिंगर हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली जा रही थी। देवानंद की फिल्म जाल में सचिन देव बर्मन ने हेमंत कुमार से ये गाना गवाया।

इसके बाद आई घर नंबर 44, फिर देवानंद के लिए हेमंत कुमार ने ये शरारती गीत गाया फिल्म 16 साल के लिए।

50 के दशक तक हेमंत कुमार एक प्रसिद्ध गायक और संगीतकार बन चुके थे। सन 1954 हेमंत कुमार के करियर की नई ऊंचाई फिल्म नागिन। फिल्म नागिन के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए।

सन 1955 में हेमंत कुमार को मिला सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म नागिन के लिए। 1950 के दशक के आखिर में हेमंत कुमार ने अपना बैनर शुरू किया हेमंता बेला प्रोडक्शंस, और इस बैनर के तले उन्होंने बनाई फिल्म नील आकाशेर नीचे। ये फिल्म सन 1959 में आई थी और इसके निर्देशक थे मृणाल सेन। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इसके तकरीबन 10 साल बाद हेमंत कुमार ने एक नया प्रोडक्शन हाउस खोला। इस बार उन्होंने नाम रखा गीतांजलि प्रोडक्शंस। हिंदी सिनेमा के इतिहास की कुछ बेमिसाल फिल्में दी गीतांजलि ने, जैसे 20 साल बाद, कोहरा, बीवी और मकान, फरार, राहगीर और खामोशी, जिसका गुलजार का लिखा ये गीत दिल की गहराई में उतर जाता है।

प्यार के गाने सीधे दिल की गहराइयों में उतरते हैं। उनकी आवाज में एक गंभीरता है, दूसरी तरफ उनकी आवाज में एक शोखी भी नजर आती है। कुछ खास गानों में यूं लगता है जैसे कोई दार्शनिक नदी के किनारे अपना सुर छेड़ रहा हो।

आज भी हेमंत कुमार को सुनने वालों की कमी नहीं है। हेमंत दा की आवाज विविध भारती ही नहीं दुनिया भर के रेडियो चैनलों पर गूंजती है और लोग उनकी आवाज को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। हेमंत कुमार बतौर संगीतकार बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं बतौर संगीतकार उनकी कुछ निराली रचनाएं।

0: फिल्म मिस मैरी साल 1957, किशोर कुमार का ये मजाहिया गाना।
1: गाना न आया, बजाना न आया, दिल

0: बनाना।
1: 26 सितंबर 1989, 69 साल की उम्र में कोलकाता में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने आखिरी सांस ली। रह गई उनकी आवाज, उनका दिया हुआ संगीत और उनकी बनाई हुई फिल्में।

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: लखनऊ केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण।
1: दर्पण। नमस्कार श्रोताओं, खेल दर्पण का आज का अंक लेकर मैं रमनप्रीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का कार्यक्रम दो भागों में है। पहले भाग में फीफा वर्ल्ड कप 2026 और दूसरे भाग में भारत के लोकप्रिय खेल कुश्ती पर भेंटवार्ता को लिया गया है।

मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रमनप्रीत सिंह, और आज अगले कुछ मिनटों में अपनी सीट की पेटी कस लीजिए, क्योंकि हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहां धड़कनें तेज हो जाती हैं, सांसें

थम जाते हैं और पूरी दुनिया एक गेंद के पीछे दीवानी हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की।

हवा में उत्साह है, मैदान तैयार है और इस वक्त उत्तरी अमेरिका के तीन खूबसूरत देशों अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में फुटबॉल का ऐसा बुखार चढ़ा है जो इतिहास में कभी नहीं देखा गया। चाहे आप मेसी के जादुई ड्रिबल्स के दीवाने हों, रोनाल्डो की बुलेट जैसी फ्री किक के मुरीद हों या एम्बापे की बिजली जैसी रफ्तार के फैन, आज का यह खास प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम न सिर्फ इस साल चल रहे वर्ल्ड कप के रोमांच पर बात करेंगे बल्कि उस इतिहास के पन्ने भी पलटेंगे जिसने इस खेल को दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बना दिया।

दोस्तों, इस बार का फीफा वर्ल्ड कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, यह एक उत्सव है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। क्यों? चलिए आपको इसके पीछे के दिलचस्प आंकड़े बताता हूँ। सबसे पहली बात, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि वर्ल्ड कप की मेजबानी तीन देश मिलकर कर रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। कड़ाके की ठंड से लेकर चिलचिलाती धूप तक 16 अलग अलग शहरों के शानदार स्टेडियमों में यह जंग चल रही है। और बात सिर्फ तीन देशों की नहीं है, इस बार फीफा ने फुटबॉल प्रेमियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। अब तक हम और आप सिर्फ 32 टीमों को वर्ल्ड कप में भिड़ते देखते थे, लेकिन इस बार दिल थाम लीजिए, पूरे 48 देश इस सुनहरी ट्रॉफी के लिए जी जान लगा रहे हैं। 48 टीमें, 12 ग्रुप्स और कुल मिलाकर 104 मुकाबले, यानी एक पूरा महीना सिर्फ और सिर्फ शुद्ध फुटबॉल का रोमांच। इस नए फॉर्मेट ने टूर्नामेंट को और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना दिया है। ग्रुप स्टेज से टॉप दो टीमें तो आगे जाएंगी ही, साथ ही तीसरे स्थान पर रहने वाली 8 सर्वश्रेष्ठ टीमें भी नॉकआउट स्टेज यानी राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह बनाएंगी। इसका मतलब है कि हर एक गोल, हर एक सेकंड और हर एक कॉर्नर किक किसी भी टीम की किस्मत बदल सकती है। कोई भी टीम खुद को सुरक्षित नहीं मान सकती।

लेकिन दोस्तों आज हम 48 टीमों के इस महाकुंभ को देख रहे हैं, तो जरा सोचिए इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं साल 1930 में। जी हाँ, आज से करीब 96 साल पहले उरुग्वे की धरती पर पहला फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था। उस समय ना तो आज जैसी सुख

सुविधाएं थीं और न ही रंगीन टेलीविजन। सिर्फ 13 टीमों ने उसमें हिस्सा लिया था और मेजबान उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हराकर पहला खिताब अपने नाम किया था। वहां से शुरू हुआ यह सफर हर 4 साल में और बड़ा और बेहतर होता गया। इस सफर ने हमें ऐसे महानायक दिए जिन्हें दुनिया कभी भी भुला नहीं सकती। पेले, ब्राजील के वो जादुई खिलाड़ी जिन्होंने अपनी कलात्मक फुटबॉल से 3 बार 1958, 1962 और 1970 में अपनी टीम को विश्व चैंपियन बनाया। उन्हें आज भी फुटबॉल का राजा कहा जाता है, डियोगो माराडोना। साल 1986 का वो वर्ल्ड कप, इंग्लैंड के खिलाफ वो हैंड ऑफ गॉड गोल और उसके ठीक बाद 5 खिलाड़ियों को छकाते हुए किया गया सेंचुरी का सर्वश्रेष्ठ गोल। माराडोना ने फुटबॉल को एक कला से ऊपर उठाकर जुनून बना दिया। लियोनेल मेसी, और भला हम साल 2022 के कतर वर्ल्ड कप के उस ऐतिहासिक फाइनल को कैसे भूल सकते हैं। लियोनेल मेसी का वो आंसू भरा चेहरा और जब उन्होंने आखिरकार उस सुनहरी ट्रॉफी को चूमा और अपने देश अर्जेंटीना को विश्व विजेता बनाया, वह आधुनिक फुटबॉल का सबसे भावुक पल था। फुटबॉल का इतिहास ऐसी ही कहानियों, आंसुओं, जीत और हार के रोमांच से भरा पड़ा है। चलिए इतिहास के पन्नों से बाहर निकलकर वापस आते हैं वर्तमान में। इस वक्त जो वर्ल्ड कप अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला जा रहा है, वहां पहले ही हफ्ते में धमाके शुरू हो चुके हैं। बड़ी बड़ी टीमों के पसीने छूट रहे हैं और जिन्हें कमजोर समझा जा रहा था वो दिग्गज टीमों की आंखों में आंखें डालकर खेल रही हैं। शुरुआती दौर के मुकाबलों पर नजर डालें तो कई रोमांचक नतीजे देखने को मिले हैं। जहां जर्मनी ने कुराकाओ के खिलाफ 7-1 की प्रचंड जीत दर्ज की है और अपने इरादे साफ कर दिए हैं, वहीं स्वीडन ने भी ट्यूनिशिया को 5-1 से हरा कर एक तरफा अंदाज में अपनी ताकत दिखाई है। लेकिन हर मैच एक जैसा नहीं है। कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 पर छूटा। ब्राजील जैसी 5 बार चैंपियन रही टीम को मोरक्को ने 1-1 की बराबरी पर रोक दिया और नीदरलैंड तथा जापान के बीच हुआ मुकाबला भी 2-2 की रोमांचक टक्कर के बाद बराबरी पर खत्म हुआ। यह दिखाता है कि इस बार मैदान पर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। हर गुजरते दिन के साथ टूर्नामेंट और भी ज्यादा कड़ा होता जा रहा है। फ्रांस, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, पुर्तगाल और स्पेन जैसी दिग्गज टीमें अब अपने अगले मुकाबलों के लिए कमर कस चुकी हैं। फुटबॉल पंडितों का मानना है कि इस बार का चैंपियन वही बनेगा जो 19 जुलाई को न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में होने वाले ग्रैंड फिनाले तक अपने धैर्य को काबू में रखेगा।

0: this time for Africa.
1: अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम भारत में बैठकर इस महामुकाबले का मजा कैसे लें, क्योंकि मैच तो आधी रात को या सुबह सुबह आते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारतीय फैंस के लिए फुटबॉल का यह बुखार अब पूरी तरह से मुफ्त होने जा रहा है। जी हाँ, भारत के पब्लिक ब्रॉडकास्टर डीडी स्पोर्ट्स पर इस वर्ल्ड कप के कई चुनिंदा और बड़े मुकाबले, खासकर नॉकआउट और बड़े मैचेस बिल्कुल फ्री प्रसारित किए जा रहे हैं। तो अगर आपके पास महंगा सब्सक्रिप्शन नहीं भी है, तब भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बस अपना टेलीविजन ऑन कीजिए और डीडी फ्री डिश लगवा लीजिए। दुनिया के सबसे बड़े खेल के गवाह बनिए।

भारत में भले ही हमारी क्रिकेट टीम दुनिया पर राज करती हो, लेकिन जब फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात आती है तो कोलकाता के सॉल्ट लेक से लेकर केरल के मल्लपुरम तक और मुंबई की गलियों से लेकर दिल्ली के पब्स तक पूरा देश फुटबॉल के रंग में रंग जाता है। चाय की टपरियों पर इस बात पर बहस छिड़ जाती है कि इस बार ट्रॉफी अर्जेंटीना ले जाएगी या फ्रांस जीतेगा या फिर ब्राजील छठी बार बाजी मारेगा।

घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमारे इस सफर का समय अब समाप्त होने वाला है, लेकिन फुटबॉल का यह सफर तो बस अभी शुरू ही हुआ है। अगले कुछ हफ्तों तक नींदें उड़ने वाली हैं, दफ्तरों और कॉलेजों में सिर्फ गो गो गो गोल का शोर सुनाई देने वाला है।

0: आइए कार्यक्रम के अगले भाग में सुनते हैं कुश्ती पर भेंटवार्ता, जिसमें हमारे मेहमान हैं ऋषि श्वेत सिंह, जो कुश्ती कोच एवं उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के सदस्य हैं, और भेंट करता है राघवेंद्र सिंह।
1: श्रोताओं, जब हम बात करते हैं कुश्ती की तो गांव के वो अखाड़े याद आ जाते हैं जिनमें पहलवान अपने शरीर पर मिट्टी लगाकर अपने दांव को सामने वाले पहलवान पर आजमाते थे और आज भी आजमाते हैं। तो किस तरह से जब हम इतिहास को देखते हैं तो मल्ल युद्ध नाम से इसे जाना जाता था, तो मल्ल युद्ध से कुश्ती और कुश्ती से मैट वाली कुश्ती का एक लंबा सफर तय किया है इस खेल ने, इस विधा ने। तो कुश्ती के विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ कुश्ती प्रशिक्षक ऋषि श्वेत सिंह जी। ऋषि श्वेत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद सर।
1: ऋषि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने कोचिंग करियर की शुरुआत कैसे की, किस बात ने आपको एक रेसलर से कोच बनने के लिए प्रेरित किया?
2: पहले तो मैं बता देना चाहूँ कि मैं लगभग 30 साल हो गए मुझे कुश्ती करते हुए। मैं 10-11 साल की उम्र से मैंने कुश्ती शुरू की थी और कुश्ती का रुझान मेरा इसलिए उसकी तरफ गया क्योंकि मेरे पिताजी भी वरिष्ठ कुश्ती प्रशिक्षक रहे तो मेरा अखाड़े से बचपन से मेरा और मैट की कुश्ती से मेरा नाता रहा
1: जी।
2: और मैंने फिर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में अपना कुश्ती प्रशिक्षण किया। उसके बाद मैं लखनऊ आया और लखनऊ विश्वविद्यालय की टीम से भी मैं बतौर खिलाड़ी और कुश्ती प्रशिक्षक के रूप में भी जुड़ा हुआ हूँ वर्तमान में
1: जी जी।
2: और मैं लगभग 15-16 साल से कुश्ती प्रशिक्षण का कार्य कर रहा हूँ। मैंने उत्तर प्रदेश कुश्ती खेल निदेशालय के अंतर्गत अंशकालिक प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया है और भारतीय खेल प्राधिकरण में भी मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बनारस में अखाड़े पे मेरी पोस्टिंग रही है
1: जी जी।
2: और इस वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के साथ जुड़ा हुआ हूँ और उनकी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व करता हूँ प्रशिक्षक के रूप में।
1: ऋषि जी, आपने जैसा कि बताया कि आपके पिताजी भी कुश्ती प्रशिक्षक थे तो आपने बहुत बड़ा समय, एक बड़ा लंबा समय आपने देखा हुआ है और इस क्षेत्र में जुड़े रहे हैं आप, तो बचपन में पिताजी को भी आप देखते रहे होंगे और आज खुद एक कोच के तौर पर हैं, तो तब से लेके अब तक आप इस खेल में क्या अंतर पाते हैं, खिलाड़ियों के मनोदशा में या परिस्थितियों में क्या अंतर पाते हैं आप?
2: देखिए, मैंने जब बचपन में कुश्ती देखी थी और कुश्ती खेलता था पिताजी के साथ अखाड़े में जाना, मैट पर जाना, तो वर्तमान समय में और उस समय के बीच अंतर है। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजीज का बहुत फर्क आया हुआ है
1: जी।
2: पहले जो कुश्तियाँ थी हमारे पास मैट तो थे मगर हमारे पास जैसे आज के समय में वीडियो एनालिसिस है या ऑनलाइन इंटरनेट पे या सोशल मीडिया के थ्रू हम किसी भी चीज को बहुत आसानी से देख लेते हैं, उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से कर लेते हैं। उस समय ये चीजें नहीं थी
1: जी।
2: उस समय आपके पास सीमित संसाधन थे और खेल की जो सुविधाएं थी वो भी बहुत सीमित थी
1: जी।
2: हर जगह मैट नहीं होते थे, ज्यादातर हमारे पहलवान मिट्टी के अखाड़ों में ही प्रैक्टिस किया करते थे। मगर आज वर्तमान के समय में हमें लगता है कि मिट्टी के अखाड़े के साथ साथ हमारे पास हर अखाड़े के पास लगभग मैट भी है और जो हमारे यहाँ एक पारंपरिक कुश्ती की मानसिकता थी लोगों ने अब उससे

0: बाहर आकर आधुनिक ओलंपिक कुश्ती की तरफ भी रुझान किया है, जिससे हमारी देश की कुश्ती दिन प्रतिदिन बहुत बेहतर होती जा रही है।
1: ऋषि जी, आपकी कोचिंग फिलॉसफी क्या है? आप एक अच्छे पहलवान में किन बुनियादी गुणों को देखते हैं?
0: देखिए, कोच के लिए फिलॉसफी का मतलब होता है कि सबसे पहला हमारा जो होता है वो अनुशासन।
1: जी
0: किसी भी खेल में आपको अनुशासन बहुत जरूरी है, और ये चीज सिर्फ खिलाड़ी के ऊपर नहीं लागू होती। इस चीज का सबसे पहली शुरुआत जो होती है वो प्रशिक्षक के रूप में ही शुरू होता है। अगर प्रशिक्षक अनुशासित है, नियमित है और अपने काम के प्रति समर्पित है, तो उसका खिलाड़ी उस चीज को देख के मोटिवेट होता है या प्रेरित होता है, और उसमें अपने अच्छा योगदान देने की कोशिश करता है।
1: कई बार ऐसा भी होता है कि खिलाड़ी कई प्रतियोगिताओं में हार जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको मानसिक तौर पर टूट जाता है। तो जब कोई अगर ऐसी परिस्थिति है, तो आप अपने खिलाड़ी को, जो आपका शिष्य है, उसे किस तरह समझाते हैं, या आप क्या सलाह देना चाहेंगे ऐसे?
0: देखिए, हम खेल के अंदर हार और जीत, खिलाड़ी को हम हमेशा पहले जब प्रैक्टिस सेशन में रखते हैं तभी ये बहुत प्रिपेयर करके रखते हैं कि जरूरी नहीं कि आप जो प्रैक्टिस करके जा रहे हैं आप हमेशा इससे जीतेंगे। तो आप अपने आप को पहले भी ये तैयार करके रखिए कि हो सकता है कि हम हारेंगे, तो हम इस चीज की तैयारी पहले से भी करके रखते हैं, जिससे कि उसके हारने पर
1: जी,
0: उसके ऊपर उसका बहुत नकारात्मक प्रभाव न पड़े। और खिलाड़ी को हम एक प्रशिक्षक के रूप में एक चीज हमेशा तैयार रखते हैं कि बेटा ये आखिरी नहीं है, ये आपकी हो सकता है शुरुआत हो, क्योंकि हर जीत का आनंद आपको हार से ही मिलेगा। तो आपने अगर कुछ हारा है तो आपको ये देखना है कि हमारे अंदर कहाँ कमी रह गई, उसको आजकल आधुनिकता की, जैसे मैंने बात की, तो हमारे पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं। अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा है या बहुत ज़्यादा निगेटिविटी हो रही है, तो हम काउंसलर रखते हैं और उनसे काउंसलिंग करवाते हैं, साइकोलॉजिकल और बाकी बतौर कोच हम एक गार्जियन के रूप में या उसके बेस्ट जो होता है उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये आखिरी नहीं है, इससे आगे भी मिलेगा। और हमारे बहुत से खिलाड़ियों ने देखिए ओलंपिक दर ओलंपिक पिछले में कुछ रहा, उससे आगे अच्छा किया और आगे अच्छे करते गए हैं।
1: अब जो वर्तमान कुश्ती जो होती है, रेसलिंग होती है, उसमें भार वर्ग का बड़ा महत्व होता है, तो ऐसे में वेट मैनेजमेंट भी एक समस्या बन जाती है खिलाड़ियों के लिए। इसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाते हैं?
0: हम लोग बच्चों को एक प्रॉपर वेट में पहले से डिसाइड होता है कि हाँ आपको इस वेट में करना, ड्यूरिंग ट्रेनिंग जब हम लोग उसका प्रशिक्षण चल रहा है उसमें उसी समय हम उसके वेट के ऊपर बहुत नजर रखते हैं, डाइट प्रोग्राम क्या है, उसको किस वेट में लड़ना है, क्योंकि आज के समय में हमारी जो प्रतियोगिताएं होती हैं वो सुबह शुरू होती हैं, ड्यूरिंग सेम डे वेट होता है और सेम डे ही पूरा टूर्नामेंट लगभग खत्म होता है। एक्सेप्शनल कुछ जो गेम्स हैं उसमें नेक्स्ट डे मेडल बाउट्स होती हैं, जैसा कि भी लास्ट ओलंपिक में हमारे साथ एक दुर्घटना हुई जिसमें हम लोगों ने अच्छा अपना मेडल खो दिया, तो उसके लिए हम बहुत प्रयास करते हैं और हमेशा वॉच रखते हैं बच्चों के ऊपर भी, और उनके साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं कि बच्चे की आखिर बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से वो किस वेट कैटेगरी के लिए फिट है। अब ऐसा नहीं कि बहुत बच्चा वेट जो है उसका स्ट्रक्चर उस तरह का है कि वो 60-70 किलो तक कर सकता है, अब उसको हम माइनस करके 55 में नहीं लाने की कोशिश करते, और ट्रेनिंग के दौरान हमेशा मॉनिटर करते हैं कि वेट बढ़ तो नहीं रहा, घट रहा है। हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट की टीम होती है, न्यूट्रिशंस की टीम होती है, वो उसको एनालिसिस करती रहती
1: जी,
0: है।
1: आजकल कुश्ती में वीडियो एनालिसिस और विरोधी खिलाड़ियों की कमजोरियों को समझने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। आप अपनी ट्रेनिंग में इन तकनीकों का उपयोग कैसे करते हैं?
0: आज अपनी गेम को सुधारने के लिए ये कि बहुत अच्छे संसाधन के रूप में है कि वीडियो एनालिसिस, कौन खिलाड़ी आया हुआ है प्रतियोगिता में, उसके पिछली बाउट्स परफॉर्मेंस क्या थी, उसकी वीकनेस कहाँ है, अपने खिलाड़ी की वीकनेस क्या है, अपना खिलाड़ी कहाँ पे स्ट्रांग है, इसको हम बहुत अच्छे से उसको यूज करते हैं। और टाइम टू टाइम हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में अब वीडियो एनालिसिस का बकायदा एक सेशन रखते हैं कि हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक सेशन हमारा वीडियो एनालिसिस का है, जिसमें हम सेशन वाइज या वीकली वाइज बच्चे की पूरी ट्रेनिंग रूटीन और उसके ऊपर हम एक्सपर्ट्स के साथ काम करते हैं, और बच्चों को भी बैठाते हैं कि हाँ आपने यहाँ गलती की है, आपकी ये पॉइंट आपका स्ट्रांग है, अपोनेंट आपके कंपटीशन में ये आएगा तो इसका लड़ने का तरीका ये है, इन सब चीजों के ऊपर हम बारीकी से अध्ययन कर लेते हैं जो हम ड्यूरिंग ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, 2 घंटे 2.5 घंटे का हमें सेशन करना है, तो हमें उसमें ट्रेनिंग करानी है, तो क्या गलतियां हो रही हैं, बार बार गलतियां हो रही हैं, तो उनको कैसे सुधारा जाए, तो ये चीज हम रिकॉर्ड करके लाते हैं, अदर टाइम में उसको बैठ के एनालिसिस करते हैं, फिर उस पे जाके हम नेक्स्ट सेशन में फिर काम करते हैं।
1: रेसलिंग में चोटों का जोखिम बहुत अधिक बना रहता है, खिलाड़ियों को इंजरी से बचाना पड़ता है, तो आपकी ट्रेनिंग शेड्यूल में किस तरह के सुरक्षा उपाय और वार्म अप रूटीन शामिल किए जाते हैं?
0: प्रॉपर यह है कि ट्रेनिंग शुरू करने से पहले प्रॉपर वार्म अप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि खिलाड़ी प्रॉपर वार्म अप हो, और उससे पहले उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन
1: जी
0: कि आज ट्रेनिंग के लिए वो कितना रेडी है। हो सकता है कि लास्ट सेशन उसके ऊपर बहुत ओवरलोडिंग हो गई हो, या
1: जी
0: मेंटली कोई और भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से वो ट्रेनिंग में ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो हमें सबसे पहले ट्रेनिंग सेशन शुरू करने से पहले उसकी मेंटल स्टेटस को देखना पड़ता है कि ये मेंटली वो कितना

0: ना फिट है,
1: जी
0: उसके बाद अगर उसको कोई मेंटली दिक्कत है या कुछ है तो उसके हिसाब से हम ट्रेनिंग लोड कम कर सकते हैं या अवॉइड करते हैं।
1: जी
0: नेक्स्ट ये आता है कि ट्रेनिंग से बचाना है तो प्रॉपर वार्म अप किया, एरर्स कम करें उसके ऊपर ध्यान देते हैं,
1: जी
0: अगर स्किल प्रॉपर तरीके से कर रहा है, अगर एरर नहीं है उसमें तो वो इंजरी कम से कम लगने के चांसेस हैं। जब गलतियां करेगा, और उसका सबसे बड़ा जो चीज होती है, मैंने जो बोला लोड, ट्रेनिंग लोड क्या है, मेन ये होता है। अगर ओवरलोड होके आया हुआ है प्लेयर तो आप लोग भी जैसे काम करते हैं, अगर ओवरलोड है तो नहीं कर
1: बिल्कुल
0: पाएंगे उस चीज को,
1: बिल्कुल
0: और गलतियां होती हैं, तो
1: जी।
0: हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में गलतियों का मतलब फिर चोट होता है।
1: अच्छा, अब जब कोई गेम चल रहा होता है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि आखिरी मिनट बचे हुए हैं, आखिरी कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं और सिर्फ एक दो पॉइंट्स का ही अंतर है, तो ऐसे में आपने मेंटल स्ट्रेंथ की बात की, तो ऐसा अगर जब कोई मौका आता है तो चूंकि ये आम बात है खेल में आना, तो उसके लिए खिलाड़ियों को आप किस तरह से तैयार करते हैं?
0: देखिए कंपटीशन में तो हम प्लेयर्स को बहुत मेंटली स्ट्रांग करके भेजते हैं।
1: जी
0: हाँ, मैच चल रहा है, कभी हो सकता है कि आप एक दो पॉइंट से आगे हैं, एक दो
1: जी
0: पॉइंट से पीछे चल रहे हैं, लास्ट है। जैसा कि हमारे उस समय पे खिलाड़ी की मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है,
1: जी
0: छोड़ना नहीं है। हमारे वर्ल्ड में 2 मेडल आए, एक ओलंपिक में और एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और जो कंडीशन आप बता रहे हैं मेन कंडीशन वही थी। हमारे रेसलर्स साक्षी मलिक 2016 लास्ट मिनट मेडल बाउट एकदम लूज कर रही, मेंटली स्ट्रांग थी,
1: जी
0: उसने अपना पूरा परफॉर्मेंस देने की कोशिश। तो एज ए कोच हम ये कहते हैं, बेटा आप अपना जो बेस्ट कर सकते हो जितनी आपके पास वो आप वहां पर लगाओ। साक्षी मलिक ने लगाया था, मेडल लाया। नरसिंह यादव वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, 12-4 से हार रहे थे,
1: जी
0: लास्ट में बाई फॉल करके 30 सेकंड अंदर उन्होंने कुश्ती जीती। तो उस समय मेंटल हेल्थ और मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर प्लेयर डिपेंड करता है, और एज ए कोच जो भी साथ में होता है, हम है, अदर कोच है, जो भी टीम कोच गया, वो फिर उस कंडीशन में ये कहता है, बेटा आप अपना ऑल आउट करो, जितना है आप अपना पोटेंशियल जो भी आपने सीखा है आप वो लगा दो वहां पे।
1: ऋषि जी, अभी आपने साक्षी मलिक जैसे बड़े महिला रेसलर की बात की,
0: जी
1: तो भारत में महिला कुश्ती का ग्राफ पिछले कुछ सालों से बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है। आपके अनुसार महिला पहलवानों को जमीनी स्तर पर आगे लाने में क्या मुख्य चुनौतियां हैं और उनका क्या समाधान है?
0: मुख्य चुनौतियां तो देखिए हमारे पास सबसे यही थी कि लोग महिलाओं को कुश्ती में भेजना नहीं चाहते थे,
1: जी
0: मगर आज के परिवेश में जो माहौल चल रहा है हमारे यहाँ, लोग डोमिनेट हैं कि हाँ हमारी बच्चियां जाएं,
1: जी
0: और जिसका परिणाम आप अगर हम राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की बात करें तो विगत वर्षों में हमने ये देखा है कि पहले था कि हरियाणा की गर्ल्स ज्यादा डोमिनेट कर रही थी, और जबकि हरियाणा एक ऐसा राज्य था जहां महिलाओं के लिए बहुत पाबंदी हुआ करती थी,
1: जी
0: मगर
1: जी
0: महिला और उत्तर प्रदेश, आज के डेट में महाराष्ट्र भी है, हिमाचल भी है, राजस्थान भी है,
1: जी
0: बिहार है, झारखंड जैसे प्रदेशों से भी हमारे यहाँ महिला कुश्ती बहुत
1: जी
0: ज्यादा डोमिनेट कर रही है उसके ऊपर।
1: जी जी जी
0: और हम चाहेंगे कि ये गार्जियन से भी अनुरोध करेंगे कि आप बच्चों को लाएं,
1: जी जी
0: कुश्ती बहुत अच्छा गेम है, महिलाओं के जहां तक लोग कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए भी बहुत अच्छा गेम है। आप ना लाइए मेडल के लिए, मगर आप बच्चे को अपने शारीरिक रूप से, मानसिक
1: जी
0: रूप से मजबूत करने के लिए लेकर आइए।
1: अच्छा है, अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को रेसलर बनाना चाहते हैं तो किस उम्र में बच्चों को इस खेल में डाल देना चाहिए, प्रवेश करा देना
0: देखिए
1: चाहिए?
0: एक कुश्ती के विषय में कहा जाता है कि बहुत पावर गेम है,
1: जी
0: स्ट्रेंथ बहुत चाहिए होती है, मगर स्किल भी है। तो स्किल सीखने की एज हमारे यहाँ बच्चों की लगभग 10 साल से शुरू हो जाती है।
1: जी
0: 10 साल तक बच्चा हर चीज को समझने लगता है, उसको सोचने की क्षमता अपने आप धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। तो हमारा कहना कि 10-11 साल की उम्र से आप
1: जी
0: बच्चे को, बाकी बचपन से बच्चे अखाड़े आते हैं जाते हैं, तो वो है 10-11 साल की एज से प्रॉपर उसको, यहाँ अब ये प्रोफेशनली इस तरफ जाना चाहता है
1: जी जी
0: तो उस तरफ आप उसको डाइवर्ट करें।
1: इस वर्ष आप एशियन गेम्स में भारतीय कुश्ती का भविष्य किस प्रकार देख रहे हैं?
0: एशियन स्तर पे देखिए हमारी कुश्ती बहुत अच्छी है, ओलंपिक में हमारे पास मेडल कम रहते हैं, मगर विगत कुछ वर्षों से हमारे पास एशियन गेम में काफी अच्छे मेडल्स आए हैं, गोल्ड मेडल्स लेके, और हम अच्छी कंपटीशन में रहे हैं। इस बार भी टीम का सिलेक्शन हो चुका है और हमें लगता है कि इस बार भी हमारे 5 से 6 गोल्ड मेडल और बाकी और सिल्वर ब्रॉन्ज में हम रहेंगे।
1: जी ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं प्रदेश के स्तर पर भी
0: जी
1: जिनके बारे में कहना चाहेंगे कि नहीं, वो कुछ बेहतर ही करेंगे इस एशियन गेम्स में?
0: एशियन गेम में से अभी तो जो सिलेक्शन हुआ, जो टीम हमारी बनी है, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा उम्मीद अपने अमन सहरावत, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं,
1: जी
0: उनसे उम्मीद है। अभी एक 65 kg में सुजीत कलकल, अभी एक इंटरनेशनल लेवल पे भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है, मुकुल दहिया है, दीपक पुनिया ओलंपियन है जो लास्ट ओलंपिक में
1: जी जी
0: एक
1: जी
0: दो अंकों के अंतर से
1: आ रहे
0: मेडल से रह गए थे,
1: जी
0: उनसे हम लोगों को बहुत उम्मीद है। और लड़कियों में बात करें तो निशा दहिया है,
1: जी
0: अंतिम पंघाल
1: जी
0: और मानसी, ये कुछ महिला पहलवान है हमारी, जो हमें पूरी उम्मीद है कि ये मेडल और गोल्ड मेडल तक के लिए हमारी दावेदारी ये लोग
1: जी
0: करती
1: जी
0: हैं।
1: उत्तर प्रदेश में आप कुश्ती या रेसलिंग का भविष्य किस तरह से देख रहे हैं? कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो भविष्य में अपने आप को निखार सकते हैं, देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं?
0: हमारे उत्तर प्रदेश से

0: अभी तो एक सीनियर वर्ग में जॉन्टी है, बहुत अच्छा सीनियर लेवल पे परफॉर्मेंस कर रहा है अभी एशियन गेम्स ट्रायल में, वो दीपक पुनिया से ही हारा।
1: जी
0: और बाकी जूनियर स्तर पे भी हमारे पास बहुत अच्छे बच्चे हैं, अभी एक जयवीर लड़का है जिसने एशियंस बहरीन में हुए थे उसमें गोल्ड जीता था देश के लिए,
1: जी जी
0: यूपी का है, सौरभ है, और कई बच्चे ऐसे हैं जो हमें लगता है कि आगे चल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर,
1: जी जी
0: चंचल सिरोही है उत्तर प्रदेश पुलिस की है और यूपी की टीम से खेलती है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहलवान है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस की भी टीम है, हमारे पास बहुत से अच्छे खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म कर रहे हैं, और इंटरनेशनल पुलिस टूर्नामेंट में
1: जी
0: जिन्होंने देश के लिए भी मेडल जीता था, और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भारतीय टीम में भी आएंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: जी ऋषि जी, कुश्ती विषय पर हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने सुना खेल दर्पण का आज का अंक। चलते चलते मैं आपसे बस यही कहूंगा कि खेल चाहे कोई भी हो, वह हमें जोड़ता है, दीवारें तोड़ता है और सिखाता है कि आखिरी सीटी बजने तक कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उम्मीद है श्रोताओं को कार्यक्रम के दोनों ही भाग पसंद आए होंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर दीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा कुछ और कड़क खबरों और खेल के रोमांच के साथ कार्यक्रम खेल जगत में। तब तक देखते रहिए फुटबॉल, सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ और मुस्कुराते रहिए और जोश से कहिए लेट्स फुटबॉल। शब्बा खैर, बाय बाय, नमस्कार।
3: खेल दर्पण,
4: खेल दर्पण,
3: खेल दर्पण।
5: अभी आप हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र पर तैयार किया गया और प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। ये आकाशवाणी लखनऊ है। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उस्ताद विलायत हुसैन खान का पहले राग बिहाग में और उसके बाद राग रईसा कान्हड़ा में ख्याल गायन। तो आइए पहले सुनते हैं राग बिहाग में ख्याल गायन उस्ताद विलायत हुसैन खां का।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं उस्ताद विलायत हुसैन खान का राग रईसा कान्हड़ा में ख्याल गायन।
1: ख्याल बनाकर पूरा किया, राग के चलन और विस्तार को आगे बढ़ाया जा सका, इससे शास्त्रीय संगीत की एक बहुत बड़ी कमी को पूरा किया। रईसा कान्हड़ा जैसा अक्षोभ यानी अपरिचित राग गिने चुने उस्तादों ने ही गाया। एक ही बिल्मपत रचना हमारे सामने थी। खान साहब ने रईसा कान्हड़ा में प्राण प्रिया के उपनाम से एक द्रुत ख्याल रचा

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने राग रईसा कान्हड़ा में उस्ताद विलायत हुसैन खान का ख्याल गायन सुना। अब आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है, कुछ ही पलों में आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में

उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीवीजी रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।